हर मुश्किल समय में कोई ना कोई अच्छा मौका छुपा होता है। हमें बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और उस मौके को पहचान कर उसका सही उपयोग करना चाहिए।

हमें हमेशा अच्छी और सही सोच रखनी चाहिए। सकारात्मक सोच और मेहनत से कठिन काम भी आसान हो जाते हैं और असंभव काम को भी संभव बनाया जा सकता है। तो चलते चलते चलिए आपको सुनवाने जा रहे हैं आया सावन झूम की फिल्म का गीत रफी साहब की आवाज में। और इसी गीत के साथ अब सुरभि भोर सुहानी से लेती है आपसे अनुमति और आपको छोड़े जा रहे हैं इस गीत के साथ।

0: है मनोज। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को हुए उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी, जिसमें 18 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इस कार्रवाई ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुरक्षा नीति में बदलाव को दर्शाया। इसके बाद वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई। आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति अब आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय तथा कृषि उत्पादन उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए साझा रणनीति बनाने पर विचार किया जाएगा। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। नोटिस जारी करने और दावे आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 30 नवंबर तक जारी रहेगी। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा।

जिसमें 2,000 रुपए से अधिक के चुनिंदा यूपीआई मर्चेंट लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लगाने का निर्णय लिया गया है। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वर्तमान चैंपियन भारत प्रतियोगिता में सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है और अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने का लक्ष्य रखेगा। जापान एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 4 रजत और 3 कांस्य सहित

शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंगड़ी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई।
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: सुप्रभात, स्वागत आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं विदुषी वत्स। तो चलिए आज की पहली अपडेट की शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर के साथ। कुराश में भारतीय जुड़का 2018 एशियाई खेलों के सिल्वर मेडलिस्ट पिंकी बलहारा ने कुराश के महिला 78 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की एशियाई चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता लिम गारम को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इस जीत के साथ ही पिंकी ने भारत के लिए पदक पक्का कर लिया है। यह एशियाई खेलों के इतिहास में कुराश में भारत का तीसरा पदक होगा।
2: Let's talk about the continuing good news streak from this morning, coming in from a second consecutive win for India in the men's volleyball at the Asian Games. So, after opening their Pool C campaign with a straight sets victory over Vietnam yesterday, the Indian team has continued its winning run today, defeating Hong Kong China by 3-0. So, India took the first set 25-22.

0: followed by a 25-19 win in the second before closing out the match 25-21 in the third. It was another composed performance from the Indian side. Two matches, two wins for India in Pool C. The team's next pool match is against Qatar tomorrow, where we will look forward to maintain our unbeaten start.
1: स्क्वैश की बात कर लेते हैं. जैसा कल दो पदक स्क्वैश से हमें मिला था. महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं की टीम स्पर्धा में भारत ने चीन को 2-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की. निर्णायक मुकाबले में अनुभवी ज्योत्सना चिनप्पा ने चीन की ल्यू जी को लगातार 3 गेम में 12-10, 11-4, 11-6 से शिकस्त दी. इससे पहले दोनों टीमों के बीच मुकाबला 1-1 की बराबरी पर था. ऐसे में ज्योत्सना चिनप्पा पर निर्णायक मुकाबले में जीत दिलाने की जिम्मेदारी थी. उन्होंने दबाव के बीच शानदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबला अपने नाम किया और भारत को महत्वपूर्ण जीत दिलाई.
0: Let's have a look at the exciting news coming in from surfing, where Kishore Kumar has booked his place in the quarterfinals of the men's shortboard event. Kishore was in action in the round of 16 against China and produced a strong performance, edging past his Chinese opponent 9.76 to 8.80. That victory takes Kishore into the last eight and keeps India's hopes alive in surfing. I have to tell you here that he is now the only Indian surfer remaining in the competition with the quarterfinal stage still to come.
1: शूटिंग से कुछ अच्छी खबर, बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही विदुषी. देखा जाए तो एशियाई खेल 2026 का जो 25 मीटर पिस्टल भारतीय टीम जो टीम इवेंट था उसमें पदक से चूक गई. महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के टीम इवेंट में भारत 5वें स्थान पर आ और पदक से चूक गया. व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन में ईशा सिंह 580 अंकों के साथ 8वें स्थान पर रही और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया. और वो एकमात्र भारतीय रही जिन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया. उन्होंने चाइनीज ताइपे की चेंग येन चिंग को इनर 10 के आधार पर 24-22 से पीछे छोड़ा. मनु भाकर 579 अंकों के साथ 11वें स्थान पर रही और फाइनल में जगह नहीं बना सकी. वहीं राही सरनोबत 568 अंकों के साथ 30वें स्थान पर रही. राही की पहली रैपिड सीरीज में एक ऐसी गलती थी जिसका असर पूरी टीम पर पड़ा और टीम इवेंट में भारत से पदक चूक गया. अगर वहीं पर सीरीज जो उनको अंतिम जो निशाना लगाना था वहां पर वो बेहतर करती, यकीनी तौर पर भारत के लिए कुछ अच्छी खबर आती विदुषी.
0: That's how we also talk about some news that we have from women's sepak takraw, where India have gone down to Japan in their latest Group B encounter. So India fought hard in a closely contested match, but Japan came through 2-1. Japan took the opening set 15-11, but India responded strongly in the second, winning it 15-9 to level the match. The deciding third set went right down to the wire, but Japan edged it 15-13 to seal the victory. So India finishes this Group B match with a 1-2 defeat against Japan. But that's not all we have right now. There is some very interesting action coming to you from archery as well, where in the men's compound individual event, Ganesh Maniratnam has booked his place in the quarterfinals, defeating fellow Indian archer Sahil Jadhav in a thrilling pre-quarterfinal encounter. It was a very close contest, with Ganesh edging past Sahil 149-148, winning the all-Indian battle by just 1 point. Now we also look ahead, because there is more action coming in from the women's compound individual event, with Pritika, Chikita and Jyoti Surekha set to begin their round of 32 and round of 16 matches at 9:45.
1: दिन की जब शुरुआत होती हो रही है तो भारतीय जो टीम भारतीय खिलाड़ियों ने जो मेडल जीते उसके बारे में बता देते हैं. भारत ने अब तक 37 पदक जीत लिए हैं एशियन गेम्स में, जिसमें 4 गोल्ड, 16 सिल्वर, 17 कांस्य समेत कुल 37 पदक हैं. अगले एक घंटे में क्या कुछ घटित होता है हम जरूर आपको बताएंगे ठीक 10:30 पर. फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे दोस्त विदुषी वत्स को इजाजत दीजिए. बहुत बहुत शुक्रिया.
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: स्वागत है दोस्तों आप सबका आज की इस अपडेट में। एशियन गेम 2026 के जो अब तक के ताजा नतीजे हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। अभी भी खबर आई, भारत ने मेडल पक्का कर लिया। जी हाँ, मुक्केबाजी की बात कर रहा हूं मैं। मुक्केबाजी में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने शानदार प्रदर्शन किया है। जिस तरह के वो मुक्केबाज है, धाकड़ मुक्केबाज है, उनका वही खेल देखने को मिला। जी हाँ, ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने दमदार प्रदर्शन करते हुए महिला 75 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की स्वेन सेओंग को एक तरफा अंदाज में 5-0 से हरा दिया है। लवलीना ने मुकाबले के तीनों राउंड में अपना दबदबा बनाए रखा। तीनों राउंड में भारतीय मुक्केबाज के पक्ष में 5-0 का फैसला रहा। इस शानदार जीत के साथ लवलीना ने सेमीफाइनल में जगह बना ली और भारत के लिए एक पदक और पक्का हो गया है मुक्केबाजी में। अब लवलीना की नजरें फाइनल में जगह बनाने की होगी और पदक का रंग भी बदलना चाहेंगी।
2: And now there is big news from cricket as well, with Team India through to the semi-finals of the Asian Games Men's T20 tournament with a bowl without being bowled at all. India's quarter-final against Afghanistan was abandoned without a toss because of a persistent rain. But here is the crucial part of the story. India's higher ICC T20 ranking became the deciding factor. And under the Asian Games tournament regulations, when a quarter-final is washed out without a result, the higher ranked team advances. So India's superior ranking has sent them through to the semi-finals. India will now wait for the winner of the Sri Lanka versus Nepal quarter-final to determine their semi-final opponent.
1: जी बिल्कुल, भारत क्रिकेट का पावर हाउस और क्रिकेट में भारतीय टीम आगे न बढ़े ऐसा हो नहीं सकता। और अपनी रैंकिंग के आधार पर जिस तरह से भारतीय टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, उम्मीद करेंगे वहां भी शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को क्रिकेट में महिलाओं की तरह पुरुषों में गोल्ड हमें देखने को मिल सकता है। खैर, बात करते हैं यहाँ पर स्क्वैश की, जहाँ पर कोर्ट पर शानदार दमखम दिखाते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने चीन को एक तरफा अंदाज में मात दे दी। जी हाँ, पुरुषों के टीम स्पर्धा के पूल ए के मुकाबले में भारत ने चीन को 3-0 से हराकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। भारत की ओर से सूरज चंद्रवीर इसके अलावा वीर चोटरानी और वेलकल सेंथिल कुमार ने अपने अपने मुकाबले जीत कर शानदार सफलता दिलाई है, यानी शानदार भारतीय खेमे में जीत दिलाई है। पहले मुकाबले में सूरज चंद्र ने चीन के शौकीन डू को कड़े संघर्ष के बाद 11-4, 11-2, 12-10 से हराया और भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद वीर चोटरानी ने कोर्ट पर अपना दमखम दिखाया, दबदबा बनाए रखा। उन्होंने हाइजोन ली को लगातार 3 गेम में 11-5, 11-5, 11-3 से हराकर भारत की जो बढ़त थी 2-0 कर दी। और तीसरे मुकाबले में वेलन सेंथिल कुमार ने पोलिंग झोउ को, जो उनके खिलाफ, जो उनके प्रतिद्वंदी खिलाड़ी थे, उनके खिलाफ शानदार खेल दिखाया। वेलन ने यहाँ पर जिस तरह से प्रदर्शन किया, वेलवन ने यह मुकाबला 11-3, 11-2, 11-4 से जीतकर भारत की झोली में 3-0 के ये जीत दिला दी। इस तरह भारतीय पुरुष टीम ने चीन के खिलाफ तीनों मुकाबले जीतकर क्लीन स्वीप किया और पूल ए में अपने अभियान

0: को और मजबूती दी।
1: Let's now turn our attention to archery and the women's compound individual event where India had two strong contenders in action today and Chikita Taniparthi has saved. So we began the round of 32 while talking about Jyoti Surekha Venom who got her campaign off to a winning start up against an archer from Kazakhstan. She produced a strong performance to take the match 148 and 145 moving into round of 16. But the next challenge was a tough one. In the round of 16, Jyoti came up against Korea's Kang Yun Soo. It was a high scoring contest, but Jyoti was unable to make it through, going down 146-150, which brings her individual campaign to an end here. And now the focus shifts to Chikita Taniparthi, who has given us one of the most dramatic finishes of the day so far. She began her round of 32 match against Bhutan and she came through that context comfortably, winning 149-140. And then came the round of 16 against Chinese Taipei's Chen, and this was incredibly close. After the regulation arrows, both archers were locked at 148-148. That meant the contest had to be decided by a shoot-off, and Chikita held her nerve when it mattered the most. She survives, she wins the shoot-off, and she is through to the quarterfinals. And the next challenge is already set. Chikita will be back in action in the quarterfinals on October 1st, where she will face Indonesia's Narusha Ashrifa.
0: बात शूटिंग की करते हैं। शूटिंग में भारत के लिए अच्छी खबर है। ट्रैप स्पर्धा में दूसरे दिन के मुकाबले में नीरू ढांडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला क्वालिफिकेशन में पहला स्थान हासिल कर लिया। वहीं भारतीय महिला टीम भी पदक की दौड़ में बनी हुई है। महिला ट्रैप क्वालिफिकेशन में 4 राउंड और 100 शॉट के बाद नीरू ढांडा 95 अंकों के साथ शीर्ष पर है। भारत की मनीषा किर 84 अंकों के साथ 21वें और आशमा अहलावत भी 84 अंक के साथ 23वें स्थान पर बनी हुई है। वही टीम की बात करें, टीम स्पर्धा में भारत तीसरे स्थान पर। वहीं पुरुषों की बात कर लेते हैं, पुरुष ट्रैप में शपथ भारद्वाज 95 अंक के लेकर 5वें स्थान पर है। वहीं काइनन चेन्नई 91 अंकों के साथ 19वें और अहवर रिजवी 87 अंकों के साथ 32वें स्थान पर। यानी पुरुषों के लिए फिलहाल 5वां स्थान सुनिश्चित है।
1: And now we just have a medal event underway in Karachi, where India's Pinky Balara is on the mat in the women's 78kg semi-final, taking on South Korea's Myo Soo Min.
0: बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद ईशा सिंह 25 मीटर पिस्टल में एक्शन में नजर आएंगी, फाइनल मुकाबला खेलेंगी। फिलहाल अब तक की अपडेट में यहीं तक। मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथी विदुषी बस को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
3: FM रेनबो 101.9।
4: हे वेरी हंग्री, व्हाट स्पेशल टुडे?
5: बिरयानी, कबाब्स, हलीम, बट वेट, दिस मोर
4: देन फूड, इट्स द स्टोरीज बिहाइंड द रेसिपीज, the history of the kitchens and the flavors that shaped our city.
6: And where do we taste all these?
5: On Jashne Hyderabad, every afternoon at 2 o'clock on FM Rainbow 101.9.
4: From Charminar's Irani Chai to the evolution of Hyderabadi Biryani, it's a feast for your ears.
7: Jashne Hyderabad, savor the city's soul.

दोस्तों, आज का दिन काफ़ी ख़ास है हमारे देश के लिए, हमारे लिए, क्योंकि आज हम याद कर रहे हैं कैसे यंग इंडियन रिवोल्यूशनरी को, जिनका नाम आज भी बहादुरी, कन्विक्शन और देशभक्ति की भावना के साथ लिया जाता है, शहीद भगत सिंह। दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 के साथ, और आज ही वो दिन है, यानी 28th of September 1907 को पंजाब के बांगा विलेज में जन्मे भगत सिंह एक ऐसे वक्त में बड़े हुए जब देश आज़ादी की लड़ाई से गुजर रहा था, और बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अपने लिए जीना नहीं होगा, बल्कि अपने देश के लिए कुछ करना होगा। और शायद इसीलिए भगत सिंह की कहानी सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर की कहानी नहीं है, इट इज़ इंडीड अ स्टोरी ऑफ करेज, सेक्रीफाइस एंड एन अनवेवरिंग बिलीफ इन फ्रीडम। दोस्तों, जब भी हम उनके बारे में बात करते हैं तो एक इमेज हमारे जहन में ज़रूर आती है, हैट पहने हुए, कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन के साथ एक यंग भगत सिंह। लेकिन उस आइकॉनिक इमेज के पीछे एक थॉटफुल नौजवान भी था। उनके लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ ब्रिटिश रूल से फ्रीडम नहीं था, बल्कि वो एक ऐसे इंडिया का सपना देखते थे जहाँ लोगों को इक्वालिटी, डिग्निटी और जस्टिस मिले। और इसी मैसेज एंड एक स्लोगन, इनकलाब जिंदाबाद के साथ, वो भारत की आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान देते रहे। लेकिन उनकी ये जो लड़ाई थी, जो शायद सोसाइटी में बदलाव और एक फ्री इंडिया के लिए थी, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई और उन्हें महज 23 साल की उम्र में शहीद होना पड़ा। और शायद दोस्तों, यही भगत सिंह की जर्नी का सबसे पेनफुल चैप्टर था, उनका सेक्रीफाइस, 23rd of March 1931, जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में एग्जीक्यूट किया गया, फांसी दी गई। सोचिए, 23 साल, जिस एज में हम अपने करियर, अपने ड्रीम्स और अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे होते हैं, उस एज में एक नौजवान ने अपनी पूरी ज़िंदगी देश के नाम कर दी। और उनका ये सेक्रीफाइस हमसे भी एक सवाल पूछता है कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। माना कि हर किसी को बैटलफील्ड में जाना ज़रूरी नहीं, हर किसी को रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना भी ज़रूरी नहीं, लेकिन अपने कंट्री के लिए ऑनेस्ट रहना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, दूसरों के राइट्स और डिग्निटी की रेस्पेक्ट करना, और जब ज़रूरत हो तो इनजस्टिस के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाना, शायद पेट्रियाटिज़म के ये भी कुछ फॉर्म्स हैं। सो टुडे ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, लेट अस रिमेंबर हिम नॉट जस्ट एज अ नेम इन आर हिस्ट्री बुक्स, बट एज अ यंग मैन हु डेयर टू ड्रीम ऑफ अ फ्री इंडिया, हु stood by his convictions and who was willing to make the ultimate sacrifice for those beliefs. Unki zindagi

दोस्तों हमें ये याद दिलाती रहेगी कि अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो आज शहीद भगत सिंह को हमारा हार्टफिल ट्रिब्यूट, उनकी हिम्मत को सलाम, उनके सेक्रीफाइस को सलाम। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। और इसी पेट्रियाटिक स्पिरिट के साथ अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जो हर बार दिल में देश के लिए एक खास एहसास जगाता है। सुनते रहिए, ये है FM रेनबो 101.9, 11:13।

0: నుంచి అక్టోబర్ 7 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ఏఆర్ఓ ఏఆర్ఓ లేదా డిఎల్ఓ కు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1950 కు కాల్ చేయండి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.
1: ग्यारह बजकर 18 मिनट दोस्तों, आप जुड़े हुए आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9 के साथ. मैं उनिशा आपके साथ आज आपकी हम सफ़र इस खूबसूरत सी म्यूज़िकल जर्नी में. एंड यस, इस म्यूज़िकल जर्नी को और भी खूबसूरत बनाते हैं आपके साथ के साथ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं तो उन्हें भी शामिल करते हैं. एंड यस डियर लिसनर्स, अगर आपको हमें मैसेज भेजना है, कोई संदेश किसी तक पहुँचाना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 4023234822. सो लेट्स सी कौन कौन है हमारे साथ. एंड सबसे पहले यहाँ पर मैं मैसेज देख सकती हूँ, ये है सरवर अली जी, लिखते हैं गुड मॉर्निंग निशा जी. तो आपको भी अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. एंड आज सुर कोकिला लता मंगेशकर जी की बर्थ एनिवर्सरी है तो उनका एक मूवी सॉन्ग, जी हाँ, तो उनकी एक गाए हुए सॉन्ग की रिक्वेस्ट है. तो जी हाँ, बिल्कुल हम प्ले करेंगे. एंड स्पेशली आज लता मंगेशकर जी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत सारे सॉन्ग्स मैंने क्यू करके रखे हुए हैं तो वो मैं ज़रूर प्ले करूँगी. और साथ में उसी प्लेलिस्ट में अगर आपके भी गाने शामिल हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है. सो थैंक यू सो मच. एंड देन यहाँ पर और एक मैसेज, ये है मुनीर अली जी जो लिखते हैं गुड मॉर्निंग, चूज़ हैप्पीनेस, स्प्रेड काइंडनेस एंड कीप शाइनिंग. थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली मैसेज. लिखते हैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आरजे निशा, आपको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. एंड अगेन एक गाने की फरमाइश है, ये है मुनीर अली जी और गाना है ये दिल तुम बिन लगता नहीं फ्रॉम द फिल्म इज्जत. ओके, इसे भी प्ले करने की कोशिश करेंगे. देन यहाँ पर हमारे साथ है गौतम, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. एंड देन एक और मैसेज, ये है महेश फ्रॉम बालानगर, दक्षिण फ्लेवर्स. ओके, एंड ये भी लिखते हैं आई गुड मॉर्निंग, तो आपको भी अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एंड even he has got one song request which I think I've already played, Desh Mere. Ji haan, aaj Shahid Bhagat Singh ki bhi jayanti hai to already maine ek gana play kar diya hai The Legend of Bhagat Singh se. I hope you are listening. Anyways, thank you so much फॉर सेंडिंग दिस मैसेज. एंड आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन मैसेजेस को हम तक पहुँचाने के लिए. और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 4023234822. एंड यस, एक सॉन्ग रिक्वेस्ट जो है इज्जत फिल्म से. एंड ये गाना है मोहम्मद रफ़ी जी और लता मंगेशकर जी की खूबसूरत आवाज़ों में, म्यूज़िक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीत के बोल है साहिर लुधियानवी के. तो सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना, सुनते रहिए एफएम रेनबो 101.9.

0: 11:30 दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 के साथ। और अब चलते हैं एक स्पेशल प्रोग्राम सजग भारत की तरफ। और आज आप सुन पाएंगे इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी को। स्क्रिप्ट है प्रीति झमवर की एंड प्रेजेंटेशन श्रीकांत ओझा एंड जागृति धर दुबे की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सजग भारत।
1: ये है आकाशवाणी हैदराबाद।
2: अब आप सुनने जा रहे हैं कार्यक्रम सजग भारत।
1: आज सजग भारत के अंतर्गत हम सुनेंगे
2: वोकल फॉर लोकल।
3: साथियों, ये केवल एक गीत की पंक्तियां नहीं बल्कि अपने भारत की सच्चाई है। माटी की महक में छिपा भारत का अभिमान, कारीगर के श्रम से बने देश की नई पहचान। भारत की मिट्टी में रची बसी प्रतिमा, परंपरा और कौशल को नई पहचान देने का नाम है वोकल फॉर लोकल। ये केवल एक नारा नहीं बल्कि अपने देश के मेहनतकश हाथों, स्थानीय कारीगरों, छोटे उद्यमियों, किसानों और स्वदेशी उत्पादों के प्रति सम्मान और समर्थन की भावना है।
4: वोकल फॉर लोकल हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने आसपास निर्मित वस्तुओं को अपनाएं, अपने स्थानीय उत्पादों की विशेषताओं को दुनिया तक पहुंचाएं और भारत की आत्मनिर्भरता के संकल्प को मजबूत बनाएं। जब हम किसी स्थानीय उत्पाद को खरीदते हैं, किसी कारीगर के हुनर को सम्मान देते हैं या किसी छोटे उद्यमी के प्रयासों को आगे बढ़ाते हैं, तब हम केवल एक वस्तु नहीं खरीदते बल्कि एक परिवार की मेहनत, एक परंपरा की विरासत और आत्मनिर्भर भारत के सपनों को आगे बढ़ाते हैं।
3: वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल का उद्देश्य केवल स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करना नहीं बल्कि उनके प्रति विश्वास और सम्मान का वातावरण तैयार करना भी है। ये अभियान गुणवत्ता, नवाचार और आत्मविश्वास के साथ भारतीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। जब स्थानीय उद्योग आगे बढ़ते हैं, तब आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त होता है। छोटे उद्यम बड़े

0: नए रोजगार उत्पन्न होते हैं और देश की आवश्यकता अधिक सशक्त बनती है। ये भावना लोकल से ग्लोबल की अवधारणा को साकार कर
1: आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने आसपास निर्मित उत्पादों को पहचानें, उन्हें अपनाएं और दूसरों को भी उनके उपयोग के लिए प्रेरित करें। यह केवल आर्थिक निर्णय नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में हमारे सक्रिय सहभागिता का प्रतीक है। यह आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला है। स्थानीय उत्पादों का सम्मान, स्थानीय उद्यमों का समर्थन और स्वदेशी क्षमता का विश्वास, यही विकसित भारत की दिशा में हमारा सशक्त कदम है।
0: वोकल फॉर लोकल अभियान की शुरुआत वर्ष 2020 में, जब पूरा विश्व वैश्विक महामारी की चुनौती का सामना कर रहा था, तब भारत ने आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नए संकल्प के साथ कदम बढ़ाया। 12 मई 2020 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की और देशवासियों से स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा, लोकल के लिए वोकल बनना है।
1: यह संदेश केवल खरीदारी की आदतों में बदलाव का संदेश नहीं था, बल्कि देश के मेहनतकश कारीगरों, किसानों, बुनकरों, छोटे उद्यमियों और स्थानीय निर्माताओं के प्रति सम्मान और समर्थन की भावना को आगे बढ़ाने का आह्वान था। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि भारत में बनने वाले वस्तुओं को अपनाकर और उनका प्रचार करके हम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। स्थानीय उत्पादों को जब देश के नागरिकों का विश्वास और समर्थन मिलेगा तो वे न केवल देश के बाजार में बल्कि विश्व बाजार में भी अपनी पहचान बना सकेंगे।
0: स्थानीय उत्पादों और कारीगरों को बढ़ावा देने का महत्व। स्थानीय उत्पादों और कारीगरों को प्रोत्साहन मिलने से रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। गांवों और छोटे शहरों की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और पारंपरिक कौशल को नई पहचान मिलती है। एक हस्त निर्मित वस्तु के पीछे किसी कारीगर की मेहनत, अनुभव और पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही कला जुड़ी होती है। जब हम स्थानीय वस्तुओं को खरीदते हैं तो हम केवल एक उत्पाद नहीं चुनते बल्कि किसी के परिवार की आजीविका, किसी कलाकार की प्रतिभा और भारत की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं।
1: भारत के हथकरघा, हस्तशिल्प, कृषि आधारित उत्पाद, ग्रामीण उद्योग और छोटे व्यवसाय देश के आर्थिक शक्ति के महत्वपूर्ण आधार हैं। इन्हें बढ़ावा देकर हम न केवल आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ते हैं बल्कि भारतीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने में भी योगदान देते हैं। किसी स्थानीय हस्तशिल्पी, किसान, महिला एवं सहायता समूह या छोटे उद्योग की प्रेरक सफलता की कहानी।
0: जब स्थानीय प्रतिभा को सही मंच मिलता है तो छोटे प्रयास भी बड़ी सफलता में बदल सकते हैं। इसी संदर्भ में मुझे नारायण पेट के हथकरघा परंपरा से जुड़ी एक महिला की सफलता याद आती है। तेलंगाना की धरती अपनी समृद्ध कला और परंपराओं के लिए जानी जाती है। यहाँ के हथकरघा और हस्तशिल्प केवल वस्त्र नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही मेहनत, कौशल और संस्कृति की पहचान है।
1: नारायणपेट की प्रसिद्ध हथकरघा परंपरा से जुड़ी कुछ महिलाओं ने मिलकर अपने उत्पादों को नई पहचान देने का प्रयास किया। शुरुआत में उनकी कला सीमित बाजार तक ही पहुंच पाती थी, लेकिन सामूहिक प्रयास, प्रशिक्षण और बेहतर विपणन के माध्यम से उन्होंने अपने हस्त निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार तक पहुँचाना शुरू किया। इन महिलाओं ने अपने पारंपरिक डिजाइनों को आधुनिक पसंद के अनुरूप तैयार किया और अरुण्या नाम से अपने उत्पादों को पहचान दिलाई। यह पहल केवल व्यापार नहीं थी बल्कि महिलाओं को आत्मविश्वास, आर्थिक स्वतंत्रता और उद्यमिता का अवसर देने वाली यात्रा थी। हथकरघा से जुड़े इन परिवारों के लिए यह केवल आय का साधन नहीं बल्कि अपनी कला और विरासत को बचाने का माध्यम भी है। नारायणपेट की महिलाओं की यह कहानी हमें संदेश देती है कि आत्मनिर्भरता की शुरुआत अपने ही घर, गांव और क्षेत्र की प्रतिभा को सम्मान देने से होती है।
0: इसी प्रकार राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र की एक ऐसी महिला ने अपने पारंपरिक हुनर को आत्मनिर्भरता की ताकत में बदल दिया। रूमा देवी ने बेहद साधारण परिस्थितियों से अपनी यात्रा शुरू की। बचपन से ही कढ़ाई और हस्तशिल्प से जुड़ी इस कला को उन्होंने आजीविका का माध्यम बनाया। शुरुआत में उन्होंने स्वयं मेहनत करके हस्त निर्मित वस्तुएं तैयार की और फिर धीरे धीरे आसपास की अन्य महिलाओं को भी इस काम से जोड़ा। उन्होंने महिला कारीगरों के समूह बनाए, उन्हें प्रशिक्षण दिया और उनके बनाए उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुँचाने का प्रयास किया। इस पहल से अनेक ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिला और उनके पारंपरिक

0: कला को नई पहचान मिली।
1: यह कहानी बताती है कि स्थानीय कला और कौशल में अपार संभावनाएं छिपी हैं। आवश्यकता है तो केवल उन्हें सही मंच और बाजार उपलब्ध कराने की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 129वें एपिसोड 28 दिसंबर 2025 में आंध्र प्रदेश के नरसापुर की प्रसिद्ध लेस कला का उल्लेख करते हुए बताया कि किस प्रकार स्थानीय हस्तकला को नया जीवन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि नरसापुर में किए गए प्रयासों ने स्थानीय लेस कला को पुनर्जीवित किया है और अनेक लोगों को सशक्त बनाया है।
0: उनके सामने आई चुनौतियों और उपलब्धियां, किसी भी बड़े जन अभियान की सफलता केवल उसके उद्देश्य से नहीं बल्कि उसके सामने आने वाली चुनौतियों को पार करने की क्षमता से तय होती है। वोकल फॉर लोकल अभियान भी एक ऐसी ही यात्रा है जिसमें स्थानीय उत्पादों, कारीगरों, किसानों और छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाने का संकल्प लिया गया है।
1: इस अभियान की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाना। अनेक कारीगरों और छोटे उद्यमियों के पास उत्कृष्ट कौशल तो था, लेकिन आधुनिक विपणन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और डिजिटल माध्यमों की जानकारी सीमित थी। विदेशी और बड़े ब्रांडों से प्रतिस्पर्धा, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन बनाए रखना और उपभोक्ताओं की बदलती पसंद के अनुरूप स्वयं को ढालना भी महत्वपूर्ण चुनौतियां रही हैं।
0: ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे उत्पादों के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, तकनीकी ज्ञान और बाजार से जुड़ाव निश्चित करना भी आवश्यक था ताकि उनकी मेहनत को उचित मूल्य मिल सके। इन चुनौतियों के बावजूद वोकल फॉर लोकल अभियान ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। इसमें देशवासियों के स्थानीय उत्पादों के प्रति जागरूकता और गर्व की भावनाओं को बढ़ाना था। खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प, कृषि आधारित उत्पादों और छोटे उद्योगों को नई पहचान मिली।
1: इस अभियान ने लाखों छोटे उद्यमियों, कारीगरों, महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण उत्पादकों को नए अवसरों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स और सरकारी सहायता योजनाओं के माध्यम से अनेक स्थानीय उत्पाद अब देश के विभिन्न हिस्सों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच रहे हैं। वोकल फॉर लोकल की एक बड़ी उपलब्धि यह भी है कि उसने उपभोक्ता और उत्पादक के बीच एक नया संबंध स्थापित किया है। अब स्थानीय वस्तुओं को केवल परंपरा का प्रतीक नहीं बल्कि गुणवत्ता, नवाचार और आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है।
0: उद्योग विभाग MSME या स्थानीय व्यापार विशेष की राय, सरकारी योजनाओं और उनके लाभों की जानकारी। इस मुहिम के लिए भारत सरकार की ओर से किए गए प्रयास भी सराहनीय है। भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उत्पाद यानी के MSME क्षेत्र की भूमिका पर यदि नजर डालें तो भारत का MSME क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार MSME क्षेत्र का देश के सरल घरेलू उत्पाद में लगभग 31.1%, विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 35.4% और निर्यात में लगभग 48.58% योगदान है।
1: MSME मंत्रालय के ताजा डैशबोर्ड के अनुसार उद्यम पंजीकरण और उद्यम सहायता मंच के माध्यम से बड़ी संख्या में छोटे उद्यम औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं। जुलाई 2026 तक पंजीकृत MSME से जुड़े रोजगार का आंकड़ा लगभग 39.5 करोड़ दर्ज किया गया है। स्थानीय उद्यमों को वित्तीय सहायता और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं का भी योगदान रहा है। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 तक लाखों सूक्ष्म इकाइयों को सहायता प्रदान की गई, जिससे रोजगार के अवसर सृजित हुए।
0: इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि वोकल फॉर लोकल केवल स्थानीय उत्पादों की खरीद तक सीमित नहीं है बल्कि ये भारत के छोटे उद्यमों को औपचारिक अर्थव्यवस्था, डिजिटल बाजार और नए अवसर से जोड़ने की व्यापक पहल है। इसके अलावा छोटे उद्यमों को वित्तीय, प्रशिक्षण, बाजार और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है।
1: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना और रोजगार सृजन के लिए चलाए जा रहे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 से 2026-27 तक उपलब्ध नवीन डैशबोर्ड आंकड़ों के अनुसार लगभग 5,87,000 परियोजना

0: परियोजनाओं को ऋण स्वीकृत किया गया है। इन परियोजनाओं के लगभग 60,750 करोड़ रुपयों के बैंक ऋण स्वीकृत हुए हैं और लगभग 36,33,000 रोजगार अवसरों के सृजन का अनुमान है।
1: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इस योजना का शुभारंभ 17 सितंबर 2023 को किया गया। इस योजना का उद्देश्य हाथ और औजारों से काम करने वाले पारंपरिक कारीगरों को पहचान, कौशल और प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, ऋण सहायता और बाजार से जोड़ना है। योजना में 18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े कारीगरों को शामिल किया गया है। योजना की प्रगति को देखें तो जून 2026 तक इसके अंतर्गत लगभग 30 लाख कारीगरों का पंजीकरण हो चुका है। इसमें से लगभग 26,90,000 से अधिक कारीगरों का कौशल सत्यापन पूरा हुआ और लगभग 24,02,000 लाभार्थियों ने बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
0: कारीगरों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजना के अंतर्गत लगभग 5.9 लाख ऋण स्वीकृत किए गए, जिनकी कुल राशि लगभग 51,000 करोड़ रुपए रही। इसके अतिरिक्त लगभग 26 लाख से अधिक ई वाउचर टूलकिट सहायता के लिए जारी किए गए हैं। इस योजना का महत्व केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, इसका उद्देश्य उन पारंपरिक कौशलों को संरक्षित करना भी है जो पीढ़ियों से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। बढ़ई, लुहार, कुम्हार, सुनार, मूर्तिकार, दर्जी, मोची और अन्य पारंपरिक कारीगरों को प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और बाजार उपलब्ध कराकर उनके उत्पादों को नई पहचान देने का प्रयास किया जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY। छोटे व्यापारियों और सूक्ष्म उद्यमियों को बिना जमानत ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई। वित्त मंत्रालय के अनुसार फरवरी 2025 तक योजना के अंतर्गत कुल 52,07,00,000 ऋण खाते स्वीकृत किए गए और लगभग 33,19,000 करोड़ के ऋण स्वीकृत हुए।
0: एक जिला एक उत्पाद ODOP स्थानीय उत्पादों को पहचान और बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक जिला एक उत्पाद पहल शुरू की गई। इसके माध्यम से प्रत्येक जिला के विशेष उत्पाद जैसे हस्तशिल्प, हथकरघा, कृषि उत्पाद और खाद्य प्रसंस्करण वस्तुओं को ब्रांडिंग और बाजार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ODOP का उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट पहचान को बढ़ावा देना और संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करना है। इन योजनाओं से स्पष्ट है कि वोकल फॉर लोकल केवल एक उपभोक्ता अभियान नहीं बल्कि स्थानीय क्षमता को मजबूत करने की व्यापक पहल है। जब छोटे उद्यमी कारीगर और पारंपरिक शिल्पकार आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं तो स्थानीय उत्पादन को नई गति मिलती है और भारत की आत्मनिर्भरता की नींव मजबूत होती है।
1: आज भारत का स्थानीय हुनर नई पहचान के साथ विश्व मंच की ओर बढ़ता जा रहा है। आवश्यकता है कि हम गुणवत्ता, विश्वास और गर्व के साथ अपने स्थानीय उत्पादों को अपनाएं और उन्हें आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएं। क्योंकि जब हर भारतीय स्थानीय को महत्व देगा तभी स्थानीय वैश्विक और आत्मनिर्भर भारत का सपना अधिक सशक्त होगा।
0: हुनर का सम्मान, मेहनत की पहचान, लोकल से बनेगा भारत महान।
1: कारीगर के हाथों को मिले जब उड़ान, आत्मनिर्भर भारत बनेगा नया अभियान।
0: स्थानीय अपनाएं, विश्वास बढ़ाएं,
1: भारत के सपने को
0: विश्व तक पहुंचाएं।
2: अब तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम सजग भारत।
3: ये कार्यक्रम आकाशवाणी हैदराबाद केंद्र के अंतर्गत प्रसारित किया गया।
4: जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम। एंड ये जो कार्यक्रम था इसकी प्रस्तुति की थी श्रीकांत ओझा और जागृति धर दुबे ने और लेखक प्रीति जमवर। अब यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। एक बार फिर से नमस्ते हेलो आदाब की म्यूजिकल जर्नी को आगे बढ़ाएंगे अब से थोड़ी देर में।
5: FM Rainbow 101.9
6: రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్స్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటర్ నమోదు చేసిన దానికి ఫామ్ 6 తో పాటు

दोस्तों, कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनी जाती है और कुछ आवाज़ें महसूस की जाती है, और ऐसी ही आवाज़ है लता मंगेशकर जी की, जिन्हें कभी क्वीन ऑफ मेलोडी तो कभी वॉइस ऑफ द मिलेनियम, कभी स्वर कोकिला तो कभी प्यार से लता दीदी कहकर बुलाया गया। द वॉइस दैट बिकेम अ पार्ट ऑफ जेनरेशंस। आज ही के दिन 1929 में जन्मी हेमलता दीनानाथ मंगेशकर जी ने हमारे लिए सिर्फ कुछ बेहतरीन नगमे ही नहीं छोड़े, बल्कि कुछ यादें जो उन सॉन्ग्स के ज़रिए हम में जिंदा हैं, उन्हें भी हमारे लिए छोड़ गई हैं। और जब तक हम इन गानों को सुनते रहेंगे, तब तक लता जी की आवाज़ हमारे साथ रहेगी। बिकॉज यू नो, सम वॉइसेस आर नॉट मेंट टू बी फॉरगॉटन, दे बिकम अ पार्ट ऑफ हु वी आर, एंड दैट इज़ द रियल लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जी। दोस्तों, लता जी के लिए सिंगिंग का मतलब ना सिर्फ स्टूडियो में जाना और गाना रिकॉर्ड कर देना नहीं था। शी वॉज नोन फॉर बींग एक्सट्रीमली पर्टिकुलर अबाउट हर वर्क। प्रोनंसिएशन हो, सुर हो, इमोशन हो, हर छोटी चीज़ इम्पॉर्टेंट होती थी उनके लिए, और शायद इसीलिए आज भी जब हम उनका कोई गाना सुनते हैं तो वो सॉन्ग पुराना नहीं लगता, बिकॉज द इमोशन इज स्टिल अलाइव, यू नो। एंड यू नो वॉट, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट एवर टू परफॉर्म लाइव एट लंडन्स रॉयल एल्बर्ट हॉल। तो चलिए, इसी खूबसूरत आवाज़ को सेलिब्रेट करेंगे आज, एक लेजेंड को सेलिब्रेट करेंगे और जी लेंगे फिर से एक बार उन खूबसूरत यादों को, जो कहीं ना कहीं इन गीतों के जरिए आई एम श्योर फिर से एक बार हमारे जहन में अपनी जगह कायम कर लेंगे। वेल, लता जी के कुछ और भी खूबसूरत सॉन्ग्स हैं जिनको मैं इस शो का हिस्सा बनाना चाहूँगी, लेकिन यहाँ पर जो वक्त है वो यही कह रहा है कि दोपहर के 12 बजने वाले हैं और इस समय पर हम

0: हम आपको लिए चलते हैं न्यूज़ हेडलाइंस की तरफ। जी हाँ, दोपहर के 12 बजे न्यूज़ इन हिंदी एंड एट 12:05 यू विल बी लिसनिंग टू न्यूज़ इन इंग्लिश फ्रॉम आकाशवाणी दिल्ली। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द न्यूज़। और जी हाँ, एक बार फिर से हम लौटेंगे नमस्ते हेलो आदाब के साथ, इन्हीं खूबसूरत गीतों के सिलसिले के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, ये है FM रेनबो 101.9।
1: ईरानी चाय,
2: बन मस्का,
1: हैदराबादी बिरयानी,
2: टंगड़ी कबाब,
1: कुर्बानी का मीठा,
2: शहदूद मलाई,
1: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
2: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
1: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्ने हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
2: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9।
1: इट्स नॉट जस्ट फूड,
2: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन।
1: जश्ने हैदराबाद।

0: भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच गई हैं। इस वार्षिक बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने अमरीकी संसद की प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विकास पर चर्चा हुई। इस दौरान रक्षा, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग पर विशेष बल दिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से दो दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी

0: विभिन्न सेवाओं और सुविधा तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ मिलकर पर्यटन से जुड़ी सेवाओं और जानकारी के लिए एक साझा डिजिटल व्यवस्था नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। देश आज शहीद ए आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि भगत सिंह ने कम उम्र में ही मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 46वें शतरंज ओलंपियाड में नोना गाप्रदाश्वली ट्रॉफी जीतने पर भारतीय शतरंज खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने खिलाड़ियों के जुनून और दृढ़ संकल्प की सराहना की। जापान में आयोजित एशियाई खेलों 2026 में भारत की ईशा सिंह ने आज आईटी नागोया में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने आईटी नागोया में महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की लिम गरम को हराया। वहीं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया था। गत चैंपियन भारत को आईसीसी टी20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर होने के कारण सेमीफाइनल में जगह मिली है। सेमीफाइनल का मुकाबला भारत और नेपाल, कृपया दोबारा सुने, सेमीफाइनल में भारत का सामना नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today urged countrymen to make sure to set aside time for the census. Recalling the appeal from yesterday's Man Ki Baat address, Mr. Modi said, participating in the census is a national duty for all citizens. He added that the participation helps in creating an accurate picture of the country's future. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has reached Doha in Qatar to participate in the 11th annual meeting of the Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB, and the AIIB Investors Dialogue 2026. The annual meeting will bring together member delegations, policymakers, and other stakeholders from around the world to discuss the AIIB's strategic direction, operational priorities, and future agenda. Defence Secretary Rajesh Kumar Singh met with a bipartisan delegation from the United States House of Representatives, led by Representative Brian Mast, Chairman of the House Foreign Affairs Committee. Defence Ministry said the discussion centered around the evolving India-US comprehensive global strategic partnership with special emphasis on defense, industrial and technological cooperation. The United Forum of Bank Unions, UFBU, has announced that the proposed three-day nationwide bank strike, which was to begin from today, has been deferred. The decision in this regard was taken following an agreement with the Indian Banks Association, IBA. In a social media post, the All India Bank Employees Association said, this decision was taken after a meeting held between the IBA and the UFBU, the umbrella body of seven bank unions, last night on the issues related to the strike. Earlier, a three-day nationwide strike was called by the United Forum of Bank Unions and certain other unions and associations in the public sector banks from the 28th to the 30th of September. They had called a strike in support of true principal demands, implementation of five-day banking, and withdrawal of the performance-linked incentive scheme. Prime Minister Narendra Modi has paid tributes to freedom fighter Shahid Bhagat Singh on his birth anniversary today.

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं. नमस्ते, हेलो आदाब के साथ ओनली ऑन एफएम रेनबो 101.9 आकाशवाणी हैदराबाद, और मैं हूं निशा आपके साथ. सो अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून डियर लिसनर्स. एंड यस, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 4023234822. और जैसा कि मैं देख सकती हूँ कि एक मैसेज मैंने यहाँ पर मिस कर दिया, उसके लिए आई एम सो सॉरी. यहाँ पर हमारे एक लिसनर थे जिन्होंने बहुत पहले मैसेज किया था. लिखते हैं, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सैयद इमरान अहमद है एंड मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ और कैब में हूँ. तो जिंदा भाग मिल्खा भाग मूवी का ये जो सॉन्ग है ये सुनवा दीजिए. तो पहले तो सॉरी कि गुड मॉर्निंग से गुड आफ्टरनून हो गई. सॉरी कि मुझे गुड आफ्टरनून कहना पड़ रहा है गुड मॉर्निंग के बदले. लेकिन आप जहाँ कहीं भी हैं, उम्मीद है कि यू नो इन्जॉय कर रहे होंगे आप शो को. एंड मैं कोशिश करूँगी कि इस सॉन्ग को मैं आप तक पहुँचा पाऊँ. हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एंड देन सरवर अली जी हैं यहाँ पर हमारे साथ जो लिखते गुड आफ्टरनून, तो आपको भी अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. एंड यस, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे इस खूबसूरत से म्यूज़िकल जर्नी को आगे बढ़ाते हैं. एंड एक और सॉन्ग की रिक्वेस्ट आई हुई थी यहाँ पर, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म से, देश मेरे. एंड ये थे महेश फ्रॉम बालानगर. एंड आज जो है हम शहीद आज़म भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहे हैं. तो जी हाँ, ये सॉन्ग मैं अभी प्ले करूँगी आपके लिए. तो सुनते रहिए ये FM रेनबो 101.9.

जी हाँ, ये खूबसूरत आवाज़ लता मंगेशकर जी की। दोस्तों, लता मंगेशकर एक ऐसा नाम है जो शायद ही किसी म्यूज़िक लवर की फेवरेट ना हो। उन्होंने सिर्फ गाने नहीं गाए, उन्होंने इंसानी जज्बातों को आवाज़ दी। उन्होंने उन जज्बातों को जो हमारे दिल के किसी कोने में रहते हैं, उन्हें वजूद दिया है अपनी आवाज़ के ज़रिए। और आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर उनके हज़ारों खूबसूरत गानों में से एक ऐसा गीत याद करते हैं जिसे हमने शायद कई बार सुना है, लेकिन इस गाने के पीछे की कहानी जान जाए तो इसका हर लफ्ज़ और भी गहरा लगता है। ये गाना है हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, फिल्म दिल एक मंदिर जो आई थी 1963 में। और इस गीत के बोल हैं हसरत जयपुरी के, म्यूजिक शंकर जयकिशन का, एंड ऑफ कोर्स द अनफॉरगेटेबल वॉइस लता मंगेशकर जी। दोस्तों, फिल्म में मीना कुमारी जी का कैरेक्टर अपने हस्बैंड राजकुमार जी से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो कैंसर से जूझ रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी वाइफ को उनके बाद अपने पुराने प्यार यानी राजेंद्र कुमार जी के कैरेक्टर के पास वापस चले जाना चाहिए। और इसी इमोशनल सिचुएशन के लिए इस गाने को लिखा गया था। गीत के बोल यही कहते हैं कि तुम्हारे प्यार में हमने अपनी पूरी दुनिया खो दी और अब तुम ही कह रहे हो कि इस प्यार को भूल जाओ। एंड दैट इज़ वॉट मेक्स दिस सॉन्ग सो हार्ट ब्रेकिंग। हसरत जयपुरी के शब्द जिनमें प्यार सिर्फ रोमांस नहीं है, इट इज़ अ कम्प्लीट सरेंडर। और लता जी की आवाज़ ने उस प्यार में किए गए समर्पण को एक गहराई दी। और इसीलिए गाना सुनते ही हमें सिर्फ लिरिक्स नहीं, उस कैरेक्टर का दर्द भी महसूस होता है। दोस्तों, 1963 का ये सॉन्ग आज भी रिक्रिएट होता है, कवर वर्जन्स में आता है और न्यू जनरेशन्स इसे डिस्कवर करते रहते हैं। लेकिन पता है क्या, नो डाउट म्यूज़िक का अरेंजमेंट बदल सकता है, सिंगर्स बदल सकते हैं, बट द इमोशन स्टिल रिमेन्स द सेम। और जब आपको गाने के पीछे की कहानी पता होती है तो फिर हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं आपको सिर्फ एक लाइन नहीं लगती, इट फील्स लाइक अ कन्फेशन, अ पेन एंड अ कम्प्लीट सरेंडर टू लव। एंड परहैप्स दैट्स वॉट लता जी डिड बेस्ट, शी डिडंट जस्ट सिंग द लिरिक्स, शी मेड अस फील देम। तो आज लता मंगेशकर जी की बर्थ एनिवर्सरी पर लेट्स गो बैक टू 1963 एंड लिसन टू दिस टाइमलेस मेलेडी इन हर अनफॉरगेटेबल वॉइस, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं। ओनली ऑन FM रेनबो 101.9।

0: और दोस्तों अब चलते हैं एशियन गेम्स के लाइव अपडेट्स की तरफ जो हो रहे हैं जापान में।
1: Already given us some wonderful reasons to celebrate this morning. I am Vidushi Vats with Mohammad Shahid Azmi bringing you all the latest action, medal moments and twists and turns from the games. And what a morning it has been for India. We have seen Esha Singh deliver a brilliant silver medal in shooting, followed by Pinky Balhara adding a bronze in courage. Two more podium finishes, two more moments of pride, and the Indian medal tally continues to grow. It has been a morning full of intensity, composure, and some truly memorable performances from our athletes. Shahid, let's begin by taking stock of where India stands right now. What does the medal tally look like?
2: बिल्कुल, भारत 12वें स्थान पर है। भारत ने 4 गोल्ड, 17 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज समेत 39 पदक जीते। इन 39 पदक में एथलेटिक्स ने 13 पदक दिए, जबकि शूटिंग ने 12 पदक दिए। यानी 12, 13, 25 पदक इन सिर्फ दो खेलों से भारत को मिले हैं। जबकि अगर बताते ओवरऑल बताएं, सबसे ऊपर चीन अभी भी बना हुआ है, 125 गोल्ड, 51 सिल्वर, 44 ब्रॉन्ज समेत 220 पदक जीते। वहीं जापान 39 गोल्ड, 64 सिल्वर, 61 ब्रॉन्ज समेत 164 पदक जीते हैं। वहीं कोरिया की बात करें, 21 गोल्ड, 26 सिल्वर, 43 ब्रॉन्ज समेत 90 पदक जीते। कजाकिस्तान की बात कर लेते हैं, जिसके 10 गोल्ड थे, अब 9 गोल्ड हो गए। कैसे हो गए बताता हूं आपको। हालांकि आमतौर से देखा जाता है, हर देश जब मुकाबला जीतता है उसकी संख्या, जो उसके पदकों की संख्या बढ़ती है, उसके घट गए। कैसे घटे बता देता हूं आपको। कजाकिस्तान की यास्मीन टोखानबोवा का महिला मैराथन रेस वॉक का परिणाम रद्द कर दिया गया है। यास्मीन ने 42.195 किलोमीटर की स्पर्धा में 3 घंटे 22 मिनट 20 सेकंड के समय के साथ पहला स्थान हासिल किया था, लेकिन रेस के बाद उनके जूतों को लेकर विरोध जताया गया। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने स्वीकृत जो फुटवेयर नियम के तहत जांच के बाद उनका परिणाम डिस्क्वालीफाई कर दिया, यानी रद्द कर दिया। इसके बाद चीन की डंगजेंग कुंगजोंग को स्वर्ण पदक मिला। वहीं मा एल, जो चीन की ही खिलाड़ी हैं, उनको यहां पर रजत पदक मिला, जबकि जापान की ओमेनो वाई को कांस्य पदक हासिल हुआ। वहीं भारत की मंजू रानी, जो 6ठे स्थान पर थी इस रेस को खत्म होने के बाद, उनका 5वां स्थान हो गया। हालांकि भारत को इसमें कोई पदक नहीं मिलेगा।
1: This is precisely why we say all of these updates are full of twists and turns, because you never know what is going to come for you next. Just like this one, because now we're going to talk about the action that is continuing on the water as well, with Indian sailors competing across both men's and women's events and several races that are still underway. So starting with the men's skiff, India's Prince and Manu had a strong opening race, finishing second in race one, with Oman taking the top spot. Race 2 is currently underway, so there is still plenty to play for. And in the men's dinghy, Vishnu finished 9th in race 1 and 2 of the qualification series, with China leading the race.

रेनबो 101.9। वेलकम बैक डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9। शो चल रहा है नमस्ते हेलो आदाब, मैं उनिशा आपके साथ आज आपकी हम सफर इस खूबसूरत सी म्यूजिकल जर्नी में। और ये जर्नी जो म्यूजिकल जर्नी है खूबसूरत हो भी क्यों ना, आज लता मंगेशकर जी के सॉन्ग्स जो प्ले किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सॉन्ग से पहले भी बात कर रहे थे लता दीदी की फॉन्डली कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ द इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री, जिन्होंने 27,000 यानी 27,000 से ज़्यादा सॉन्ग्स 36 रीजनल और फॉरेन लैंग्वेजेस में रिकॉर्ड किए। जी हाँ, और क्या आप जानते हैं कि लता दीदी का ओरिजिनल नेम हेमा था? जी हाँ, उनका नाम लता उनके पिता के एक थियोरेटिकल प्ले

भाव बंधन के कैरेक्टर लतिका के नाम पर रखा गया था। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जब उन्होंने पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगर के तौर पर एंट्री की तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। जी हाँ, उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि उस वक्त नूरजहाँ और शमशाद बेगम जैसे सिंगर्स का बोलबाला था, जिनकी वॉइस काफ़ी भारी भरकम थी, और इसीलिए लता जी से कहा गया कि उनकी वॉइस काफ़ी पतली है। जी हाँ, एंड ख़ास तौर पर जो है ना, उस ज़माने में हैवी वॉइसेस के कंपैरिजन में जो हिट्स दे रही थी उस वक्त, उस मुकाबले लता जी की वॉइस थोड़ी पतली थी। लेकिन दोस्तों, कहानी यही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उनके सिंगिंग करियर की तो अभी तक शुरुआत ही नहीं हुई थी। शुरुआत तो हुई 1949 में, जब उनका मेजर ब्रेक 1949 में आया फिल्म महल के सॉन्ग आएगा आने वाला के साथ हुआ। जी हाँ, इस सॉन्ग ने उन्हें ओवरनाइट सेंसेशन बना दिया, एक ऐसा सॉन्ग जिसे गाने की हिम्मत हर कोई नहीं कर सकता था। वेल, ये एक ऐसी लेजेंडरी सिंगर हैं जिनकी फेम देश की बाउंड्री से बहुत आगे तक गई। 1974 में लता दीदी रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन में परफॉर्म करने वाली फर्स्ट इंडियन बनी। उन्हें 6 यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडिंग न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने ऑनररी डॉक्टरेट से भी सम्मानित किया, और फ्रांस ने 2007 में लता जी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया। और आपको बता दें कि लता जी का लास्ट रिकॉर्डेड सॉन्ग था 2015 में, ये एक इंडो पाक गे लव स्टोरी के लिए था, जिसका मतलब ये हुआ कि 1942 से 2015 तक उन्होंने 73 इयर्स तक प्लेबैक सिंगर के करियर जर्नी में बहुत सारे गाने हम तक पहुंचाए, 7 दशकों में। जी हाँ, एंड लता जी का कोई प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित उन्हें किया गया, इंक्लूडिंग भारत रत्न, इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और आपको बता दें कि लता जी भारत रत्न रिसीव करने वाली सेकेंड वोकलिस्ट बनी MS सुबुलक्ष्मी के बाद, एंड परहैप्स दैट इज़ वॉट मेक्स लता जी ट्रूली टाइमलेस। आज भी जब लता जी की आवाज़ हवाओं में घुलती है तो लगता है जैसे वो हमारे बिल्कुल पास है। हर वॉइस मे हैव फॉलन साइलेंट, बट हर म्यूजिक विल कंटिन्यू टू स्पीक टू जनरेशंस। हर सॉन्ग्स विल लिव ऑन इन एवरी हार्ट दैट हैज़ एवर फाउंड कम्फर्ट इन हर वॉइस। अ हार्टवेल tribute to the Nightingale of India, Lata Mangeshkar. So yes, dear listeners, this is Akashvani Hyderabad FM Rainbow 101.9 और यहाँ पर कुछ खूबसूरत गानों का सिलसिला जारी है। तो फिलहाल के लिए एक और गाना लता जी की आवाज़ में सुनते रहिए।

कि आप भी बिल्कुल अच्छे होंगे एंड इनकी एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट फ्रॉम द फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मेरे ख्वाबों में जो आए, और कहती हैं कि डियर गर्ल्स जिंदगी कितनी भी बिजी हो खुद को मत भूलना, तैयार होना, मुस्कुराना और हर दिन अपनी स्टोरी की हीरोइन बनकर जियो, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही सबसे खूबसूरत मेकअप होता है। वाह क्या बात है। सो मैसेज फॉर ऑल द गर्ल्स एंड थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे एक और मैसेज ये लिखते हैं, गुड आफ्टरनून निशा जी, आपको भी अ वेरी गुड आफ्टरनून, दिस इज़ लता फ्रॉम रामनगर एंड थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग लवली नंबर्स ऑफ लता जी, देर कैन बी नो एंड लिसनिंग टू हर सॉन्ग्स, कैन यू प्लीज़ प्ले द सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगो सॉन्ग प्लीज़। तो जी हाँ, ये सॉन्ग भी मैं कोशिश करूँगी क्योंकि आज हम भगत सिंह की जयंती भी मना रहे हैं और साथ में लता जी का गाया हुआ ये पेट्रियाटिक सॉन्ग, तो बिल्कुल ये कॉम्बिनेशन जो है बिल्कुल सही बैठता है। तो ये सॉन्ग मैं ज़रूर प्ले करना चाहूँगी एंड और भी कुछ रिक्वेस्ट हैं सॉन्ग रिक्वेस्ट, जैसे एक भाग मिल्खा भाग से भी एक सॉन्ग रिक्वेस्ट आई थी जिंदा, एंड ये थे सैयद इमरान अहमद जी। तो मैं इन गानों को प्ले करने की कोशिश करूंगी बट क्योंकि आज प्लेलिस्ट जो है लता मंगेशकर जी के गानों से सजाई गई है इसलिए मैं इन सॉन्ग रिक्वेस्ट को उतना प्ले नहीं कर पाई, बट स्टिल आई विल ट्राई। एंड यस, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे एक और प्यारे से सॉन्ग के साथ एंड क्योंकि मैं सॉन्ग रिक्वेस्ट जो है पूरी करने की कोशिश करूंगी, तो दिस सॉन्ग इज़ फ्रॉम द फिल्म जंजीर एंड ये है इकबाल जी की पसंद पे। तो सुनते रहिए ये एफएम रेनबो 101.9 और आपको बता दूं दोपहर के 1 बजे हम जुड़ेंगे हेलो रेनबो के साथ और होंगी ढेर सारी बातें।

0: FM Rainbow 101.9, musically yours.
1: एक बजकर दो मिनट दोस्तों, आप जुड़े हुए आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9 के साथ, मैं अनुषा आपके साथ, और ये वक्त यही कहता है कि अब हम और आप जुड़ने जा रहे हैं हेलो रेनबो के साथ। जी हाँ, हेलो रेनबो वही सफ़र है जहाँ पर होती है हमारी ढेर सारी बातें। आप कुछ कहते हैं, मैं कुछ सुनती हूँ, और मैं कुछ सुनती हूँ, और तब आपके पास बहुत कुछ कहने के लिए रहता है। वेल दोस्तों, कहते हैं

0: हम जिंदगी में बहुत कुछ कमाते हैं ना। हमारी जिंदगी में हमारी सबसे बड़ी जो कमाई है वो पैसा, सम्मान या हमारा स्टेटस नहीं होता, बल्कि वो लोग होते हैं जो हम अपनी जिंदगी के सफर में कमाते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे लोग जो हमें तब मिलते हैं जब हमारे पास सब कुछ होता है, और वही लोग तब भी हमारे साथ खड़े रहते हैं जब हमारे पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं होता। नो डाउट जिंदगी में हम बहुत कुछ अचीव करते हैं, लाइक करियर, सक्सेस, नाम, पहचान, लेकिन आखिर में याद वही लोग रहते हैं जिनके साथ हमने कभी खुशी बांटी, अपने दुख शेयर किए, कुछ खूबसूरत यादें बनाई, और जिन्होंने बिना किसी मतलब के हमारा साथ दिया। और शायद इसीलिए लाइफ की सबसे खूबसूरत इन्वेस्टमेंट होती है रिलेशनशिप्स, यानी रिश्ते जो ताउम्र हमारे साथ रहते हैं, चाहे वो रिश्ता फिर कोई अपने से हो या फिर किसी अजनबी से। वो कहते हैं ना, पैसा खर्च हो जा सकता है, स्टेटस भी बदल सकता है, लेकिन एक सच्चा रिश्ता वो वक्त के साथ और कीमती होता चला जाता है। तो अगर आज आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आप बिना झिझक कॉल कर सकते हैं, जिनके साथ आप अपनी खुशी भी शेयर कर सकते हैं और अपनी खामोशी भी, देन बिलीव मी, यू आर ऑलरेडी रिच, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आवर बिगेस्ट अर्निंग इज़ नॉट वॉट वी हैव बट हुम वी हैव। तो जी हाँ, आज का सवाल यही है कि आप कितना सहमत है इस बात से कि हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ाई बड़ी कमाई जो है वो जो हम अपनी ज़िंदगी में लोग कमाते हैं वो होती है। तो बहुत सारे हमारे लिसनर्स जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, उसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे। एक छोटे से संदेश की तरफ चलते हैं और उसके बाद मैं लौटूंगी और आपसे जुड़ूंगी।
1: రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్స్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటరు నమోదు చేసిన దానికి ఫామ్ 6 తో పాటు డిక్లరేషన్ ఫామ్, అభ్యంతరాలకు ఫామ్ 7, సవరణలకు ఫామ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 15 నుంచి అక్టోబర్ 7 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ఈఆర్ఓ, ఏఈఆర్ఓ లేదా బిఎల్ఓకు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1950కు కాల్ చేయండి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.
0: दोस्तों आज ना हेलो रेनबो के ज़रिए मैं आपको एक मौका दे रही हूँ। पता है मौका किस बात का? मौका इस बात का कि आपकी ज़िंदगी में जो लोग आपने कमाए हैं ना, उनके बारे में शेयर कीजिए। अगर कोई ऐसा है जिसको बिना किसी झिझक के आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, कोई भी चीज़ शेयर कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में बताइए। एंड यस, हमारे कुछ लिसनर्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ये नाइंसाफ़ी होगी अगर मैं नंबर ना शेयर करूं जिन पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे जो रेगुलर कॉलर्स हैं उन्हें तो ये नंबर्स पता ही है, लेकिन जो पहली बार इस शो को सुन रहे होंगे या फिर बहुत दिनों बाद, तो उनके लिए मैं बता दूं कि हमारे 3 फ़ोन नंबर्स हैं जिन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। पहला नंबर है 0402323-0030, दूसरा नंबर है 0402323-4821, और तीसरा 0402970-4715। तो ये 3 नंबर्स हैं जिन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन होने वाले हैं। हेलो रेनबो।
2: हेलो रेनबो, गुड आफ्टरनून, आदाब निशा जी।
0: हेलो रेनबो पे आपका स्वागत है, गुड आफ्टरनून, आदाब, सब खैरियत है ना शेर खान जी?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है और इससे ज्यादा क्या चाहिए, अल्लाह का करम है। और सभी सुनने वाले भाई बहनों को, दोस्तों को प्यार भरा सलाम आदाब। अल्लाह से दुआ है आपको सभी को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहतमंद रखे, और हमको एक साफ सुथरे रिश्ते में बंधे रहने की अल्लाह हिदायत दे, बिना मतलब,
0: शुक्रिया,
2: बिना लालच वाला।
0: शुक्रिया। तो उम्मीद है कि आपका जो सलाम है हमारे सारे लिसनर्स तक पहुंच गया होगा, और आपकी जो दुआएं हैं वो भी सभी तक पहुंच चुकी होंगी, तो शुक्रिया उसके लिए। और बताइए कि आज का जो सवाल है आपने सुना।
2: जी जी, अगर कुछ हम किसी को रिश्ते में जो बंधे हुए हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं ना?
0: मैंने ये कहा कि ऐसा लोग कहते हैं कि हमारी जिंदगी की जो सबसे बड़ी कमाई होती है वो होते हैं हमने जो लोग अपनी जिंदगी में कमाए हैं, तो आपका इस पर क्या कहना है?
2: जी बिल्कुल, कमाई मतलब बिना बिना स्वार्थ, बिना मतलब, बिना लालच के हम किसी को अपनाते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स हो या दोस्त आने वाले हो या कोई भी हो बाहर, हर इंसान से हमदर्दी जो भी है वही मतलब अपने अच्छे आमाल, अपने अच्छे कर्म, बिना लालच के रखे हुए दोस्त जो रिश्ते हैं वही काम में आने वाले हैं। हम धन दौलत, इज्जत, शोहरत, ये जो जो भी है, मतलब ये तो नहीं साथ में आता हमको, जो अच्छे अमल और

0: कर्म करेंगे
1: जी
0: तो वही काम में आने वाले हैं। और जो रिश्तेदारी होती है, हम किसी को भी बिना झिझक कभी भी याद कर सकते हैं और हमको भी कोई बिना झिझक याद कर सकता है, तो ये जो भी रिश्ता होता है ना, दोस्ती का हो या किसी भी का, अपने फैमिली का हो, तो ये रिश्ते ऐसे होने चाहिए कि हमको ये रिश्ते जोड़ने से पहले ही एक दिल में एक समाधि, एक कब्र बना लेनी चाहिए जिसमें सारा लालच, मतलब या कोई कोई एटीट्यूड या कोई भी चीज हो, इसमें दफन कर देना चाहिए ताकि ये रिश्तों में बाद में खलल पैदा ना करे।
1: जी ओके
0: ये रिश्ते होने चाहिए। और मैं भी बिना झिझक, आज मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे हैं तो मैं उनको बिना झिझक याद करता हूँ, वो मुझे बिना झिझक याद करते हैं, और हमारा दुआ सलाम वाले रिश्ते ही होते हैं। जब भी कोई मसला प्रॉब्लम पेश आ जाता है तो हम एक दूसरे को दुआओं की दरख्वास्त करते हैं। ऐसे बहुत से मेरे भाई

0: है तो हम एक दूसरे को दुआओं की दरख्वास्त करते हैं। ऐसे बहुत से मेरे भाई बहन हैं मेरे कांटेक्ट में, और मैं चाहे अपने हो फैमिली के हो या बाहर के हो, मुझे खून के रिश्ते से ज्यादा दिल का रिश्ता, दुआओं का रिश्ता मेरे नजर में अहमियत रखता है।
1: जी, ओके। तो चलिए, कॉल
0: और
1: करने के लिए
0: निशा
1: बहुत
0: जी,
1: बहुत शुक्रिया। हाँ जी,
0: एक
1: बताइए
0: सॉन्ग की
1: बताइए,
0: रिक्वेस्ट है, अगर हो जाए तो लता मंगेशकर जी का ही है,
1: कौन
0: फिल्म
1: सा?
0: यादगार, मनोज कुमार साहब की। जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे।
1: चलिए, बहुत अच्छा। ये मुखड़ा गाकर आपने बहुत अच्छा किया, मेरे लिए काम आसान कर दिया। मुझे ये गाना ढूंढने में आसानी होगी। सो थैंक यू सो मच,
0: शुक्रिया आपका बहुत बहुत निशा जी।
1: थैंक यू।
0: उल्काद बाजी महजबिन बाजी को भी मेरा प्यार भरा सलाम। अल्लाह हाफिज।
1: अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो जी हाँ, ये थे शेर खान जी। और जैसा कि मेरा सवाल था कि लोग कहते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई होती है वो होते हैं लोग, तो इस पे आपका क्या कहना है? बट मुझे लगता है कि आपके पास ज़्यादा कुछ शेयर करने के लिए नहीं रहेगा, तो मैं इस सवाल को थोड़ा सा बदल देती हूँ। आपके हिसाब से, आपकी ज़िंदगी में आपने जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे बेशकीमती चीज़ कमाई है, वो क्या है, ये बताइए आप। और ऐसी चीज़ जिसको मतलब कमा लिया है आपने, और गर्व से आप किसी को भी शेयर कर सकते कि हाँ, मैंने ज़िंदगी में इस चीज़ को कमाया है। तो चलिए, हमारे नेक्स्ट कॉलर की तरफ हम चलेंगे, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो रेनबो, हेलो हेलो हेलो रेनबो,
2: हेलो, हाय निशा जी, कैसे हैं आप?
1: हेलो, हाय, कौन बोल रहे हैं?
2: खुदा बाबा मेहर से।
1: ओहो खुदा, हाँ, मैंने देखा आपका जो मैसेज था सारी लड़कियों के लिए, है कि नहीं?
2: एक
1: चलिए, थैंक यू
2: ही
1: उसके लिए।
2: हुनर, एक ही हुनर सीख गए हम, एक ही हुनर सीख गए हम, सबके दिल में उतर गए हम।
1: वाह, क्या बात है।
2: हमारे तो इतने बेहिसाब दोस्त थे कि हम बता नहीं सकते। हर मतलब हेलो
1: हाँ जी, सुन रही हूँ मैं। आप बताइए
2: हेलो,
1: हुदा जी, आप बताइए, मैं
2: आपकी
1: सुन रही हूँ।
2: आवाज नहीं आ रही।
1: मुझे आपकी आवाज़ बरोबर आ रही है, तो आप बताइए। हेलो हेलो,
2: हेलो
1: हाँ जी, मुझे आपकी
2: हेलो
1: आवाज़ आ रही है, आप बस कंटिन्यू रखिए अपनी बातों को।
2: जी, हमारे तो दोस्त इतने हैं कि हम बता नहीं सकते, इतने दोस्त कमा लिए हम। और हेलो,
1: जी हेलो, मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू है। हेलो दोस्तों, यहाँ पे हुदा से बात हो रही थी, और उनकी बातों को सुनकर यही लगा कि उन्होंने काफ़ी सारे लोग कमा लिए अपनी ज़िंदगी में, इतने सारे दोस्त बना लिए जिनका कोई हिसाब ही नहीं है। खैर, मैं और बात करना चाहती थी आपसे, लेकिन कॉल आई थिंक यू नो नेटवर्क इशू था, तो डिसकनेक्ट हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं है, और भी हमारे लिसनर्स हैं, उनसे भी जुड़ना है। और हुदा, आप कभी भी हमें मैसेज भेज सकती हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, 4023234822। एंड यस, आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक छोटे से संदेश के बाद।
3: హలో డియర్ లిసనర్స్, మన లైఫ్లో ఎక్కువ కేర్ చేసే వాళ్ళతోనే మనకి ఎక్కువ మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ కూడా జరుగుతాయి. అవునా? మనం మన యాంగిల్ నుంచి చూస్తాం, వాళ్ళు వాళ్ళ యాంగిల్ నుంచి చూస్తారు. మనం మనమే కరెక్ట్ అని అనుకుంటాం, కానీ మేబీ అవతల వాళ్ళు కూడా అదే అనుకోవచ్చు కదా. అమ్మ మనకి చెప్పే కొన్ని మాటలు మనకి నసలాగా అనిపించవచ్చు, మన ఫ్రెండ్స్ చెప్పే నిజం మనకి హార్ష్గా అనిపించవచ్చు, ఒకరికి కరెక్ట్ అనిపించేది ఇంకొకరికి కంప్లీట్గా రాంగ్ అనిపించవచ్చు. బేసిక్గా ఒకరికి కన్సర్న్ అనిపించేది ఇంకొకరికి కంట్రోల్ లాగా అనిపించవచ్చు. అండ్ సమ్వేర్ బిట్వీన్ ఆల్ దీస్ మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. అలాంటి మన ఎవ్రీడే కాన్వర్సేషన్స్ వెనుక ఉన్న ఎమోషన్స్ని ఒక్కరి సైడ్ నుంచి కాకుండా రెండు పర్స్పెక్టివ్స్ నుంచి చూడడానికి, ప్రతి చిన్న అనుభవానికి ప్రతి భావనకి వేదిక మన ఈ సిరీస్ అనువంత. At 7 p.m. every day, only on FM Rainbow 101.9.
1: दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं हेलो रेनबो के साथ ऑन FM Rainbow 101.9, एंड यस,

0: यहाँ पर मेरा सवाल आपसे यही था कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो सबसे बेशकीमती चीज़ है वो क्या कमाई है, या फिर एक और सवाल मैं आपके आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि लोग कहते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई होती है वो कहीं ना कहीं लोग होते हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी अर्न इन लाइफ? इज़ इट मनी, सक्सेस, और द पीपल वी अर्न अलॉन्ग द वे? एंड यस, हमारे कुछ लिसनर्स हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आइए देखते हैं हमारे नेक्स्ट लिसनर यानी नेक्स्ट कॉलर कौन होते हैं। हेलो रेनबो, हेलो हेलो रेनबो, हेलो। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेटवर्क इशू हो रहा है, क्योंकि हमारे जो लिसनर्स हैं हमसे जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ नेटवर्क इशू है। एंड यस, फिर से एक बार ट्राई करेंगे। हेलो रेनबो।
1: नमस्ते आरजे निशा मैडम।
0: नमस्ते जी, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है। इकबाल जी बोल रहे हैं?
1: जी हाँ।
0: आप लोग इतना कॉल करते हो कि देखो, आपकी आवाज़ मुझे याद हो गई है पूरी तरह से। आप बस हेलो बोलते हो और मुझे आपका नाम याद आ जाता है
1: जी।
0: जी। तो कैसे हैं आप?
1: आज बहुत शानदार टॉपिक दिया है आपको स्लोट मेरा।
0: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, ये बोलकर आपने दिल
1: ये
0: खुश कर दिया।
1: गूंजती हुई इनर सिटी जिसका नाम है रेडियो,
0: वाह।
1: गूंजती हुई इनर सिटी के मेरे दोस्त है। वैसे यूं भी बहुत है, मगर जिसमें मैं नाम लेना चाहता हूँ सुल्तान साहिब प्रिंस अशोक अन्ना द ग्रेट मैन,
0: वाह, क्या बात है।
1: और जमाल भाई और शेर खान भाई। अभी जो बात कह रहे हैं
0: जी
1: अभी,
0: जी जी जी
1: यानी कि ये ऐसी यूनिवर्सिटी के दोस्त है मेरे, जहनी सुकून देते हैं।
0: वाह।
1: इनसे जब बात करता हूँ या इनसे कुछ मुलाकात होती है तो एकदम जिंदगी एक शांत होती, सुकून होता, पुरसुकून। दोस्त है ये
0: और यही तो सब कुछ चाहिए
1: रेडियो
0: होता
1: महज
0: है।
1: रेडियो नहीं है, एक जहनी सुकून है। इसी तरह से ये आरजे जो होते हैं, हमारे आरजे निशा मैडम,
0: अच्छा
1: प्रीति जी, ये सब एक
0: जी।
1: प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी के, और सब दिमाग को सुकून देने वाले प्रोफेसर है।
0: चलिए, इस बात के लिए बहुत बहुत
1: ये एक
0: शुक्रिया।
1: जिंदगी का एक ऐसी मुस्कान है हमारी जिंदगी की, ये बेहतरीन मुस्कान है।
0: चलिए, जानकर काफ़ी अच्छा लगा कि आपने तो बहुत सारे लोग कमाए हैं ज़िंदगी के सफ़र में, वो लोग जो आपके साथ हैं, और जैसा कि आपने कहा, जो कि बहुत मुश्किल है, कोई इंसान आपसे मिलता है और आपको ज़हनी सुकून दे जाता
1: आप
0: है।
1: जो गाना भी लगा है, वो जो
0: हाँ
1: मैं गाना सिलेक्ट करें, यारी है ईमान मेरा,
0: जी जी जी
1: यही पैमाने पे मैं किया है सारा मुक्का, और
0: अच्छा
1: यही पैमाने के आज टॉपिक दिए आपको
0: जी,
1: स्लोट, इसीलिए मैं रखा है। थैंक
0: थैंक यू सो मच। तो चलिए, बात
1: यू।
0: करके बहुत अच्छा लगा, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो जी हाँ, ये थे इकबाल जी, एंड इनकी बात सुनकर यही लगा कि इनके लिए इनके दोस्त इम्पॉर्टेंट हैं, यानी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग कमाए, जैसा कि आपने सुना, रेडियो यूनिवर्सिटी इनकी चलती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग इनसे जुड़े हुए, हमारे जो डियर लिसनर्स हैं, हमारे सभी प्रिय श्रोता, रेगुलर कॉलर्स इनके साथ जुड़े हुए। चलिए, जानकर बहुत अच्छा लगा, एंड यस, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे एक और कॉलर की तरफ। हेलो रेनबो,
2: हेलो, हाय, मेरा
0: हेलो, हाय।
2: नाम आरती है, मैं चिकनगुड़ा हैदराबाद से बात कर रही हूँ।
0: ओके आरती जी, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपसे पहली बार बात हो रही है, आप कैसे हैं? और आप, बहुत अच्छा लगा मुझे। जी
0: थैंक यू, थैंक यू। आपसे भी पहली बार बात हो रही है और मुझे भी उतना ही अच्छा लगा।
2: हमेशा
0: और
2: आपकी
0: बताइए।
2: आवाज़ सुनती हूँ, आपकी आवाज़ बहुत क्यूट है। जी,
0: थैंक यू, थैंक यू।
2: और
0: वैसे आपकी आवाज़ भी
2: आप
0: बहुत क्यूट है।
2: वो तो आपको ऐसा लगता है, जो
0: जी।
2: आज का टॉपिक है वो टॉपिक तो बहुत अच्छा है।
0: थैंक यू।
2: जैसे कि रिश्तों के बारे में है टॉपिक, तो रिश्ते ज्यादा रखना, मतलब ज्यादा ही रहना, रिश्ते कितने बनाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन जितने रिश्ते हैं उससे कितने अच्छे से निभा रहे, कितनी सच्चाई के साथ निभा रहे, ये जरूरी है।
0: जी,
2: जी, पहले
0: बिल्कुल सही कहा आपने। जी
2: माने
0: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो। तो जी हाँ, ये थी आरती जी। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारे बहुत सारे लिसनर्स का कॉल जो है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से डिस

कनेक्ट हो जा रहा है, बट कोई नहीं, हम चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिसनर्स से जुड़ पाए आज. एंड यस, आज का जो सवाल है बहुत ही सिंपल सा सवाल मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम जिंदगी में कमाते हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. और यस, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे. फिलहाल के लिए चलते हैं एक सॉन्ग की तरफ और फिर हम जुड़ेंगे अपने कुछ कॉलर्स के साथ. और आपको बता दें कि दोपहर के 1:30 पर एक बार फिर से आप सुनेंगे एशियन गेम्स के लाइव अपडेट्स जो कि हो रहा है जापान में.

1:25 दोस्तों, आप जुड़े हुए आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 के साथ, और हेलो रेनबो के साथ थे हम। लेकिन अब वक्त को देखते हुए लग रहा है कि मुझे आज के लिए आपसे विदा लेना पड़ेगा, क्योंकि 1:30 से आप सुन पाएंगे एक स्पेशल फीचर लता मंगेशकर जी के बारे में। जी हाँ, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, एक खूबसूरत सी आवाज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, तो एक स्पेशल फीचर तो बनता ही है ना। और इसीलिए अभी फिलहाल के लिए आपसे विदा लेना चाहूंगी, इस वायदे के साथ कि होगी आपसे फिर एक बार मुलाकात, और उस अगली मुलाकात तक अपना रखिए अच्छा सा ख्याल, अपने अपनों का भी रखिए अच्छा सा ख्याल। और जी हाँ, सुनते रहिए FM रेनबो 101.9। और ये जो स्पेशल फीचर है, ये है RJ जयदीप की तरफ से। एंड यस, इसी के साथ मैं आपको छोड़े जाती हूँ एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के साथ, लता जी की आवाज़ में।

0: कुछ आवाजें सिर्फ आवाज नहीं होती।
1: बिल्कुल, कुछ आवाजें जब हम सुनते हैं तो लगता है जैसे कोई पुरानी याद अचानक सामने आ गई हो।
0: कभी बचपन याद आ जाता है, कभी माँ के हाथ का खाना, कभी कोई पुरानी फिल्म, और कभी कोई ऐसा इंसान जो अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी आवाज अब भी हमारे साथ है।
1: और भारतीय संगीत की दुनिया में ऐसी आवाज का नाम है लता मंगेशकर।

0: एक ऐसी आवाज जिसने सिर्फ हिंदी सिनेमा को नहीं बल्कि मराठी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और कई भाषाओं के संगीत को अपनी आवाज दी।
1: बयालीस से लेकर 2019 तक लगभग 7 दशकों का एक संगीतमय सफर। तो आज हम लता जी की कहानी सिर्फ लफ्जों में नहीं सुनेंगे, हम उनकी कहानी उनके गानों के जरिए महसूस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक आवाज के उस सफर को जो कभी खत्म नहीं हुआ।

0: 1942, एक बहुत छोटी सी लता मंगेशकर, और शायद उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये आवाज आने वाले सालों में भारतीय संगीत की सबसे पहचानी जाने वाली आवाज में से एक बनेगी।
1: हर बड़े सफर की तरह लता जी का सफर भी छोटे छोटे कदमों से शुरू हुआ।
0: स्टूडियो, माइक्रोफोन, रिकॉर्डिंग और एक नई आवाज जो अपनी जगह बना रही थी।

0: 1946 के आसपास का ये दौर था जब प्लेबैक सिंगिंग का फॉर्मेट भी आज की तरह पूरी तरह स्थापित नहीं था और लता जी की आवाज धीरे धीरे अपनी एक अलग पहचान बना रही थी।
1: लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आने वाला था। 1948 में एक ऐसा गाना आया जहां उनकी आवाज में दर्द भी था और अभिव्यक्ति भी।
0: और फिर आया 1949 फिल्म

0: इस गाने की सबसे खास बात सिर्फ इसका संगीत नहीं था, बल्कि लता जी की आवाज का वो रहस्यमय अंदाज, वो धीरे धीरे सामने आना, जैसे आवाज दूर से आ रही हो और फिर पूरे गाने को अपने अंदर समेट लेती हो, जिसके बाद लता मंगेशकर नाम को एक अलग पहचान मिलने लगी। एक ही साल में एक और यादगार गाना फिल्म अंदाज का।
1: यहाँ आवाज का अंदाज बिल्कुल अलग है, दर्द है, लेकिन दर्द के साथ एक गरिमा भी है, और शायद यही लता जी की खासियत थी, हर परिस्थिति के हिसाब से आवाज का भाव बदल देना।

0: अब हम आ रहे हैं 1950 के दशक में और ये वो दौर है जहां लता जी सिर्फ एक गायिका नहीं रही, वो संगीतकारों की कल्पना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी।
1: 1952 बैजू बावरा

0: अब एक दिलचस्प बात, लता जी ने सिर्फ हिंदी में नहीं गाया बल्कि उनकी आवाज ने भारत की कई भाषाओं का सफर भी किया।
1: तेलुगु सिनेमा में भी उनकी आवाज सुनाई दी 1955 में फिल्म संतानम का ये गीत।

0: एक तरफ क्षेत्रीय भाषाएं और दूसरी तरफ हिंदी सिनेमा में उनका स्वर्णिम दौर।
1: 1955 अनारकली, इस गाने में जो कोमलता है वो लता जी की गायकी की एक पहचान बन गई थी। आवाज बिल्कुल नर्म।

और फिर 1958 मधुमति। ये सिर्फ एक लोकप्रिय गीत नहीं था, इस गाने के लिए लता जी को फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार मिला और ये उनका पहला फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका पुरस्कार था।

0: सोचिए एक आवाज जो कुछ साल पहले अपनी जगह बना रही थी और अब वही आवाज बड़े फिल्म पुरस्कार जीत रही थी।
1: 1950 के दशक के बाद 1960 का दशक और 1960 में भारतीय सिनेमा ने देखा एक अविस्मरणीय संगीतमय पल, मुगले आजम।
0: एक ऐसा गाना जहां आवाज ने सिर्फ प्यार नहीं, चुनौती भी है, आत्मविश्वास भी है और विद्रोह भी। और लता जी ने इस भाव को जिस तरह अपनी आवाज दी वो आज भी यादगार है।

इसी साल एक और सदाबहार गीत अजीब दास्तां है ये। इस गाने में कहानी एक रिश्ते की है, लेकिन एहसास लगभग हर पीढ़ी समझ सकती है। खुशी, उलझन और थोड़ा सा दिल टूटना, और लता जी की आवाज इन सभी भावनाओं को एक साथ लेकर चलती है।

0: 1962 फिल्म 20 साल बाद। ये गाना अपने माहौल और मधुर धुन के लिए याद किया जाता है। इस गीत के पुरस्कारों की बात करें तो 1963 में लता जी को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार मिला। और दिलचस्प बात यह कि इसी गाने के लिए गीतकार शकील बदायूनी को भी फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मिला।
1: यानी एक ही गीत गायिका और गीतकार दोनों के लिए पुरस्कार विजेता रहा।

और 1962 में ही आपकी नजरों ने समझा एक सरल सी मधुर धुन, लेकिन बोल और आवाज के उतार चढ़ाव की वजह से एक सदाबहार रोमांटिक सॉन्ग।

0: कभी कभी किसी गाने को यादगार बनाने के लिए तेज या जोरदार संगीत की जरूरत नहीं होती।
1: एक खूबसूरत मेलोडी और एक खूबसूरत आवाज काफी होती है।

0: है।
1: और अब एक ऐसा गीत जो किसी फिल्म का हिस्सा नहीं था, लेकिन पूरे देश के दिल का हिस्सा बन गया।
0: ऐ मेरे वतन के लोगों, 27 जनवरी 1963 को दिल्ली में लता जी ने ये गीत प्रस्तुत किया था।
1: और ये गीत शहीदों को याद करने वाले सबसे प्रतिष्ठित देशभक्ति गीतों में शुमार हो गया।
0: इसमें लता जी की आवाज में जो भाव है, वो सिर्फ संगीत नहीं, एक

0: 1964
1: फिल्म वो कौन थी
0: और एक गाना जिसका नाम लेते ही शायद संगीत प्रेमियों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है,
1: लग जा गले।
0: इस गाने की खूबसूरती ये है कि ये बहुत सहजता और भावनाओं को व्यक्त करता है। कोई जोरदार घोषणा नहीं, बस एक पल को संभाल कर रखने की भावना, और इसी वजह से पीढ़ियां बदल गई, लेकिन ये गाना नहीं

0: 1965 फिल्म गाइड।
1: एक बिल्कुल अलग लता, यहाँ दर्द नहीं आजादी है, एक नई शुरुआत का उत्साह है और एक महिला का अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों में देखने का भाव भी।
0: लता जी ने हर पीढ़ी के महिला किरदारों को अलग आवाज दी
1: और ये गीत उसी विविधता का एक खूबसूरत उदाहरण है।

0: और अब लता जी के संगीतमय नक्शे को और बड़ा करते हैं।
1: हिंदी के साथ साथ बंगाली,
0: तेलुगु,
1: कन्नड़,
0: तमिल
1: मलयालम,
0: जुबान बदलती रही।
1: लेकिन आवाज का भाव नहीं बदला।
0: बंगाली में लता जी का उच्चारण और कोमलता बिल्कुल अलग रंग देती है।

इसी दौर में एक और गाना ज्वेल थीव का। यहाँ लता जी की आवाज बिल्कुल अलग ऊर्जा लेकर आती है। तेज लय, जटिल धुन और फिर भी उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट। ये भी दिखता है कि लता जी को सिर्फ धीमे रोमांटिक गानों की गायिका समझना कितना अधूरा होगा।

0: उनकी पहुंच वास्तव में बहुत ज्यादा विस्तृत थी।
1: 1970 का दशक। अब हम आ गए हैं 1970 के दशक के आखिरी दौर में। 1968 में सत्यम शिवम सुंदरम, टाइटल सॉन्ग और लता जी की आवाज।

0: इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और फिल्म के संगीत ने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता। यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर भी है, लता जी को इस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के रूप में पुरस्कार तो नहीं मिला, लेकिन ये गीत खुद उनकी सबसे पहचान वाली रिकॉर्डिंग्स में से एक बन गया।
1: अब 1980 का दशक लता जी के करियर का एक और दौर।
0: सिनेमा बदल रहा था, संगीत की व्यवस्थाएं बदल रही थी, लेकिन लता जी की आवाज की मांग बनी रही।
1: और 1981 की नसीब से मेरे नसीब में

0: और अब एक बहुत खास पड़ाव, 1990 फिल्म। लेकिन इस फिल्म के गीतों के लिए लता जी को सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला और ये उनका तीसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था।
1: इस गाने में उनकी आवाज की जो गहराई है वो बिल्कुल अलग अनुभव पैदा करती है, एक शास्त्रीय स्पर्श, एक रहस्यमय एहसास और भावनाएं जो गाने खत्म होने के बाद भी कुछ देर तक साथ

0: अब आ गए 1990 के दशक में
1: और लता जी की आवाज अब एक नई पीढ़ी के जश्न का भी हिस्सा बन रही थी।
0: 1994 फिल्म हम आपके हैं कौन,
1: शादी, परिवार, मस्ती और लता जी की आवाज ने इस गीत को एक बिल्कुल अलग आकर्षण दिया।

0: इस गीत के लिए लता जी को फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड भी दिया गया।
1: यानी दशकों बाद भी उनकी आवाज नए सिनेमा के साथ जुड़ रही थी और 1997 फिल्म दिल तो पागल है, लता जी की आवाज और 90 के दशक का रोमांटिक सिनेमा। इस समय तक दर्शकों की पीढ़ियां बदल चुकी थी, लेकिन लता जी के गाने सुनने वाले हर उम्र के लोग थे और शायद इसी को कहते हैं सदाबहार आवाज,
0: जो किसी एक पीढ़ी की नहीं होती।

0: बाद भी लता जी की आवाज भारतीय सिनेमा में भी सुनाई देती रही। 2001 फिल्म लगान,
1: एक भक्ति भाव से जुड़ा फिल्मी गीत और लता जी की आवाज में वही परिचित भक्ति का रंग।

0: 2004 फिल्म वीर जारा। इस फिल्म का एक दिलचस्प संगीतमय पहलू ये था कि मदन मोहन जी की पुरानी अप्रकाशित धुनों को नए संगीत संयोजन के साथ फिर से प्रस्तुत किया गया और लता जी की आवाज ने उन धुनों को एक नई पीढ़ी तक पहुंचाया।
1: जैसे पुराने डायरी का कोई खत जो सालों बाद दोबारा खोला गया हुआ।

2006 फिल्म रंग दे बसंती, और यहाँ लता जी की आवाज एक माँ की भावना को व्यक्त करती है। एक माँ जो अपने बच्चे को याद कर रही है, और दर्शकों के लिए ये गीत सिर्फ फिल्म का एक दृश्य नहीं रहा, बहुत लोगों के लिए ये माँ और बच्चे के रिश्ते का एक भावुक गीत बन गया।

0: और अब हम पहुंच गए हैं 2019 में।
1: 1942 से 2019,
0: एक बहुत लंबा सफर।
1: और इस सफर का आखिरी रिकॉर्डेड और रिलीज हुआ गीत।

0: प्रसून जोशी के बोल, मयूरेश पाई का संगीत और लता जी की आवाज।
1: 30 मार्च 2019 को रिलीज हुआ ये गीत देश और सशस्त्र बलों को समर्पित था। सोचिए, जिस आवाज ने 1940 के दशक में अपना सफर शुरू किया, वही आवाज 2019 में भी देश के लिए गा रही थी।
0: लेकिन लता जी को सिर्फ फिल्मी गानों से याद करना शायद उनकी आवाज को आधा याद करना होगा,
1: क्योंकि उनकी आवाज में रोमांस था,
0: दर्द था,
1: देशभक्ति थी
0: और देवभक्ति भी थी।
1: उन्होंने भक्ति संगीत को भी अपनी आवाज से एक अलग पहचान दी।
0: तो अब कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हम लता जी को उनके कुछ भजनों के साथ याद करेंगे।
1: कुछ आवाजें सुनते समय हम गाने को नहीं, उनके भीतर की शांति को सुनते हैं।
0: लता जी के भजनों में भी कुछ ऐसा ही एहसास मिलता है। एक भजन,
1: एक संदेश
0: और एक आवाज
1: जो भक्ति को बहुत सरल तरीके से दिल तक पहुंचाती है।

0: और शायद इसीलिए लता जी की आवाज को किसी एक श्रेणी में रखना मुश्किल है। फिल्मी गीत हो, देशभक्ति का गीत हो, क्षेत्रीय भाषा का गीत हो या भजन,
1: आवाज वही लेकिन एहसास हर बार नया।
0: 1942 से 2019 तक
1: 77 साल का एक संगीतमय सफर,
0: मराठी से हिंदी,
1: बंगाली से तेलुगु,
0: कन्नड़ से मलयालम,
1: तमिल से भजनों तक।
0: उनकी आवाज ने सिर्फ गाने नहीं गाए,
1: उस आवाज ने हमारी जिंदगी के पलों को यादगार बनाया।
0: पहला प्यार,
1: पहली जुदाई,
0: शादी,
1: माँ
0: देशभक्ति
1: और भजन,
0: हर एहसास के लिए।
1: जैसे लता जी की आवाज कहीं ना कहीं मौजूद थी।
0: और शायद इसी वजह से लता जी का सफर 2019 में एक आखिरी रिकॉर्डिंग तक जरूर पहुंचा।
1: लेकिन उनकी आवाज आज भी नए लोगों तक पहुंच रही है।
0: और जब तक कोई लग जा गले सुनेगा,
1: कोई आजारे परदेसी गुनगुनाएगा,
0: कोई लुका छुपी में माँ को महसूस करेगा,
1: और कोई भजन में सुकून ढूंढेगा,
0: तब तक लता जी की आवाज हमारे साथ रहेगी।
1: उनका गीत खत्म हो सकता है,
0: लेकिन उनका सुर
1: कभी
0: कभी
1: आखिरी
0: आखिरी
1: नहीं
0: नहीं
1: होगा।
0: होगा।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

0: 26 की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: Welcome back to your Asian Games live update, where the action is coming thick and fast, and India has already given us another reason to celebrate. I am Vidushi Watts with Mohammad Shahid Azmi, bringing you all the latest results, medal moments and big developments from the Asian Games. And what a way to begin this update, where India has confirmed another medal in boxing. Priya has stormed into the semi-finals of the women's 60kg category, and with that semi-final berth, she has guaranteed herself a medal for India. Priya faced Tajikistan's Migona Samadova in her quarterfinal bout, and she delivered a commanding performance, winning the contest 5-0, a unanimous victory, a place in the last four, and most importantly, another medal is now assured for the Indian contingent. Her semi-final is scheduled for September 30, so there is still another big challenge ahead.
3: स्क्वैश की बात कर लेते हैं। स्क्वैश में भारत कमाल कर रहा है। जापान के खिलाफ पहले बढ़त, फिर बराबरी, फिर आखिरी निर्णायक मुकाबले में शानदार जीत। जी हां, भारत ने स्क्वैश कोर्ट पर दम दिखा दिया है। भारतीय महिला स्क्वैश टीम ने पूल सी के रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-1 से शिकस्त दे दी है। पहले मैच में जोशना चिनप्पा ने एरिसा सानो को सीधे गेमों में 11-8, 11-9 से शिकस्त दी। भारत को यहां 1-0 की बढ़त दिला दी। दूसरे मुकाबले में अनाहत सिंह और सामोती वतानबे के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। अनाहत को 5 गेम तक चले मुकाबले में 8-11, 11-8, 11-7, 8-11, 9-11 से हार का सामना करना पड़ा, और जापान ने यहां पर स्कोर 1-1 से बराबर कर लिया। अब फैसला तीसरे और निर्णायक मैच पर पहुंच गया था। यहां तन्वी खन्ना ने दबाव के बीच शानदार संयम दिखाया और अकारी मुद्रिकोवा को 12-10, 11-9, 4-11, 12-10 से शिकस्त देकर भारत को 2-1 से जीत दिला दी। भारत का अब पूल सी में अगला मुकाबला 29 सितंबर को ईरान से खेला जाएगा।
2: Absolutely a strong finish for the Indian women in Pool C, and now let's look at the Indian men who are on court against the Republic of Korea with their Pool A match currently undergoing right now. So the first match has already been done, which was Vellavan Senthil Kumar, who has already given India the perfect kickstart that was needed. So he defeated Korea's Na Joo Young in straight games 11-6, 11-4, 11-7, which did put India 1-0 up in the team tie. And after that, it was a beautiful, beautiful dominating game by Abhay Singh, which has just ended. He has scored again a 3-on-3 straight victory. Amazing lead in all the games as 11-4, 11-7 and 11-1. Now in the next match, which is the third one, it's Veer Chotrani against Oh Seo-jin to finally settle us into this straight victory against South Korea. And of course, we will keep you updated as this contest develops.
3: Vidushi, chalte hain athletics ke track par, wahan mix 4x100 meter रिले के फाइनल में भारत पहुंच गया है, और पहुंचता क्यों नहीं। अनिमेश और हरित्रा ने जो पूरा दम लगाया, बिल्कुल हरिता भद्रा ने जो आखिर में दम लगाया, उससे भारत ने वहां पर शानदार तरीके से कामयाबी हासिल की है। एथलेटिक्स ट्रैक में भारत के लिए बड़ी खबर यकीनी तौर पर है। मिक्स 4x100 meter रिले की हीट में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 41.54 सेकंड का समय के साथ दूसरा स्थान हासिल किया और फाइनल में जगह बना ली। भारत की शानदार दौड़ में अनिमेश कुजूर का तीसरा लेग बेहद प्रभावशाली रहा, जिसने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। फाइनल में भारत से एक और दमदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है।
2: And now a quick update coming in from hockey, that India's men was scheduled to take on Bangladesh in their Pool A encounter, but the match now has been rescheduled.
3: बिल्कुल, बात करते हैं महिला डिस्कस थ्रो के फाइनल मुकाबले की, जहां भारत की सीमा पुनिया एक मर्तबा ऐसा था तीसरे पायदान पे चल रही थी, ब्रॉन्ज मेडल की दौड़ में थी, अब चौथे पायदान में पहुंच गई है। चीन की दो खिलाड़ी फेंग बी और जियांग पहले और दूसरे स्थान पर। फेंग बी 63.69 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर, जबकि जियांग भी 62.25 मीटर का थ्रो लगाकर दूसरे स्थान पर। वहीं थाईलैंड की इंसाएंग 61.64

4.3 मीटर का थ्रो लगा के तीसरे स्थान पर, वहीं सीमा पुनिया 59.88 मीटर के बाद तीसरे चौथे स्थान पर बनी हुई है। क्या होता है, क्या घटित होता है अगले एक घंटे में, हम अगले जो अपडेट हम लेके आएंगे 4:30 पर उसमें बताएंगे। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और विदुषी वत्स को अगले अपडेट तक इजाजत दीजिए, धन्यवाद।

0: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया।
1: स्वागत है आप सबका एशियन गेम्स 2026 की विशेष अपडेट में। घड़ी की सुई में ठीक 5:30 हुए हैं। बताते हैं इस घंटे की खास अपडेट। एशियन गेम 2026 में एथलेटिक्स ट्रैक से भारत के लिए एक और शानदार खबर आई है। पुरुषों की 1500 मीटर में गुलवीर सिंह ने सिल्वर मेडल जीतकर भारत का परचम लहरा दिया। गुलवीर ने 3:36.72 सेकंड के पर्सनल बेस्ट टाइम के साथ रेस पूरी की। बेहद करीबी मुकाबले में जापान के काजुतो इजावा ने 3:36.35 सेकंड से एशियन गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया, जबकि जापान के ही नागिया मोरी ने 3:37.92 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। भारत के एक और धावक यूनुस शाह 3:43.88 सेकंड के साथ नवे स्थान पर है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले एशियन गेम्स में भारत ने इस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था और अब गुलवीर सिंह ने उसे सिल्वर मेडल में बदल दिया, यानी पदक का रंग बदल दिया है।
2: And now we have another athletics medal update live coming in from the women's 5000 meters final. Parul Chaudhary has done it again. She has won the bronze medal for India in the women's 5000 meters, adding another medal to what has been a remarkable athletics campaign for the country. She has already stand out among many performers from India in the women's 3000 meters steeplechase medal as well. And you know, there was plenty of attention to Seema as well after bringing home the bronze medal in 10,000 meters. Expectations were high, but Parul Chaudhary has done it again. Another medal from athletics.
1: Hockey की बात कर लेते हैं विदुषी। यहाँ पर भारत शानदार तरीके से एक तरफा अंदाज में बांग्लादेश पर पूरी तरह से हावी है। अंतिम जो क्वार्टर है खत्म होने वाला, 5 मिनट का समय बाकी और भारत ने 8-0 की लीड ले रखी है। यहाँ पर हरमनप्रीत सिंह जो भारत के जबरदस्त डेक विलकर है, उन्होंने कमाल किया है। 27, 40 और 45, ये मैं मिनट बता रहा हूं, 27वें मिनट में 40वें मिनट में 45वें मिनट में 3 गोल स्कोर किया, लेकिन शुरुआत की थी अभिषेक ने 3 तीसरे मिनट में पहला गोल किया था। युवराज सिंह ने 22वें मिनट में गोल किया था। उसके अलावा बात करें सुखजीत सिंह ने 32वें मिनट में गोल किया। शिनालन लाकलाड़े 44वें और 45वें मिनट में लगातार 2 मिनट में 2 गोल स्कोर किया था। अभी इस वक्त भारत 8, बांग्लादेश 0 और खेल खत्म होने में महज 4.25 मिनट का समय बचा है।
2: We also have 2 athletics finals underway right now with plenty of Indian interest. The men's long jump and the men's javelin throw are happening simultaneously. So let's first take a closer look at the live action happening in the long jump and what difference an attempt can make. Let's begin with Murali Sri Shankar, who began with a 7.66 meter jump, which placed him 5th after the opening round. But he came roaring back with his second attempt, producing a superb 8.07 meters and moving straight up to the second position. That position stayed the same after his third attempt, recording 7.56. And there is movement for David Solomon Paturaj as well. He opened with 7.51 meters, which had him in the sixth position after the first attempt. His second jump measured 7.45 meters and that sees him currently in 7th. The position has remained the same after his third attempt, recording 7.70. The fourth one recording 7.45. Meanwhile, China's Chi Young has maintained the first position so far while also hitting the season best with 8.17. Meanwhile, Shahid, what's the latest from the men's javelin throw?
1: Bilkul, Rohit Yadav aur Yashveer Singh, in dono khiladiyon ne Neeraj Chopra ki kami mahsoos अब तक नहीं होने दी। रमेश पथिराजे पीछे चल रहे हैं। रोहित यादव पहले स्थान पर हैं, 84.35 मीटर दूर भाला फेंक कर। वहीं यशवीर सिंह 83.56 मीटर भाला फेंक कर दूसरे स्थान पर, यानी पहले और दूसरे स्थान पर भारतीय खिलाड़ी हैं। अगले घंटे में क्या घटित होता, कहां जाकर ऊंट किस करवट बैठता है, अगले घंटे आपको अपडेट में बताएंगे। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और विदुषी वत्स को अगले घंटे के बाद आने के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।
3: మీరు వింటున్నారు రెయిన్బో ఎఫ్ఎం 101.9 రెయిన్బోతో లైఫ్ రంగులమే. నెక్స్ట్ తాజా ట్యూన్స్లో అండ్ ఖుషి మూవీలో నుంచి ఉదిత్ నారాయణ అండ్ కవిత సుబ్రహ్మణ్యం పాడిన పాట అమ్మాయి సన్నగా అంటూ అండ్ రాజేష్ పాడిన పాట ఏటో వెళ్ళిపోయింది మనసు అంటూ

0: एथलेटिक्स की पारुल चौधरी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया। पारुल का इन एशियन गेम्स में यह दूसरा पदक है। पारुल ने इससे पहले 5000 मीटर में 15:14.61 का समय निकालकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वहीं आज पुरुषों के जेवलिन थ्रो में रोहित यादव ने कांस्य पदक अपने नाम किया। रोहित ने 84.35 मीटर का शानदार थ्रो किया। महिलाओं की 400 मीटर हर्डल्स में विद्या रामराज ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने 54.75 का समय निकालते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी कायम कर डाला। और आखिर में कुराश से अच्छी खबर आई। महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में पिंकी बलहारा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं भारतीय मुक्केबाजों ने आज ऐसा पंच लगाया कि एक ही दिन में 3 मेडल पक्के हो गए। बात 3 मुकाबलों की नहीं बल्कि 3 ऐसे मैच थे जिसने मेडल की न सिर्फ आस बढ़ाई है बल्कि मेडल का रंग भी बदलने की उम्मीद जताई है। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन, प्रिया और कपिल पोखरिया ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर भारत के लिए पदक पक्के किए हैं।
1: And as we wrap up, what today has been a remarkable day for India, let's now look ahead to tomorrow and the action that awaits. There's a pretty good lineup across disciplines with several Indian athletes ready to take center stage. If we look at archery, we have the men's and women's individual round of 32 and 16. We'll be looking at Neeraj Chauhan, Dheeraj, and we'll be looking at Kirti as well. And of course, when it comes to athletics, well, it's another busy day. We have the women's high jump final where expectations will be high from Pooja. We have the women's hammer throw final scheduled with Anushka and Tanya carrying our hopes. Then comes the men's 800 meter final with Mohammad Afzal in action, and we'll also be looking forward to the men's 5000 meter final where all eyes will once again be on Gulveer Singh and Avinash Sable. In boxing as well, some big semi-final bouts coming up for us. The women's 65 kilo semi-final, India's Parveen will take on China's opponent. Men's 80 kilo semi-final, Ankush will face Uzbekistan's opponent, while in men's plus 90 kilogram semi-final, India's Narendra will be up against Kazakhstan's opponent as well.
0: जी बिल्कुल, अब मेडल टैली पे चलते हैं, बताते हैं। चाइना ने 132 गोल्ड, 53 सिल्वर और 45 ब्रॉन्ज समेत 230 पदक जीते हैं। 230 पदक के साथ सबसे ऊपर है। जापान की बात करें, 41 गोल्ड, 68 सिल्वर, 63 इसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल, 172 पदक हैं। दूसरे पायदान पर वहीं कोरिया की बात करें, 21 गोल्ड मेडल हैं, 26 सिल्वर, 43 ब्रॉन्ज समेत 90 पदक हैं। भारत की बात कर लेते हैं, 4 गोल्ड, 20 सिल्वर, 21 कांस्य समेत कुल 45 पदक जीते। इन 45 पदकों में 19 पदक केवल एथलेटिक्स से आए जबकि 12 पदक शूटिंग से आए हैं। अब कल का दिन जब नया शुरू होगा वहां देखना होगा भारत किस तरह का प्रदर्शन करता है। लेकिन आज की अंतिम अपडेट में यह बताते हुए, आज रात 10 बजे विशेष हमारी रिपोर्ट जरूर सुनिएगा जो एशियन गेम्स पर आधारित है। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और विदुषी वस को कहते हुए अनुमति दीजिए, कल सुबह ठीक 9:30 पर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियोज की घड़ी में 9:30 और 10 सेकेंड्स हो रहे हैं। पेश है उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

0: कामयाबी और इज्जत उन्हीं के हिस्से में आई। सामीन, सच्चाई का रास्ता हमेशा हमवार नहीं होता, इसमें कांटे भी होते हैं, आजमाइशें भी, मगर ये रास्ता मंजिल तक जरूर पहुंचाता है। सच्चाई सिर्फ बोलने का नाम नहीं, बल्कि ये एक मुकम्मल तर्ज जिंदगी है। ये हमारे अल्फाज में भी होनी चाहिए और हमारे अमल में भी। अगर हम जबान से सच बोलें मगर हमारे आमाल उसके बरक्स हों, तो वो सच भी अपनी तासीर खो देता है। आज के दौर में जहां मफाद परस्ती आम हो चुकी है, वहां सच बोलना एक चैलेंज बन गया है। लोग अक्सर वक्ती फायदे के लिए सच को छुपा लेते हैं या झूठ का सहारा ले लेते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि झूठ वक्ती फायदा तो दे सकता है मगर तवील मुद्दत में नुकसान ही देता है। एक मुआशरा उसी वक्त मजबूत बनता है जब उसकी बुनियाद सच्चाई पर हो। जहां सच्चाई न हो वहां एतमाद खत्म हो जाता है, और जहां एतमाद न हो वहां रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। सच्चाई एतमाद पैदा करती है। जब एक इंसान सच्चा होता है तो लोग उस पर भरोसा करते हैं, और यही भरोसा हर रिश्ते की बुनियाद होता है, चाहे वो दोस्ती हो, खानदानी रिश्ता हो या पेशावराना ताल्लुक। हर जगह सच्चाई बुनियादी किरदार अदा करती है। सामीन, आइए एक लम्हे के लिए खुद से सवाल करें कि क्या हम हमेशा सच बोलते हैं? क्या हम मुश्किल हालात में भी सच का साथ देते हैं? अगर जवाब नहीं है तो ये मायूसी की बात नहीं, बल्कि एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का, क्योंकि सच्चाई को अपनाना एक सफ़र है, और इस सफ़र का आगाज़ किसी भी लम्हे किया जा सकता है। सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, और यह हिम्मत आहिस्ते आहिस्ते पैदा होती है। हमें चाहिए कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में छोटे छोटे कदम उठाएं। मसलन, एक तालबिल अगर इम्तिहान में नकल न करे, चाहे उसके नंबर कम ही क्यों ना आए, तो वो दरअसल एक मजबूत बुनियाद रख रहा होता है। ईमानदारी और सच्चाई की बुनियाद। इसी तरह एक ताजिर अगर दयानतदारी से कारोबार करे, कम नफ़ा पर भी मुतमइन रहे, तो इसका एतमाद और इज़्ज़त दोनों बढ़ते हैं। और एक उस्ताद जो अपने इल्म और किरदार में सच्चा हो, वो नस्लों को सवार देता है। सामीन, सच्चाई का रास्ता बज़ाहिर मुश्किल लगता है, लेकिन यही रास्ता इंसान को असल कामयाबी तक ले जाता है। झूठ का रास्ता आसान लगता है, मगर ये रास्ता अक्सर इंसान को ऐसी जगह ले जाता है जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। सच्चाई इंसान के किरदार को बुलंद करती है, यह हमें दूसरों की नज़रिया में मोतबर बनाती है, और ख़ुद हमारी नज़र में भी हमें सुरखरू रखती है। ये एक ऐसी रोशनी है जो न सिर्फ हमारे रास्ते को रोशन करती है, बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बन जाती है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को भी सच्चाई की अहमियत सिखाएं, उन्हें ये बताएं कि सच बोलना कमज़ोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी बहादुरी है, क्योंकि सच्चाई सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक ऐसी कदर है जो पूरी ज़िंदगी को सवार देती है। सामीन, याद रखें, सच्चाई एक चराग की तरह जो अंधेरों में भी रोशनी देता है। अगर हम इस चराग को अपने दिल में रोशन रखें तो ज़िंदगी के रास्ते कभी मुकम्मल तारीख नहीं होंगे। सच कह दो तो रास्ते खुद बन जाते हैं, सच कह दो तो रास्ते खुद बन जाते हैं, झूठ के सहारे कदम लड़खड़ा जाते हैं। तो आइए आज से हम ये अहद करें कि हम सच्चाई को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, हर हाल में सच का साथ देंगे, चाहे हालात जैसे भी हों, क्योंकि सच्चाई की ताकत वो ताकत है जो इंसान को अंदर से मजबूत और बाहर से बावकार बना देती है।
1: मशकूर अहमद से हरफे ताबंदा आप समाप्त कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, किसी इंसान के किरदार की सबसे बड़ी दलील उसका सच बोलना है, क्योंकि झूठ इंसान की शख्सियत को खोखला कर देता है। सच्चाई का रास्ता कठिन और मुश्किल महसूस होता है, मगर उसकी मंजिल हमेशा पुरसकून और महफूज होती है। सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंसान को ये याद नहीं रखना पड़ता कि उसने पहले क्या बोला था।

0: अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा। हैदराबाद तो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगा बन रही, कंपनियाँ खुल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोडा, फ्लाईओवरा और ब्रिजा बनाते जा रहे। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियाँ हैं कि सुन रहे नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियाँ नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियाँ चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते। बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियाँ चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया नहीं तो गांधी को पहुँच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत ज़रूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुँचो। एक सौ एक अशारिया नौ मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग अपनी रेडियो दोस्त आयशा बतुल्लफ़्शां के संग। सामईन पेश खिदमत है बिसात गज़ल। आज बिसात गज़ल सिलसिले के तहत लीजिए समात कीजिएगा मोहम्मद महमूद अली जावेद का कलाम।
1: एक गज़ल पेश कर रहा हूं, मतलब अर्ज किया है, बहुत संगीन अब हालात होते जा रहे हैं, बहुत संगीन अब हालात होते जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से हम अपनी शनाख्त खोते जा रहे हैं, बहुत संगीन अब हालात होते जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से हम अपनी शनाख्त खोते जा रहे हैं, रिवाजों में घिरे हैं असलाफ को हम भूल गए हैं, रिवाजों में घिरे हैं असलाफ को हम भूल गए हैं, जलील व ख़्वार हो रहे हैं औकात खोते जा रहे हैं, जलील व ख़्वार हो रहे हैं औकात खोते जा रहे हैं, तवज्जो चाहूँगा, इखलास खो गया है नीयत हमारी मशकूक है, इखलास खो गया है नीयत हमारी मशकूक है, मोहब्बत का फुगदान है नफ़रत को बोते जा रहे हैं, मोहब्बत का फुगदान है नफ़रत को बोते जा रहे हैं, यूं ही गर चलता रहा तो मिट जाएगा नामो निशां, यूं ही गर चलता रहा तो मिट जाएगा नामो निशां, दौलत का खुमार है हम गफलत में सोते जा रहे हैं, दौलत का खुमार है हम गफलत में सोते जा रहे हैं। मख्ता अर्ज किया है, जावेद जहन व दिल पर अब पाबंदियां लग रही हैं, जावेद जहन व दिल पर अब पाबंदियां लग रही हैं, खिरदमंद भी फी जमाना अपनी हवास खोते जा रहे हैं, खिरदमंद भी फी जमाना अपनी हवास खोते जा रहे हैं, रिवाजों में घिरे हैं असलाफ को हम भूल गए हैं, जलील व ख़्वार हो रहे हैं औकात खोते जा रहे हैं, बहुत संगीन अब हालात होते जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से हम अपनी शनाख्त खोते जा रहे हैं। एक और गज़ल से चंद शेर पेश कर रहा हूँ, मतलाज क्या है, इस शहर में तूफ़ान बहुत आते हैं, इस शहर में तूफ़ान बहुत आते हैं, शनासा बन के अनजान बहुत आते हैं, इस शहर में तूफ़ान बहुत आते हैं, शनासा बन के अनजान बहुत आते हैं। अस क्या है, बाजार में खुली ये दुकान अजब है, बाजार में खुली ये दुकान अजब है, बिकने को यहाँ पर ईमान बहुत आते हैं, बिकने को यहाँ पर ईमान बहुत आते हैं। तवज्जो तलब है, अमीरों की महफिल में यूं ही होता है, अमीरों की महफिल में यूं ही होता है, दिखाने दुनिया को मेहमान बहुत आते हैं, दिखाने दुनिया को मेहमान बहुत आते हैं, जब भी मरता है दुनिया में बड़ा शख्स कोई, जब भी मरता है दुनिया में बड़ा शख्स कोई।

कांधा उसे इंसान बहुत आते हैं, देने कांधा उसे इंसान बहुत आते हैं। मख्तार्ज किया है, मसाइब ही जिंदगी में अक्सर जावेद, मसाइब ही जिंदगी में अक्सर जावेद, लेके कामयाब इम्कान बहुत आते हैं, लेके कामयाब इम्कान बहुत आते हैं। बाजार में खुली ये दुकान अजब है, बिकने को यहाँ पर ईमान बहुत आते हैं। इस शहर में तूफान बहुत आते हैं, शनासा बन के अनजान बहुत आते हैं। एक और गज़ल से चंद अशआर समाअत फरमाएं। मतला अर्ज़ किया है, मुझको मिली हयात नई कश्मकश के साथ, मुझको मिली हयात नई कश्मकश के साथ, ये भी सितम हुआ है मेरी जिंदगी के साथ। मुझको मिली हयात नई कश्मकश के साथ, ये भी सितम हुआ है मेरी जिंदगी के साथ। अर्ज किया है, हर मोड़ पर हयात की महसूस यूं हुआ है, हर मोड़ पर हयात की महसूस यूं हुआ है, एक सानिहा हुआ है मेरी जिंदगी के साथ, एक सानिहा हुआ है मेरी जिंदगी के साथ। आज़ाद हम कभी थे गिरफ्तार गम न थे, आज़ाद हम कभी थे गिरफ्तार गम न थे, मंजिल मिली है हमको किस तीरगी के साथ, मंजिल मिली है हमको किस तीरगी के साथ। इस तरह तन्हा गुजारी है जिंदगी मैंने, इस तरह तन्हा गुजारी है जिंदगी मैंने, जैसे अजनबी हो कोई जिंदगी के साथ, जैसे अजनबी हो कोई जिंदगी के साथ। मख्तार्ज किया है, हंसती है दुनिया जब भी कोई गम उठाता हूँ, हंसती है दुनिया जब भी कोई गम उठाता हूँ, जावेद और भी गम है तेरी जिंदगी के साथ, जावेद और भी गम है तेरी जिंदगी के साथ। हर मोड़ पे हयात की महसूस यूं हुआ है, एक सानिहा हुआ है मेरी जिंदगी के साथ। मुझको मिली हयात नई कश्मकश के साथ, ये भी सितम हुआ है मेरी जिंदगी के साथ। और गजल अर्ज किया है, तुझसे नजरें मिलाना चाहता हूँ, तुझसे नजरें मिलाना चाहता हूँ, मैं खुद को आजमाना चाहता हूँ, तुझसे नजरें मिलाना चाहता हूँ, मैं खुद को आजमाना चाहता हूँ। तेरी आंखें हैं नशीली जैसे, तेरी आंखें हैं नशीली जैसे, मैं यहाँ घर बनाना चाहता हूँ, मैं यहाँ घर बनाना चाहता हूँ। मैं जा रहा हूँ दूर मंजिल से, मैं जा रहा हूँ दूर मंजिल से, थक के अब सो जाना चाहता हूँ, थक के अब सो जाना चाहता हूँ। अर्ज किया है, मैं असीरे सहरा हूँ बहुत अरसे से, मैं असीरे सहरा हूँ बहुत अरसे से, अब मैं रिहा हो जाना चाहता हूँ, अब मैं रिहा हो जाना चाहता हूँ। मख्तार्ज किया है, खुद फरेबी ने जीने न दिया जावेद, खुद फरेबी ने जीने न दिया जावेद, खुद से सच बोलना चाहता हूँ, खुद से सच बोलना चाहता हूँ। तेरी आंखें हैं नशीली जैसे, मैं यहाँ घर बनाना चाहता हूँ, तुझसे नजरें मिलाना चाहता हूँ, मैं खुद को आजमाना चाहता हूँ। एक नज्म का उन्वान मैंने दिया है हट धर्मी, मुलाजा फरमाए। अर्ज किया है, था भारत किस कदर अच्छा, नजर किसकी लगी इसको, था भारत किस कदर अच्छा, नजर किसकी लगी इसको, नहीं भाती हैं अब बातें जो हैं अच्छी भली इसको, नहीं भाती हैं बातें जो हैं अच्छी भली इसको, बहुत बेचैन है अब हर कोई हसास बाशिंदा, बहुत बेचैन है अब हर कोई हसास बाशिंदा, अभी हालात जो हैं देश के उनसे है शर्मिंदा, अभी हालात जो हैं देश के उनसे है शर्मिंदा। भरी लहजे में कड़वाहट जहाँ शीरनी रहती थी, भरी लहजे में कड़वाहट जहाँ शीरनी रहती थी, जगह नफरत ने ले ली जहाँ उल्फत बरसती थी, जगह नफरत ने ले ली जहाँ उल्फत बरसती थी, दरारें डाल दी नफरत की दिल के आबगीनों में, दरारें डाल दी।

0: नफरत की, दिल के आप गीनों में निकल के आ गए सांप जो थे आस्तीनों में, निकल के आ गए सांप जो थे आस्तीनों में, बड़े ही ढीठ हैं, हर धर्मी हैं, हर सच छपाते हैं, बड़े ही ढीठ हैं, हर धर्मी हैं, हर सच छुपाते हैं, सियाकारी छुपाने झूठ के पर्दे सजाते हैं, उसूलों से परे मनमानी सारे काम करते हैं, उसूलों से परे मनमानी सारे काम करते हैं, जो हक की बात करते हैं उन्हें बदनाम करते हैं, मजालिम ढाते हैं खुद औरों पर इल्जाम धरते हैं, मजालिम ढाते हैं औरों पे, मजालिम ढाते हैं खुद औरों पर इल्जाम धरते हैं, करम सब करके घटिया देश को बदनाम करते हैं, खुली है छूट गुंडों को, दबंगों को, लफंगों को, मगर कानून का पालन जरूरी है शरीफों को, किसे मारें किसे काटें किसे नुकसान पहुंचाएं, यही है मंशा इनका, इनके नाम से ही लोग डर जाएं, कहीं अमनो सुकून खुशहाली हो तो भंग करवाएं, जहां सुख शांति हो इनको आपस में ये लड़वाएं, दवाई है न टीका है न ऑक्सीजन न बिस्तर है, यही अबतर सी हालत हर दवाखाने की अक्सर है, किया क्या हश्र शाहीन बाग का दुनिया ने देखा है, किसानों का भी मुस्तकबिल रईसों को ही सौंपा है, रिझा कर झूठे वादों से भ्रष्ट की बुद्धि लोगों की, बनाई है बड़ी सी फौज सारे अंधभक्तों की, था भारत किस कदर अच्छा नजर किसकी लगी इसको, नहीं भाती हैं अब बातें जो हैं अच्छी भली इसको, बहुत बेचैन है अब हर कोई हसास बाशिंदा, अभी हालात जो हैं देश के उनसे है शर्मिंदा। मुख्तसर बहर में एक गजल है पेश कर रहा हूँ। शेर की आबियारी करो, शेर की आबियारी करो, अपना किरदार मियारी करो, शेर की आबियारी करो, अपना किरदार मियारी करो। अर्ज किया है, दर्द मिलता है मिलेगा उम्र भर, दर्द मिलता है मिलेगा उम्र भर, दर्द सहने की तैयारी करो, दर्द सहने की तैयारी करो, गम की खरीदी करनी है तो चलो, गम की खरीदी करनी है तो चलो, बाजार में कुछ उधारी करो, बाजार में कुछ उधारी करो। तवज्जो चाहूंगा, बात निभ जाएगी इस तरह, बात निभ जाएगी इस तरह, कुछ तुम्हारी करो कुछ हमारी करो, कुछ तुम्हारी करो कुछ हमारी करो, नया फलसफा मोहब्बत का जावेद, नया फलसफा मोहब्बत का जावेद, नई कोई गजल जारी करो, नई कोई गजल जारी करो, दर्द मिलता है मिलेगा उम्र भर, दर्द सहने की तैयारी करो, शेर की आबियारी करो, अपना किरदार मियारी करो। एक गजल के चंद शेर पेश कर रहा हूँ आखिर में। एक दिन मुझको शनासाई मिलेगी, एक दिन मुझको शनासाई मिलेगी, उम्मीद है इस दिल को पजीराई मिलेगी, उम्मीद है इस दिल को पजीराई मिलेगी। अर्ज किया है, हम जिसे ढूंढने निकले थे, हम जिसे ढूंढने निकले थे, यकीन है यहाँ वो हर जाई मिलेगी, यकीन है यहाँ वो हर जाई मिलेगी। अर्ज किया है, मैं तेरा शबी से निकलना चाहता हूँ, मैं तेरा शबी से निकलना चाहता हूँ, और रोशनी मिले मुझको बीनाई मिलेगी, रोशनी मिले मुझको बीनाई मिलेगी, कश्ती मेरी भंवर में फंसी है, कश्ती मेरी भंवर में फंसी है, यारब हौसला दे दानाई मिलेगी, यारब हौसला दे दानाई मिलेगी। मख्तार्स क्या है, उम्र रफ्ता को मैं आवाज़ देता हूँ जावेद, उम्र रफ्ता को मैं आवाज़ देता हूँ जावेद, कभी कोई सूरत मुझको शनासाई मिलेगी, कभी कोई सूरत मुझको शनासाई मिलेगी, हम जिसे ढूंढने निकले थे यकीन है यहाँ वो हर जाई मिलेगी, एक दिन मुझको शनासाई मिलेगी, उम्मीद है इस दिल को पजीराई मिलेगी।
1: समय बिसात-ए-गज़ल।

सिलसिले के तहत मोहम्मद महमूद अली जावेद का कलाम आप सुन रहे थे। पेश है सुरीले गीतों से सजा प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा। सामईन, आज 28 सितंबर है और आज दुनिया भर में रबीस का आलमी दिन और मालूमात तक रसाई का आलमी दिन मनाया गया है। आज के गीत सुरीले गाते जा में हम वर्ल्ड रबीज डे और इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन यानी मालूमात तक रसाई के आलमी दिन के हवाले से बातचीत करेंगे और साथ साथ सुरीले नगमे भी सुनेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रबीज के आलमी दिन के बारे में। सामईन, रबीज एक हमलावर कुत्ते के काटने की बीमारी कहलाती है। ये एक ख़तरनाक वायरस है जो ज़्यादातर आवारा कुत्तों, बिल्लियों या दीगर मुतासरा जानवरों के काटने से इंसानों में मुंतकिल होता है। रबीज का आलमी दिन पहली बार 28 सितंबर 2007 को आलमी इतिहाद बराए रबीज कंट्रोल और सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और आलमी इदारे सेहत के इश्तराक से मनाया गया। आपको बता दें कि रबी से वाबस्ता कई सरकारी इदारे और गैर सरकारी तंजीमों का मकसद है कि साल 2030 तक इस बीमारी का खात्मा किया जाए। सामिन, इस हवाले से हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे और जैसा कि हमने कहा था कि साथ साथ फिल्मी नगमे भी आपको सुनाएंगे, तो लीजिए सुनिएगा एक खूबसूरत सा गीत।

101.9 MHz पर यह आकाशवाणी हैदराबाद है। सामिन नैरंग की बज्म जारी है। स्टूडियोज की घड़ी में 10 बजने ही वाले हैं। कुछ ही देर में आप जापान में खेले जा रहे एशियाई खेलों के 20वें एडिशन की झलकियां सुन सकेंगे, यानी कि डेली हाइलाइट्स कैप्सूल आपको सुनाएंगे, जो कि दिल्ली केंद्र से नशर होंगे।

0: 2026 आईजी नगोया।
1: खेलों में बड़ी चीज है खेल भावना, लेकिन जो चीज खेलों में रोमांच, उत्तेजना, आह्लाद और उत्साह भरती है वो है जीत की ललक। खिलाड़ी मैदान पर जयघोष का सपना लेकर ही उतरता है और जितना बड़ा मंच उतनी बड़ी भूख, लेकिन उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी। एशिया के सबसे बड़े खेल मेले 20वें एशियाई खेलों में भारतीय रणबांकुरों ने क्या क्या किया, हम दिन भर अपनी लाइव अपडेट्स में आपको बताते ही रहे हैं। और अब समय है विस्तृत लेखे जोखे का। आज के इस हाइलाइट्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुपम पाठक। सबसे पहले आज की सुर्खियां। एथलेटिक्स में भाला फेंक में भारत को दोहरे पदक, यशवीर रजत, रोहित यादव कांस्य पदक। गुलवीर और मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीते, पारुल चौधरी और विद्या रामराज को कांस्य। शूटिंग में ईशा सिंह का जलवा, रजत पदक पे निशाना। कुराश में भी पदक, पिंकी बलहारा ने पाया कांस्य पदक। हॉकी में गोलों की बौछार जारी, बांग्लादेश को करारी शिकस्त दी। क्रिकेट में बिना मैदान पर उतरे ही भारत सेमीफाइनल में। और बॉक्सिंग में तीन और पदक मुक्केबाजों ने पक्के किए। एथलेटिक्स में पदकों के हिसाब से दिन बेहद शानदार रहा, 3 रजत और 3 कांस्य पदक, लेकिन स्वर्ण पदक की तलाश आज भी अधूरी रही, खासकर ये देखते हुए कि 2 डिफेंडिंग चैंपियंस और मुरली श्रीशंकर के रूप में एक बहुत मजबूत उम्मीद मैदान पर थी। लेकिन पहले बात करेंगे जेवलिन की। देश के दुलारे नीरज चोपड़ा के नाम वापस लेने के बाद जिसे भी लगा हो कि स्पर्धा का ग्लैमर और स्तर थोड़ा कम हो जाएगा, उसे गलत साबित किया नीरज के ही पद चिन्हों पर चल रही जोड़ी यशवीर सिंह और रोहित यादव ने। पहले चक्र में यशवीर 84.56 मीटर के साथ टॉप पर, दूसरे में भी वहीं पर। तीसरे चक्र में रोहित 84.05 मीटर के साथ पहले स्थान पर आ गए, लेकिन चौथे थ्रो में रुमेश ने हुंकार भरकर जो भाला फेंका तो वो 88.33 मीटर दूर जा गिरा। लास्ट थ्रो 88.56, तो यशवीर ने भी पूरी ताकत भर के अपना कैरियर बेस्ट थ्रो किया 85.72 मीटर और रजत पदक पक्का कर दिया। तो रोहित तीसरे स्थान पर रहे, यानी भारत को दोहरी पदक सफलता। लंबी कूद में मुरली श्रीशंकर दूसरे प्रयास में 8.07 मीटर की दूरी फलांग कर दूसरे स्थान पर आ गए थे। चीन के युहाओ शी 8.17 मीटर के साथ सबसे आगे चल रहे थे। पिछले हंगचाओ खेलों की 5000 मीटर की चैंपियन मेरठ की पारुल चौधरी से एक बार फिर एक सुनहरी दौड़ की उम्मीद थी। उन्होंने दम तो बहुत लगाया, लेकिन 15:14.16 सेकंड के साथ कांस्य पदक तक ही आ सकी। इन खेलों में उनका दूसरा कांस्य पदक। लेकिन जो एथलीट इस साल लगातार उम्मीदों पर खरा उतर रहा है वो है डिस्टेंस रनर गुलवीर सिंह। भारतीय फौज के इस खिलाड़ी ने एक और शानदार दौड़ पूरी की 1500 मीटर में 3:37.92 सेकंड के साथ एक और रजत पदक। यूनुस शाह 9वें स्थान पर रहे। 400 मीटर हर्डल में विद्या रामराज ने 54.75 सेकंड के साथ कांस्य पदक पाया, लेकिन याद इसलिए किया जाएगा कि उन्होंने और अनु राघवन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपना अब तक का बेस्ट समय निकाला। लेकिन दिल तोड़ने वाला प्रदर्शन रहा 3000 मीटर स्टीपल चेज में डिफेंडिंग चैंपियन और गेम्स के रिकॉर्डधारी अविनाश साबले का। 4थे स्थान पर पिछड़ गए, वो भी खासे अंतर से 8:21.67 सेकंड समय लिया। 400

0: मीटर पुरुष बाधा दौड़ में संतोष टी के सातवें स्थान पर रहे तो डिस्कस में सीमा ने पर्सनल बेस्ट निकाला 59.88 मीटर, लेकिन पदक नहीं ले पाई। चौथे स्थान पर रही तो सानिया यादव अंतिम स्थान पर आई। 4x100 महिला रिले में भारती चौकली चौथे स्थान पर रही तो 4x100 मिश्रित रिले में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पुरुषों की 4x400 मीटर में भारतीय टीम दोनों हिट्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकाल कर फाइनल में पहुंच गई, लेकिन 800 मीटर महिला में पूजा ने क्वालिफाई किया पर गौतमी बाहर हार गयी। शूटिंग में पदक तो आए हैं, लेकिन इन खेलों में दूसरे स्वर्ण पदक की तलाश जारी है। विश्व रिकॉर्डधारी ईशा सिंह से आस थी तो मनु भाकर के पास अपनी ख्याति को साबित करने का अंतिम मौका था। 25 मीटर पिस्टल के अलावा ट्रैप स्पर्धा भी थी। ये निशाना साध रहे हैं हमारे साथी शाहिद आजमी।
1: शूटिंग रेंज में भारत ने रोमांच की प्रकाशा तक पहुंचे मुकाबले में रजत पदक अपने नाम कर लिया। जी हां, स्टार शूटर ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। ईशा ने बेहद दबाव भरे फाइनल में गजब का धैर्य दिखाया और एक के बाद एक 5 शूट आउट का सामना करते हुए रजत पदक अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। निर्धारित सीरीज के बाद ईशा और चीन की जियारुक सुआन जियाओ 38-38 के स्कोर पर बराबर पर थी। इसके बाद आया निर्णायक शूट आउट जहां चीन की खिलाड़ी ने 3-2 से बाजी मार ली। गोल्ड का फैसला भले ही आखिरी शूट आउट में हुआ, लेकिन ईशा का प्रदर्शन किसी चैंपियन से कम नहीं रहा। लगातार दबाव के बीच 5 शूट आउट तक मुकाबले में बने रहना और भारत के लिए सिल्वर हासिल करना ईशा की बड़ी उपलब्धि है। ईशा के इस शानदार प्रदर्शन के बीच पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर फाइनल में जगह नहीं बना सकी। मनु 579 के स्कोर के साथ 11वें स्थान पर रही, जबकि अनुभवी राही सरनोबत 30वें स्थान पर रही। टीम इवेंट में ईशा, मनु और राही की तिकड़ी 1727 के कुल स्कोर के साथ 5वें स्थान पर रही। रैपिड सीरीज में राही का एक शॉट मिस होना भारतीय टीम के लिए भारी पड़ा। इस स्पर्धा का गोल्ड चीन ने जीता। हालांकि शूटिंग रेंज में भारत के पदक की उम्मीदें यहीं खत्म नहीं होती। महिला ट्रैप में नीरू ढांडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 राउंड और 100 शॉट के बाद 95 अंकों के साथ क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया। मनीषा कीर 84 अंकों के साथ 21वें और आशिमा अहलावत 84 अंकों के साथ 23वें स्थान पर रही। भारतीय महिला टीम फिलहाल 3रे स्थान पर है। पुरुषों के ट्रैप में भी शपथ भारद्वाज 95 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है और फाइनल की दौड़ में मजबूती से बने हुए हैं। काइनन चेनाई 91 अंकों के साथ 19वें और अहवर 87 अंकों के साथ 32वें स्थान पर हैं। भारतीय पुरुष टीम 5वें स्थान पर है, लेकिन आज शूटिंग की रेंज से सबसे बड़ी कहानी ईशा सिंह का शानदार सिल्वर है। इसके साथ ही भारतीय शूटिंग दल के खाते में अब 1 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत कुल 12 पदक हो चुके हैं।
0: मध्य एशिया में करीब 3,500 साल पहले पनपे कॉम्बैट खेल कुराश में कुछ भारतीय भी माहिर हैं। फिलहाल सबसे आगे रही पिंकी, जिन्होंने आज एशियाई खेलों में अपना अब तक का दूसरा पदक हासिल किया, बता रही हैं विदुषी वत्स।
2: Going to the Kurash arena where Pinky Balhara has secured bronze in the women's under 78 kilogram category. Pinky was in action in the semi-final today against South Korea's Mo Soo-min and the bout ended 5-0 in the favor of the Korean athlete. But this medal was assured earlier today when Pinky defeated South Korea's Lim Garum 3-0 in the quarterfinal, booking her place in the semi-finals and securing the medal for India. This is also a significant moment for Indian Kurash. Pinky's medal is only India's third ever Asian Games medal in the sport. And it is particularly special for Pinky herself. She won silver at 2018 Asian Games, while at the 2022 Games, her campaign ended in the quarterfinals. She has now returned to the Asian Games podium with another medal. It is also important to remember that just yesterday, 4 of our other Indian Kurash athletes saw their campaigns come to an end. So today, Pinky has given the Indian contingent a very important reason to celebrate from the Kurash arena.
0: भारतीय बॉक्सर्स के मुक्कों में दम तो है, बार बार ये बात वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साबित करते ही रहे हैं और यहाँ आईची नगोया में भी कर रहे हैं। कल 3 ने पदक पक्के कर दिए थे तो आज भी 3 मुक्केबाज रिंग में थे पदक पक्का करने के लिए। बॉक्सिंग की बात शाहिद आजमी से।
1: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने आज ऐसा पंच लगाया कि एक ही दिन में 3 मेडल पक्के हो गए। जी हां, बॉक्सिंग रिंग में भारत के लिए एक के बाद एक 3 मुक्केबाजों लवलीना बोरगोहेन, प्रिया और कपिल पोखरिया ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर भारत के लिए पदक पक्के कर दिए। सबसे पहले बात ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन की, जिन्होंने महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में दक्षिण कोरिया की सुआंग सुयान को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। इस जीत के साथ लवलीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और साथ ही अपना अपना पदक भी पक्का कर लिया। इसके बाद महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग में

0: सिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने ताजिकिस्तान की मिस गोना समादोवा को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। प्रिया की इस जीत के साथ भारत का एक और पदक सुनिश्चित हो गया। इसी तरह पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग में कपिल पोखरिया ने कमाल कर दिया। कपिल ने दक्षिण कोरिया के किम गिचाय को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए तीसरा पदक पक्का कर दिया। आपको ये भी बता दें, बीते कल भी 3 मुक्केबाजों पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में अंकुश पंघाल, 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र और महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन ने सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर पदक पक्का किया। यानी एशियन गेम्स के बॉक्सिंग रिंग से 2 दिन में भारत के लिए पदकों की 2 हैट्रिक लगी। अब ये सभी 6 मुक्केबाज अपने अपने सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में कदम रखने की जद्दोजहद करेंगे।
1: तीरंदाजी यानी आर्चरी में आज कंपाउंड के मुकाबले थे। भारतीय आर्चर्स का दुनिया में बड़ा नाम है। आज 4 धनुर्धर लक्ष्य भेदने मैदान में थे। ड्रॉ कुछ ऐसा निकला कि 2 आर्चर 1/8 एलिमिनेशन में ही आमने सामने आ गए। एक को तो हारना ही था। पूरे विवरण के साथ विदुषी वत्स।
2: एक्शन कमिंग इन फ्रॉम आर्चरी टुडे। फर्स्ट फ्रॉम द मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल इवेंट, गणेश मणिरत्नम हैज बुक्ड हिज प्लेस इन द क्वार्टर फाइनल्स, डिफीटिंग फेलो इंडियन आर्चर साहिल जाधव इन अ थ्रिलिंग pre-quarter-final encounter. It was an extremely close contest with Ganesh edging past Sahil 149-148, winning the All Indian battle by just 1 point. Let's now turn our attention to the women's compound individual event. We began with a round of 32 and Jyoti Surekha Venam got her campaign off to a winning start up against an archer from Kazakhstan. Jyoti produced a strong performance to take the match 148-145 and move into the round of 16. But the next challenge was a tough one in the round of 16. Jyoti came up against Korea's Kang Yoon Seo. It was a high scoring contest, but Jyoti was unable to make it through, going down 146-150. That brings her individual campaign to an end here. Now the focus shifts to Chikita Taniparthi. She began her round of 32 match against Bhutan and she came through that contest comfortably, winning 149-140. Then came the round of 16 against Chinese Taipei's Chen, and this was incredibly close. After the regulation arrows, both archers were locked at 148-148. That meant the contest had to be decided by a shoot off. She survived this shoot off and she's through to the quarter finals.
1: क्रिकेट में भारतीय टीम का अफगानिस्तान के साथ मैच वर्षा की भेंट चढ़ गया, लेकिन रैंकिंग में ऊपर होने के नाते भारत को सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया और अब सेमीफाइनल में श्रीलंका और नेपाल के बीच होने वाले मैच के विजेता से उनका मैच होगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रही है। पिछले 4 मैचों में 39 गोल कर चुकी है। पूल ए में बांग्लादेश के विरुद्ध भी हॉकी प्रेमियों को यही उम्मीद थी और टीम ने उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं किया। एकता थामी से सुनिए आज का हाल।
3: हॉकी के मैदान से आज एक खुश करने वाली खबर आई है। भारत ने बांग्लादेश की टीम को 10-0 से हराकर जीत दर्ज की। बारिश के कारण देर से शुरू हुए मैच में भारतीय खिलाड़ी शुरू से ही टूट पड़े। कप्तान हरमनप्रीत सिंह की सेना ने बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच के पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। पिछले मैच में भारत ने मेजबान जापान को 2-0 से मात दी थी। भारत की तरफ से शुरुआती गोल 3rd मिनट में हुआ और उसके बाद नियमित अंतराल पर गोल होते चले गए। कप्तान मनप्रीत सिंह ने 3 गोल किए और शिलानंद लाकरा ने एक के बाद एक 2 गोल दागकर भारतीय हॉकी के पुराने दिनों की याद ताजा कर दी। बांग्लादेश की टीम ने जमकर संघर्ष किया, लेकिन गेंद को लंबे समय तक अपने कब्जे में रखने के बावजूद वह गोल करने में सफल नहीं हो सके। भारत को 6 पेनल्टी कॉर्नर मिले और उनमें से 4 को गोल में बदला गया।
1: टेनिस में भारत हेडलाइंस बनाया करता था और उसी दौर की पुनर्वापसी में लगी है हालिया पौध। टेनिस में आज की रिपोर्ट एकता थामी से।
3: महिलाओं की युगल स्पर्धा में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। अंकिता रैना और ऋतुजा की जोड़ी को कजाकिस्तान की यूलिया पुतिनसेवा और अन्ना डानिलिया ने पहले राउंड के मुकाबले में 7-5, 3-6 और 5-10 से हरा दिया। भारत की लड़कियों ने विरोधी टीम को कड़ी टक्कर दी और तीसरा सेट टाई ब्रेकर तक पहुंचा दिया, लेकिन कजाकिस्तान की महिलाओं ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में जगह बनाई। पुरुषों के एकल मुकाबले में भारत के सुमित नागल का मुकाबला दक्षिण कोरिया के होंग सियोंग चान से हो रहा था। पहले सेट में सुमित नागल 3-2 से बढ़त बनाए हुए थे, जब वर्षा के कारण मैच रोक देना पड़ा। अब यह मैच कल खेला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में डेविस कप मुकाबलों में नागल अपने दोनों एकल मैच कोरियाई खिलाड़ियों के हाथों हारे थे। उम्मीद करनी चाहिए कि एशियाई खेलों में वह हार का यह सिलसिला तोड़ने में कामयाब होंगे।
1: स्क्वाश में

0: ये पोडियम फिनिश भारतीय खिलाड़ियों के लिए स्वाभाविक सी बात है। इन्हीं खेलों में तीन बार हम देख चुके हैं। आज के अभियान का आकलन एक बार फिर एकता धामी से।
1: सूरज कुमार चांद ने चीन के दू शाओकेन को 11-4, 11-2 और 12-10 से हराया, जबकि वीर चौटरानी ने ली हेईझेन को 11-5, 11-5 और 11-3 के एक तरफा मुकाबले में हराकर भारत की स्थिति मजबूत की। तीसरे मैच में वेलावन सेंती कुमार ने पेंगलिन झों को 11-3, 11-2 और 11-4 से धो डाला और इस तरह तीनों मैच में भारत एक भी सेट नहीं हारा और पूल ए से अगले दौर में पहुंचा। महिलाओं की टीम स्पर्धा में भारत ने ग्रुप सी में चीन के खिलाफ 2-1 से विजय दर्ज करके अच्छी शुरुआत की। तन्वी खन्ना और जोशना चिनप्पा ने जीत दर्ज की, जबकि शमीमा को हार का मुंह देखना पड़ा। जापान के खिलाफ अपने अगले मैच में भी भारत की लड़कियों ने टीम स्पर्धा में कमाल

0: के खिलाफ अपने अगले मैच में भी भारत की लड़कियों ने टीम स्पर्धा में कमाल का खेल दिखाया और मेजबान जापान को 2-1 से मात देने में कामयाब रही। जोशना चिनप्पा ने शुरुआती मुकाबले में जापान की एरिसा सानो को हराकर शुरुआती बढ़त दिलाई, लेकिन उसके बाद अनाहत सिंह की हार ने भारत की मुश्किलें कुछ बढ़ा दी। तीसरे और अंतिम मुकाबले में तन्वी खन्ना ने आकारी मिदोरिकावा को 12-10, 11-9, 4-11, 12-10 से हराकर मैच भारत की झोली में डाल दिया। पूल ए के मुकाबले में भारत ने कोरिया को 3-0 से हराकर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली।
1: सिपक टाकरा में महिला युगल टीम एरिना में क्या कर पाई, जानते हैं विदुषी वत्स से।
2: फ्रॉम वुमेन्स सेपक टाकरा, इंडिया हैज गॉन डाउन टू जापान इन देयर लेटेस्ट ग्रुप बी एनकाउंटर। इंडिया फॉट हार्ड इन अ क्लोजली कंटेस्टेड मैच बट जापान केम थ्रू टू 1। जापान टुक द ओपनिंग सेट 15-11 बट इंडिया रिस्पॉन्डेड स्ट्रॉन्गली इन द सेकेंड, विनिंग इट 15-9 टू लेवल द मैच। द डिसाइडिंग थर्ड सेट वेंट राइट डाउन टू द वायर बट जापान एज्ड इट 15-13 टू सील द विक्ट्री। So India finishes this Group B match with a 1-2 defeat against Japan.
1: और अब चलते हैं समंदर की लहरों से अटखेलियां करने। सर्फिंग में किशोर कुमार एकला चलो रे की तर्ज पर समंदर के सीने पर डटे हुए हैं, तो सेलिंग में आज स्किफ और डिंगी 470 क्लास के मुकाबले थे। 8 सेलर्स नौका लेकर उतरे, कितने पार लगे, दोनों खेलों का विवरण एकता धामी से।
0: पुरुषों की सर्फिंग स्पर्धा में भारत के किशोर कुमार अनबरासु ने पुरुषों के शॉर्टबोर्ड राउंड 3 मुकाबले में चीन के तगड़े खिलाड़ी मा वेन सांग को कड़े मुकाबले में मात देकर भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा है। किशोर कुमार ने चीन के खिलाड़ी के 8.80 के स्कोर के मुकाबले 9.86 अंक अर्जित करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। राउंड 3 के दूसरे मुकाबले का नतीजा भारत के हक में नहीं रहा। शिवराज बाबू को फिलीपींस के खिलाड़ी अलसियो जेव आर ने 7.83 के मुकाबले 11.50 से मात दी। पानी के एक अन्य खेल सेलिंग में भी आज का दिन व्यस्तता से भरा रहा। पुरुषों की स्किफ में भारत के प्रिंस खुर्शीद नोबल और मनु फ्रांसिस ने अच्छी शुरुआत की और ओमान के बाद दूसरे स्थान पर रहे। पुरुष डिंगी में विष्णु सर्वनन ने निराश किया, वह क्वालिफिकेशन की पहली और दूसरी रेस में 9वें स्थान पर रहे। महिला वर्ग में हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा महिला स्किफ की पहली रेस में 4थे स्थान पर रही। महिला डिंगी में नेत्र नुमानन पहली क्वालिफिकेशन रेस में 6ठे स्थान पर रही। मिश्रित डिंगी में श्रद्धा वर्मा और रविन्द्र शर्मा शुरुआती श्रृंखला की तीसरी रेस में 8वें स्थान पर रहे। वर्षा के कारण कल और आज बहुत सी रेस समय पर पूरी नहीं हो सकी।
1: आज की स्पर्धाओं का अंत अच्छी खबर के साथ। वॉलीबॉल के कोर्ट में भारत की एक और धमाकेदार जीत, एकता थामी।
0: वॉलीबॉल में आज का दिन भारत के लिए अच्छा रहा। भारत ने पूल सी के दूसरे मैच में हांगकांग चाइना को 3-0 से हराकर देश के खेल प्रेमियों को मुस्कुराने की एक वजह दे दी। इस मैच में जीत के साथ ही भारत ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारतीय टीम ने दोनों मैचों में 3-0 से जीत दर्ज करके उम्मीदें बढ़ा दी हैं। हालांकि हांगकांग चाइना के खिलाफ मैच के तीसरे सेट में बेहतर तालमेल का प्रदर्शन करके मैच अपने नाम कर लिया।
1: और अब पदक तालिका पर एक निगाह।
2: At this stage of the Asian Games, China continues to lead the standings with 230 medals, including 132 gold, 53 silver and 45 bronze. Japan is in second with 172 medals, while the Republic of Korea is third with 90 medals, and India is currently in 12th position with a total of 45 medals, 4 gold, 20 silver and 21 bronze.
1: कल शूटिंग में ट्रैप स्पर्धा का अंतिम दिन है। महिला और पुरुष दोनों में 3-3 भारतीय शूटर्स हैं। कल से साइकिलिंग की स्प्रिंट स्पर्धाएं शुरू हो जाएंगी, जिसमें कई भारतीय दिखेंगे। स्क्वाश में महिला टीम अपना विजय अभियान आगे ले जाने का प्रयास करेगी। टेनिस में पुरुष एकल युगल और मिश्रित युगल के मुकाबले होंगे। सेलिंग में कई भारतीय हैं स्किफ और डिंगी स्पर्धा में, तो सर्फिंग में अकेले किशोर कुमार होंगे। आर्चरी में रिकर्व में धीरज बोमदेवरा, नीरज चौहान, कुमकुम और कीर्ति शर्मा रहेंगी। कुराश में विपिन कुमार होंगे। एथलेटिक्स में 19 पदक आ चुके हैं और ज्यादा की उम्मीद होगी कल। पोल वॉल्ट महिला ऊंची कूद, हैमर थ्रो महिला और पुरुष 800 मीटर, 5000 मीटर में गुलबीर सिंह एक बार फिर मैदान पर होंगे, और साथ में होगी मिक्स 4x100 मीटर और पुरुषों की 4x400 मीटर रिले। तो आज बस यहीं तक। एडिटर विशाल, कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, और अब मुझे अनुपम पाठक को दे आज्ञा, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है। डेली हाइलाइट्स कैप्सूल के बाद बज़्मे नरम में आपका दोबारा खैर मकदम है। सामईन, हम गीत सुरीले गाते जा सिलसिले के तहत रबीज़ के आलमी दिन पर बात कर रहे थे और हमने आपको बताया था कि किस तरह से कुत्तों या फिर किसी दीगर जानवरों के काटने से ये बीमारी फैलती है। और अगर आप अभी अभी हमसे जुड़े हैं तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि रबीज़ का आलमी दिन पहली बार 28 सितंबर 2007 को आलमी इतिहाद बराए रबीज़ कंट्रोल और सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और आलमी इदारे सेहत के इश्तराक से मनाया गया। और रबी से वाबस्ता कई सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों का मकसद है कि साल 2030 तक इस बीमारी का खात्मा किया जाए। अगर किसी शख्स को किसी पागल जानवर ने काटा है तो फिर उसे बुखार का एहसास हो सकता है, वो खुद को थका हुआ या कमज़ोर महसूस करता है। सामईन, रबीज़ के आलमी दिन के मौके पर हम आपको बताएंगे कि इसका इलाज और बचाव किस तरह से मुमकिन है और किसी भी पागल जानवर, खासतौर पर कुत्ते के काटने के बाद हमें क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होंगी। आपके साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन चूंकि हम सुरीले गीतों के सफर पर निकले हैं तो साथ साथ सुरीले नगमे भी आपको सुनाते रहेंगे। लीजिए सुनिए एक प्यारा सा गीत।

101.9 MHz पर यह आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। गीत सुनाने से पहले हमने बात की थी रबीस के बारे में। सामईन, रबीस की अलामतों में घबराहट, पानी पीने में दुश्वारी, पानी का खौफ, बुखार, फिक्रमंद होना, उलझन महसूस करना, खै और मतली, सरदर्द, डरावने ख्वाब, नींद ना आना और जुज़वी फॉलेज वगैरह शामिल हैं। आपको ये भी बता दें कि रबीस के 1 से 3 माह तक इंसानी जिस्म में गैर फाल नज़र आता है, यानी कि कोई भी अलामत ज़ाहिर नहीं होती और ये धीरे धीरे आसाबी निज़ाम में फैलना शुरू होता है और इसके बाद जिस्म में संगीन अलामत ज़ाहिर होने लगती हैं। रबीस की अलामत में फ्लो भी शामिल है और ये अलामत कई दिनों तक नज़र आती है। सामईन, अच्छी खबर यह है कि रबीस 100% काबिल इलाज और काबिल बचाव है, यानी प्रिवेंटेबल है, बशर्ते कि बर वक्त एहतियात बरती जाए। हर साल रबीस का आलमी दिन एक ख़ास मौजू यानी थीम के साथ मनाया जाता है और साल 2026 का थीम है स्ट्रॉन्गर टुगेदर। सामईन, हम रबीस के आलमी दिन के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा नगमा।

101.9 MHz पर आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। सामईन, हमने आपको बताया था कि इस साल का थीम स्ट्रॉन्गर टुगेदर रखा गया है, यानी हम सब एक साथ हैं। और इसका मतलब यही है कि तन्हा इंसान या कोई अकेला महकुमा इस बीमारी का यानी रबीस का खात्मा नहीं कर सकता। इसके लिए डॉक्टर्स, वेटरनरी डॉक्टर्स, हुकूमतें और अवाम को एकजुट होकर काम करना होगा। अगर किसी को कुत्ता या कोई भी पालतू जानवर काट ले तो घबराने के बजाय फौरी तौर पर ज़रूरी इकदाम करने की ज़रूरत है, जैसे कि ज़ख्म को फ़ौरन साबुन और बहते हुए पानी से कम 15 मिनट तक अच्छी तरह से धोया जाए ताकि वायरस का असर कम हो सके। ज़ख्म पर कोई जरासीम कुश दवा छिड़की जाए और वक्त ज़ाया किए बगैर करीबी अस्पताल या फिर हेल्थ केयर सेंटर से रुजू करते हुए डॉक्टर के मशवरे से रबीस की वैक्सीन लगवाई जाए। सामिन, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अक्सर ऐसे वक्त में यानी कुत्ते या किसी पालतू जानवर के काट लेने पर घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल किया जाता है। टोटके या मिर्च मसाले भी लगाए जाते हैं, लेकिन ऐसा हर किस नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ अपने घर के पालतू जानवरों को भी रबीज़ की वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्गर टुगेदर का मतलब यही है कि जब हम अपने जानवरों का ख्याल रखेंगे तो खुद भी महफूज रहेंगे और जानवर भी महफूज रह सकेंगे।

है। ये दिन उस बुनियादी हक की अहमियत को उजागर करता है जिसके तहत हर शहरी को सरकारी और अवामी इदारों से मुतालिक मोतबर और बरवक्त मालूमात हासिल करने का कानूनी और आइनी हक हासिल होता है। मालूमात तक रसाई को किसी भी बाखबर जमहूरियत, शफाफ मुआशरे और मजबूत हुक्मरानी के लिए एक इंतहाई ज़रूरी सुतून तस्लीम किया जाता है। मालूमात तक रसाई का आलमी दिन मनाने की शुरुआत कब से हुई और इसकी क्या मकासद है, इस बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन साथ साथ फिल्मी नगमे भी सुनाएंगे। लीजिए, सुनिएगा एक और खूबसूरत सा गाना, आवाज़ है श्रिया घोषाल की।

101.9 MHz पर आप सुन रहे हैं और द प्रोग्राम नैरंग बज्म सजी है गीत सुरीले गाते जा से। और गीत सुरीले गाते जा सिलसिले के तहत आज हम बात कर रहे हैं मालूमात तक रसाई के आलमी दिन के बारे में। सामईन, आपको बता दें कि बैन अलाक़वामी तहरीक का आगाज़ सन 2002 में बुल्गारिया से हुआ, जहां दुनिया भर से आज़ादी इजहार राय के आलमबरदारों ने 28 सितंबर को जानने के हक का दिन करार दिया। उस तहरीक की आलमी अहमियत को इस अक़वामी मुत्तहिदा के तालीमी साइंसी व सकाफती इदारे ने नवंबर 2015 में एक करारदाद के जरिए मंजूर किया, और हर साल 28 सितंबर को आज ही के दिन मालूमात तक रसाई का आलमी दिन मनाने का ऐलान किया। बाद साल 2019 में अक्टूबर में अक़वामे मुत्तहिदा की 74वीं जनरल असम्बली ने इसे आलमी सतह पर मनाने की हतमी मंजूरी दे दी। समयन, मालूमात को ताकत कहा जाता है। जब शहरियों को हुकूमती फैसलों, पॉलिसियों, बजट और अवामी अहमियत के दिगर मालूमात तक आसान रसाई मिलती है तो उससे कई फवायद हासिल होते हैं, जिनमें शफाफियत और एहतसाब, अवामी शमूलियत और बाख्तियार मुआशरा, एतमाद की बहाली वगैरह शामिल है। इस हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। लीजिए सुनिएगा एक और गीत।

समीन गीत सुरीले गाते जा, आप सुन रहे हैं मालूमात तक, रसाई के आलमी दिन पर बातचीत हो रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और मसनवी जहानत यानी AI ने जहां मालूमात तक रसाई को इंतहाई आसान और तेज़ रफ्तार बना दिया है, वहीं इस दौर ने नए चैलेंजेस भी पैदा कर दिए हैं। आज का बड़ा चैलेंज सिर्फ मालूमात हासिल करना नहीं बल्कि मालूमात की सच्चाई और सालमियत को बरकरार रखना भी है। इंटरनेट पर गलत मालूमात, मनगढ़ंत खबरें और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे की भरमार ने एक मालूमाती इंतशार पैदा कर रखा है। इसी तनाजुर में अक़वामे मुत्तहिदा और यूनेस्को की जानिब से इस साल मालूमात तक रसाई के आलमी दिन का मौजू डिजिटल दौर में मालूमात की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़, मालूमाती इंतशार से निमटने में मालूमात तक रसाई का किरदार मुंतखब किया गया। इस मौजू का मकसद इस बात पर जोर देना है कि अफवाहों और झूठी खबरों का मुकाबला सिर्फ मुस्तनद, काबिल एतमाद और मुसद्दिका सरकारी मालूमात की बरवक्त फराहमी से ही मुमकिन है।

सामिन गीत सुरीले गाते जा आप समाप्त कर रहे थे, और आज की सुरीले गाते जा में हमने दो मौजूदात पर बात की, जिनमें से एक था रबीस का आलमी दिन और दूसरा मालूमात तक रसाई का आलमी दिन। और गीत सुरीले गाते जा के बाद वक्त हो चुका है बज़्म नैरंग की आखिरी पेशकश प्याम शब का। लीजिए समाप्त फरमाइएगा जनाब नदीम अख्तर जैदी से प्याम शब।

लगा रहा हूं मजामिन नौ के अनबार, कब्र करो मेरे किरमन के कोश चीनों को। इल्म और तजुर्बा ऊपर वाले की बहुत बड़ी नेमत है और इनका बेहतरीन मसरफ यह है कि इन्हें दूसरों तक पहुंचाया जाए, लेकिन अपनी इल्मी काविश पर फख्र करने के बजाय इनके सारी इखलास और खिदमत कल्ब को मुकद्दम रखना चाहिए। जो शख्स इल्म बांटता है उसका इल्म दूसरों के लिए रोशनी बन जाता है। इल्म की असल कदर इसे जमा करने में नहीं बल्कि दूसरों तक पहुंचाने में है, मगर इल्म बांटते वक्त नाम व नमूद नहीं इखलास और फायदा आम को मकसद बनाना चाहिए।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है। स्टूडियोज की घड़ी में 11 बजने ही वाले हैं। चंद ही लम्हों में आप सुन सकेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार जो कि दिल्ली से नशर किए जाएंगे।

0: प्रस्तुत है अब तक एफएम मिलेनियम में मुख्य समाचार।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानव अधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वेलिंग आयोग की 17वीं बैठक में वेल और अन्य समुद्री स्तनधारी जीवों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के हुबार्ट में आज से शुरू हुई 5 दिवसीय बैठक में भारत ने कहा कि समुद्री स्तनधारी जीवों के प्रभावी संरक्षण के लिए संबंधित देशों, वैज्ञानिक संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच लगातार सहयोग जरूरी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलानबटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल मिलाकर 45 पदक जीत चुका है। इनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर यशवीर सिंह और कांस्य पदक जीतने वाले रोहित यादव को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we will also take calls from you, our listeners, on market-related queries. But do remember, listeners, that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on 2331 0481 and 2371 7106, and of course do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatki with my co-anchor Manoj Pathak.
1: Namaskar, Market Mantra ki tazank mein aapka swagat hai. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज सोमवार है और आज के दिन आप हमारे साथ बातचीत करते हैं। आज भी हमसे आप पूछ सकते हैं कारोबार, अर्थव्यवस्था या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल। बस ये ध्यान रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं। हमसे सवाल पूछने के लिए डायल कीजिए 2331-4444 2331-0481 या फिर 2371-7106। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: जी नमस्कार, धन्यवाद।
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अनुभा रोहतगी।
0: थैंक यू मनोज। Benchmark domestic indices declined sharply. Sensex tanks over 1100 points. Nifty settles below 22,800. India's industrial output grows by 8% in August this year. And global crude oil prices surge around 3.5%.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज हुई भारी गिरावट। सेंसेक्स 1100 अंक से अधिक लुढ़का, निफ्टी 22,800 के नीचे बंद हुआ। देश का औद्योगिक उत्पादन इस वर्ष अगस्त में 8% बढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम लगभग 3.5% उछले।

0: फायदा होता है, क्योंकि कम एनर्जी पे आपको ज्यादा यूनिट मिलती है, तो जब मार्केट उठेगी तो हो जाएगा। लेकिन सर ये काफी टाइम हो गया है, और अब आपको क्या लगता है कि क्या मुझे अपनी SIP रोक कर उसको FD की तरफ या डेट फंड की तरफ किस तरफ मुझको डाइवर्ट करना चाहिए सर? थैंक यू।
1: मनीष जी देखिए, आपका ये बहुत अच्छा फैसला है कि आपने डाइवर्सिफाई कर रखा है, लार्ज में भी है, स्मॉल में भी है, मिड में भी है, फ्लेक्सी में भी है, और आपका डेट फंड में भी है। तो ये बहुत अच्छा आपका फैसला है, और ये भी जो आपकी सोच है कि जब बाजार गिरता है तो उससे हमें फायदा ही होगा। यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कि थोड़ा सा आप एक्सपोजर जो है वो इक्विटी से कम करके आप डेट फंड में जा सकते हैं। और आपने खुद ही कहा कि फिक्स डिपॉजिट या डेट फंड, तो मुझे लगता है कि डेट फंड का विकल्प आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि वहां पर एक निश्चित दौर पे जो है वो आपको ब्याज मिलनी है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वहां

0: भी हैं, फ्लेक्सी में भी हैं, और आपका डेट फंड में भी है। तो ये बहुत अच्छा आपका फैसला है। और ये भी जो आपकी सोच है कि जब बाजार गिरता है तो उससे हमें फायदा ही होगा, यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कि थोड़ा सा आप एक्सपोजर जो है वो इक्विटी से कम करके आप डेट फंड में जा सकते हैं। और आपने खुद ही कहा कि फिक्स डिपॉजिट या डेट फंड, तो मुझे लगता है कि डेट फंड का विकल्प आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि वहां पर एक निश्चित दौर पे जो है वो आपको ब्याज मिलनी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वहां जाएं आप, जो आपका मान लीजिए कि 100 रुपये में, अगर मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर 70 रुपये आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा रखा है, इन चारों को मिला दे अगर, फ्लेक्सी, स्मॉल, मिड कैप और लार्ज कैप में, और 30% अगर आपने डेट में लगा रखा है, तो उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, यानी कि 40 कर दीजिए या 45 कर दीजिए। ये आपके लिए एक लंबे समय का बेहतर विकल्प होगा। SIP बंद मत करिए, ये जो है वो चल रहा है, चलने दीजिए। हो सकता है, कहते हैं कि गिरावट आती है, बिल्कुल गिरावट आई है, बहुत, जिसे कहा जाए कि हर दिन निफ्टी और सेंसेक्स जो है वो गिरावट का एक रिकॉर्ड ही बना रहे हैं। पहले हमने तेजी की बात करी थी कुछ समय पहले, अब हम लोग गिरावट की बात कर रहे हैं। तो जैसे शेयर बाजार की भाषा में कहते हैं कि एक आपका एक रेसिस्टेंस लेवल और होता है, और एक सपोर्ट लेवल जो होता है। अब यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल है वो काफी हद तक टूटता हुआ नजर आ रहा है, और वो कहाँ तक जाएगा ईमानदारी से बताएं तो आज के दिन में कहना बहुत मुश्किल है। बाजार में एक और गिरावट की आशंका जो है वो इनकार नहीं किया जा सकता है। तो मेरी राय यह है कि आप बने रहें।
1: जी, एंड लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल। सुदीप्ता इज ऑनलाइन विद अस फ्रॉम कोलकाता। सुदीप्ता, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
2: हेलो, नमस्ते जी। मेरा क्वेश्चन कि जो ऐप अंदर शुरू क्या करें, तो किस चीज में?
1: सुदीप, तो आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आप दोबारा अपना सवाल प्लीज रिपीट करें।
2: अगर कोई नया शुरू करना चाहता तो उसको
3: सुदीप, तो हमें लगता है आपकी फोन लाइन में और हमारी फोन लाइन में सीधा संवाद संपर्क नहीं हो पा रहा है, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आप एक बार दोबारा फिर से प्रयास करें। आइए, बात चल रही है गिरावट की। वाकई शेयर बाजार गिरावट के दौर से गुजर रहा है, और आज भी अच्छी खासी गिरावट हुई है। बंदड़िए बाजार पर हावी नजर आ रहे हैं। आज के कारोबार में प्रमुख सूचकांक 1.5% से अधिक घाटे के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1124 अंक घटकर 72772 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 360 अंक गिरकर 22780 दर्ज हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तारित बाजार पर ध्यान दें तो मिड कैप 100 इंडेक्स 1.6% और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.8% नुकसान के साथ बंद हुआ। यानी कुल मिलाकर लगभग इस वर्ष अप्रैल के स्तर पर हम फिर से लौट आए हैं। बाजार में आज शुरुआत से ही कमजोरी बनी रही और लगातार पूरे सत्र में बिकवाल हावी रहे। दरअसल पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने का असर, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम ऊपर जाने, बॉन्ड यील्ड में तेजी आने और विदेशी फंड द्वारा पूंजी निकालने का क्रम जारी रहा, जिससे सभी निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई।
1: Benchmark domestic equity indices declined sharply by over 1.5% today. The Sensex plunged 1,124 points to close at 72,772. The Nifty shed 360 points to settle at 22,780. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index tumbled 1.6%, while the Small-Cap 100 Index tanked 1.8%. Markets opened with gap down this morning and continued their downward trajectory throughout the session as rising crude oil prices, escalating tensions in West Asia, surging global bond yields and persistent foreign fund outflows weighed heavily on investor sentiment.
3: सेंसेक्स पैक पर आज ध्यान दें तो इकलौती एक ही कंपनी मुनाफा कमाने में सफल हुई, बाकी सभी 30 में से 29 कंपनियों के शेयर घाटे में रहे। लाभ हुआ सिर्फ इंफोसिस को, जिसके शेयर 0.2% ऊपर उठकर बंद हुए। घाटा उठाने वालों में प्रमुख कंपनियां रही लार्सन और टुब्रो, जिसके शेयर 2.8%, पावर ग्रिड 2.6% और अडानी पोर्ट्स के शेयरों में 2.4% का नुकसान हमने देखा।
1: इन द सेक्टरल इंडिसेस ऑन द BSE, ऑल 28 सेक्टर्स एज्ड लोअर। अमंग द टॉप लैगर्ड्स, PSU बैंक्स स्किडेड 3.2%, पावर, टेलीकम्युनिकेशन, यूटिलिटीज लॉस्ट 2.3% ईच and mid-small private banks dropped 2%.

0: 0.2%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 3,218 companies declined. Shares of 1,271 companies advanced, while shares of 228 companies remained unchanged.
1: नजर डालें रुपए की स्थिति पर तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 17 पैसे कमजोर हुआ 95 रुपए 99 पैसे के स्तर पर बंद हुआ.
0: And let's take our next call. Amit Jha is online with us. He's calling us from Delhi. Amit, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
1: Amit ji, आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं. लगता है आपका धैर्य चूक गया और आप हमारा संपर्क टूट चुका है. बहरहाल आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले प्रतिक्रिया हम लेना चाहें अपने विशेषज्ञ शिशिर जी से. आज की गिरावट के पीछे मुख्य कारक क्या रहे शिशिर?
2: अब मुझे लगता है अमित शायद जुड़ नहीं पाए हैं, उनकी जगह हमारे पास एक नए कॉलर हैं, इनसे पहले बात कर लें फिर मैं आपके.
0: जी, सो नाउ वी हैव ऑनलाइन विद अस कांता इज कॉलिंग अस फ्रॉम गुरुग्राम. कांता, वेलकम टू मार्केट मंत्र, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. जी नमस्ते, सवाल पूछे.
3: मेरा सवाल ये है कि जो पीपीएफ का खाता केनरा बैंक में मैंने खोला है, पीपीएफ का खाता.
0: जी जी,
3: तो मैं ये संतुष्ट कितना चाहती थी 15 साल के अंदर कोई जोखिम नहीं होगा मेरे पैसे में अगर बैंक को कुछ भी हो जाए तो.
2: बिल्कुल नहीं कांता जी, देखिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड चाहे बैंक में आप खोले या डाकघर में खोले, ये पूरी तरीके से सरकार की ओर से प्रायोजित होता है, यानी कि इसमें मूल और ब्याज की पूरी गारंटी सरकार की होती है. तो बैंक अगर बंद भी हो जाए या बैंक में अगर किसी भी तरीके का नुकसान भी हो जाए तो वहां पर आपके पीपीएफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि जो भी आपका ब्याज बनता है 15 सालों पर जो मूल है आपका वो आपको पूरा मिलेगा.
1: आइए चले मुंबई. मुंबई से हमारे साथ हैं नियमित श्रोता रत्नाकर. रत्नाकर जी स्वागत आपका, सवाल पूछें.
4: हेलो, गुड इवनिंग सर.
1: स्वागत आपका.
4: मेरा सवाल है कि ये शेयर मार्केट का एक टर्मिनोलॉजी के बारे में मुझे जानना है.
1: जी,
4: वो है ओवरऑल एमटीएल, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस एंड बुक प्रॉफिट. जब हमने शेयर सेल कर दिया तो वो पोर्टफोलियो से सेल हो गया, लेकिन उसके बाद में भी जो प्रॉफिट दिखता है वो किधर एडजस्ट होता है, ये मेरा सवाल है.
2: देखिए रत्नाकर जी, अगर आपने अपने कोई भी शेयर बेचे हैं और अगर वो आपके खरीद कीमत से ज्यादा है तो आपका मुनाफा है. जब आपने बेच दिया पूरी तरीके से उसके बाद उस शेयर में जो भी बदलाव हो रहा है उससे आपका कोई संबंध तो रह नहीं जाता है. वो जो भी निवेशक उसमें है उनके लिए वो मुनाफे की बात होती है. एक और बात आपको रत्नाकर जी ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग कहते हैं कि नोशनल प्रॉफिट, यानी कि कई बार होता क्या है कि आप 100 से वो दाम बढ़ करके 120 पे आ जाते हैं, 125 पे आ जाते हैं, 130 पे आ जाते हैं. आप कहते हैं कि ये 150 होगा तभी जा करके बेचेंगे.
0: बिल्कुल.
2: तो ये जो 150 है वो आपके लिए एक नोशनल प्रॉफिट है. वो अगर हो सकता है कि वो पहुंच भी जाए, हो सकता है नहीं भी पहुंचे. आपकी जो लागत थी वो 100 रुपए की थी. तो जहां तक मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का जो सार था वो यही था कि हमने शेयर बेच दिया, हमारा मुनाफा या हमारा जो भी घाटा है वो मेरे ऊपर है. उसके बाद उस शेयर में क्या कुछ होता है, जब आप उसमें शेयर धारक ही नहीं रहे तो उसके घाटे और मुनाफे से आपका संबंध नहीं रह जाता.
0: लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल. जितेंद्र इज ऑनलाइन विद अस, ही इज कॉलिंग अस फ्रॉम जयपुर. जितेंद्र, वेलकम टू मार्केट मंत्र, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
5: नमस्कार, ये बोल रहा था कि हम लोग को अभी क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए क्योंकि मार्केट का काफी 3 से 2 साल से ऐसे ही चल रहा है. तो निफ्टी 50 में हम लोग एसआईपी कर रहे थे और निफ्टी 50 के आईटी सेक्टर में हम लोग एसआईपी कर रहे थे, लेकिन आईटी सेक्टर से थोड़ा सा डर लग रहा है कि हमको विश्वास है कि वो बहुत अच्छा करेगा आगे. तो क्या हम करें अभी समझ में नहीं आ रहा.
2: जितेंद्र जी, आपके विश्वास की ही जीत होगी. और जहाँ तक हम लोगों ने ये भी दौर देखा कि जब एआई को लेकर के काफ़ी बड़ी बातें की जा रही थी, उस दौर में आईटी पे थोड़े समय के लिए दबाव बना, लेकिन उसके बाद आईटी शेयरों में बाउंस बैक हुआ. आज भी अगर आप देखें तो कोई एक शेयर जो आज 30 शेयरों में कोई एक आगे आया है तो वो आपका आईटी सेक्टर ही है. तो मुझे लगता है कि जब गिरावट का माहौल है उसमें निश्चित तौर पर आप जैसे निवेशक के लिए एक परेशानी और एक प्रश्न चिन्ह है, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप बने रहें, जो आप कर रहे हैं उसको आप थोड़ा थोड़ा करते रहें। और मेरा ये भी मानना है कि जैसे उसको कहते रहे कि एक सुरक्षा भी आप बना लें, कुछ पैसे जो आपने अपने लगाना चाहते हैं उसको यदि थोड़ा आप उसका विविधीकरण कर दें, बैंक में या डाकघर की बचत योजना में लगा लें। डाकघर की बचत

0: योजना है बहुत बेहतरीन है, क्योंकि उसमें मूल और ब्याज दोनों की गारंटी जो है वो सरकार की होती है, तो उसमें आपको कम होने का खतरा नहीं है और आपके लिए वो एक सुरक्षा का भी काम करेगा। तो आप अगर इस तरीके से विविधीकरण कर लें तो जो आपका घाटा है, देखिए बाजार के घाटे को कोई पूरा नहीं कर सकता, उसके लिए धैर्य ही एकमात्र चीज है, लेकिन अगर आप विविधीकरण करते हैं तो आप घाटे को कम कर सकते हैं।
1: आइए लौटे दिल्ली, दिल्ली से हमारे साथ हैं जगदीश। जगदीश जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
2: हाँ जी सर, गुड इवनिंग, जगदीश जोशी नांगली दिल्ली से। सर
1: जी स्वागत है आपका।
2: जो यूपीआई में 0.4 का जो 2000+ की जो पेमेंट का है, तो मैं पर्सनली अपने लिए पूछता हूँ, क्योंकि मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ जिसके पास कि 10 रुपए 20 रुपए किसी ने चिप्स लिया या बॉल पेन लिया। तो मैं जानना चाह रहा हूँ दो बातें, कि अगर कोई 10 10 20 20 रुपए करके अगर 2000 रुपए इकट्ठे होते तब उसमें कटता है, या एक मुश्त कोई करता है तो तब कटता है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत छोटा काम है और एक दो कस्टमर ऐसे हैं जो मतलब वो 10 20 रुपए डेली ना देके वो मंथली 2500 3000 रुपये होता तो वो पेमेंट करते हैं, तो उसमें हमें मतलब कितना 3000 या 2500 रुपये, तो हमें कितना उसमें हमारे खाते से कटेगा? ये मतलब छोटे दुकानदार के लिए तो मेरे हिसाब से तो ये थोड़ा सा उस पर बर्डन पड़ेगा, तो आपकी विशेषज्ञ टिप्पणी चाहता हूँ सर। धन्यवाद।
0: जगदीश जी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है इस समय में। देखिए आपके पास दो तरीके के ग्राहक हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि खाते में लिख लो, और एक है जो कि नियमित तौर पे आते हैं और जो जो भी आपसे खरीदते हैं उसका या तो नगद या यूपीआई के जरिए भुगतान कर देते हैं। आपने कहा आप एक छोटे व्यापारी हैं, अगर पूरे महीने के दौरान अगर आपके पास कुल यूपीआई के जरिए लेन देन में आपको 1 लाख रुपए से कम की आ रही है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास 2000 रुपये यानी कि 1999.99 रुपये तक अगर जो भुगतान कर रहा है, वहां पर 1 रुपया भी उसका MDR नहीं लगेगा, यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट हम जिसको कहते हैं। यदि वो 2000 के बाद महीने के अंत में जो खाते वाले आपके हैं और वो आकर के कहते हैं कि चलो हमारा खाता क्लियर कर दो और हम एक बार में आपको 2500 का भुगतान कर रहे हैं, वो यदि 2500 का भुगतान कर रहे हैं, तो वहां पर आपको एक शर्त ये याद रखनी है कि जो अगर 1 लाख रुपए से कम की आमदनी है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा आपकी आमदनी है तो वहां पर आप 2000 के ऊपर का भुगतान जब अगर आप लेंगे तो 0.4% की दर से आपका MDR जो है वो कटेगा। तो इसमें बेहतर होगा कि खाते को 2000 रुपए तक आने ही ना दे और आप उसका नियमित तौर पर भुगतान लेते रहें। वैसे भी कहते हैं ना कि उधार प्रेम की कैंची है, तो ग्राहकों के साथ आपका प्रेम संबंध ना बिगड़े और आपके बचत और आपके खाते के ऊपर बोझ ना पड़े, तो ये दो विकल्प अपना करके देखिए बेहतर है।
3: एंड ऑन दैट नोट लेट्स शेयर विद आवर लिसनर्स अ रिलेटेड स्टोरी। द सुप्रीम कोर्ट टुडे रिफ्यूज्ड टू स्टे द सेंटर्स डिसीजन टू इम्पोज मर्चेंट डिस्काउंट रेट और MDR ऑन स्पेसिफाइड पर्सन टू मर्चेंट UPI ट्रांजेक्शंस अबव 2000 रुपीज, with the charges set to come into effect from the 15th of next month. A bench comprising Chief Justice of India Suryakant and Justice Joymalya Bagchi and Justice V. Mohana sought responses from the Centre, the Reserve Bank of India and other respondents, directing them to file their counter-affidavits within 4 weeks. The Apex Court observed that the issue is less legal and more technical. Appearing for the court, Additional Solicitor General, I beg your pardon, appearing for the Centre, Additional Solicitor General N. Venkataraman told the bench that 96% of the users of the payment gateway would remain exempt.
1: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई। सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से संकेत मिलता है कि औद्योगिक गतिविधि का विस्तार स्वस्थ गति से देश में जारी है। जुलाई की IIP वृद्धि दर सुधार के साथ 7.4% पर पहुंच गई, जबकि पहले 6.7% वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया था। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त में बिजली और गैस आपूर्ति में 12.3% की शानदार वृद्धि हुई है, जबकि IIP सूचकांक में सबसे अधिक भार रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9% की दर से हुआ है। जल आपूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में भी 6.3% की वृद्धि हुई। हालांकि इस अवधि के दौरान खनन क्षेत्र में 5.6% की गिरावट आई है। क्या कह रहे हैं ये आंकड़े कुल मिलाकर देश की जो औद्योगिक उत्पादन के अच्छे आंकड़े, इसे हम स्वीकार कर सकते हैं?
0: मनोज जी, इसके पहले आपका जो पहला प्रश्न था वो हम लोग रहे थे, वो कांता जी का फोन आ गया था, तो आपने शेयर बाजार को लेकर के मौजूदा हाल पे जो आपने

0: चर्चा करी थी, उसमें देखिए एक जो हमारे लिए एक सबसे बड़ी चिंता यह है कि अमेरिका में ब्याज दरें जो है वो बढ़ रही हैं, जिसको तकनीकी भाषा में हम यील्ड भी कहते हैं, और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका काफी कर्ज ले रहा है, तो जो कर्ज ले रहा है उसके लिए वो ऊंची ब्याज देने को तैयार है। तो एक निवेशक के सामने एक विकल्प है कि वो ऊंची ब्याज वाले पे जाए या फिर हमारे यहाँ आए। एक और महत्वपूर्ण घटना जो आज हुई है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि शेयर बाजार में आज काफी गिरावट थी, कि चीन में पहले अंडरवेट सिचुएशन था, अब वो बेंचमार्क न्यूट्रल हो गया है। अब आप कहेंगे बड़े तो तकनीकी शब्द आप लेकर के क्यों आ रहे हैं, आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आपने चीन में 20 रुपया लगाने का फैसला किया था लेकिन आपको कंपनियों पे भरोसा नहीं था, तो आपने 10 रुपये ही निवेश किए, यानी कि आप अंडरवेट हो गए। अब क्या हो रहा है कि बेंचमार्क न्यूट्रल होने के बजाय 20 का क्या 20 से ज्यादा निवेश करने की स्थिति में आ गए हैं, करने लगे हैं। तो अब पहले तो अमेरिका में पैसा लोग लगा रहे हैं, चीन में भी जा रहे हैं, तो हमारे लिए स्थिति जो है वो थोड़ी कमजोर हो गई है। दूसरी तरफ हमारी जो कच्चे तेल की स्थिति है, आप 104 105 के ऊपर ही है, भाव चल रहा है, वो भी हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। तो इन सब का नतीजा है कि बाजार में जो है वो गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है, और हालात ये हैं कि अभी के समय में कुछ भी कहना ये जोखिम होगा कि बाजार किस स्थिति में पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा। अब आपका जो दूसरा प्रश्न है औद्योगिक उत्पादन को लेकर के, दो क्षेत्र जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक आपका विनिर्माण और दूसरा बिजली उत्पादन, लेकिन बिजली उत्पादन को लेकर के हमें थोड़ा सोचना होगा, क्योंकि हमने कि मौसमी बदलाव की वजह से बिजली की मांग काफी बढ़ी। तो अगर बिजली का उत्पादन दोहरे अंक में रहा है, अगर मैं गलत नहीं तो 12% के ऊपर की बढ़ोतरी बिजली के उत्पादन में रही है, और विनिर्माण में जो बढ़ोतरी की दर रही वो 9% की दर रही, तो ये जो है वो त्योहारी मांग को देखते हुए निर्माण बढ़ा है, उसका असर आपको देखने को मिला है। तो ये 8% एक अच्छी बढ़ोतरी की दर है, और उम्मीद करनी चाहिए कि पहली तिमाही के जो आपके औद्योगिक विकास के आंकड़े हैं उसका असर दूसरी तिमाही की, माफ कीजिएगा, उसका असर जो है वो दूसरी तिमाही के विकास के आंकड़े जो कि 30 नवंबर को जारी होंगे उसमें देखने को मिले।
1: जी, एंड ऑन दैट नोट लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल फ्रॉम दिल्ली। शंकर इज ऑनलाइन विद अस। शंकर, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हेलो शंकर, इफ यू कैन हियर अस प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Looks like he's not, we have lost contact with Shankar. So let's move on to the next story. India and the UAE have agreed to take steps for the timely implementation of initiatives relating to settlement of trade in local currency, integration of payment and messaging systems, and central bank digital currencies. The two sides reached the agreement during the 14th meeting of the India-UAE high-level joint task force on investments in Mumbai today. It was co-chaired by Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Managing Director of Abu Dhabi Investment Authority Sheikh Hamad bin Zayed Al Nahyan. The Commerce and Industry Ministry said that in a statement that these issues are important as they have the potential to make bilateral trade and investment more efficient, accessible and resilient. The areas where two-way investment flows can be enhanced include energy, industry, logistics, infrastructure, technology and artificial intelligence, space, food security, artificial innovation and the startup ecosystem.
2: बहुत संक्षिप्त टिप्पणी, बड़ी ही महत्वपूर्ण मार्के की बात है। लोकल करेंसी यानी स्थानीय मुद्रा में जो बातचीत कारोबार का आह्वान हम कर रहे हैं उस दिशा में, साथ ही संदेश आदान प्रदान और पेमेंट इंटीग्रेशन की बात चलिए, कुल मिलाकर क्या कहा जा रहा है, क्या कह रही है खबर और किस रूप में ये लागू होने की संभावना है आने वाले दिन।
0: देखिए, इसका मतलब है कि आपकी निर्भरता जो है वो डॉलर पे थोड़ी कम होगी और ये हमारे लिए एक अच्छी खबर होगी।
1: Okay, and let's take the next call now. Kripa Shankar is online with us from Delhi. Mr. Kripa Shankar, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
3: इतने बार मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी आप समझा रहे थे कि 2500 अंक की पेमेंट आपके पास आती है तो आप इसको पूरी ना लें, अगर हम उसको 1000 और 1500 रुपए के हिसाब से लें, 1500 एक लें, 1000 एक लें, तब भी चलेगा, और चाहे हमारा लाख से नीचे ही रहता है उस मुताबिक भी ठीक रहेगा। और जैसे हम जॉब करते हैं तो हमारा जो सेट है वो हमारे अकाउंट में UPI में किसी की पेमेंट आ जाती है 5000 7000 10000 छोटी मोटी पेमेंट हमारे में डाल देते, तो हमें डलवानी चाहिए कि नहीं डलवानी चाहिए, कि या फिर इसके अंदर भी हमारा तो सिर्फ एक सैलरी है, हमें तो 30000 रुपये मिल जाते हैं मंथली, तो हमारे पे क्या कुछ, हम तो दुकानदार नहीं है, तो इस पे क्या आप करते सर।
0: पहली वाली जो परिस्थिति है जो आपने कहा कि हम उसको 2500 को दो हिस्सों में बांटते, 1000 रुपए का और

0: ₹1500 का, जाहिर सी बात है उसमें आपका कोई लगेगा नहीं। दूसरी बात यह कि ₹1,00,000 के नीचे के जो व्यापारी यानी कि छोटे व्यापारी जो हैं उनके वो इस दायरे में नहीं है। तीसरी बात है कि व्यक्ति से व्यक्ति को मिलना वहाँ पर आपके लिए MDR नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आपको एक व्यक्ति के तौर पर आपको भुगतान कर रहा है, आपने कहा कि आप एक व्यापारी नहीं है, कारोबारी नहीं है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
1: आइए आगे बढ़ें। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU की 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित करने के बाद आज देश भर में बैंक खुले रहे। भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद ये निर्णय लिया गया। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, प्रस्तावित हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए IBA और 7 बैंक यूनियनों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था UFBU के बीच कल रात हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। इससे पहले यूनियनों ने मुख्य रूप से 2 मांगों, 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह को लागू करने और प्रदर्शन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना को वापस लेने के लिए 28 से 30 सितंबर तक हड़ताल की घोषणा की थी। और अब चले एशियाई शेयर बाजार, यानी दुनिया के 2 प्रमुख महादेश से हम कुछ चुने हुए बाजारों की खबर आपको देते हैं। एशिया के प्रमुख बाजार दक्षिण कोरिया के कोस्पी सूचकांक में 2.7% की गिरावट आज बिकवाली के दबाव में हुई। जापान का निक्केई 225 सूचकांक भी 0.7% नुकसान के साथ बंद हुआ।
2: Let's move on to commodities. Global crude oil prices rebounded today after US President Donald Trump rejected an Iranian peace proposal over the weekend aimed at resolving the conflict and reopening the Strait of Hormuz. Brent crude was trading 3.5% higher at $108 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 3.6% up at $95.72 per barrel at the time of writing this report. A very brief comment, Shishir, because I was reading somewhere that one of the international financial service firms actually has said that it has lost visibility on the direction of oil prices for the first time since Iran war. There is no longer a clear baseline scenario for the markets.
0: Very true. At this moment, when today you are listening this one, yeah. I mean that there is going to be an agreement. Tomorrow there is no agreement. So this weekend was very critical,
2: yeah.
0: And did not happen. Anything did not take place. So we are going to see only the southward movement, not the northward movement. I'm sorry, northward movement, not the
2: southward.
0: Yes.
1: हमारे साथ श्रोता अभी भी फोन लाइन पर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जुड़ भी चुके हैं, लेकिन हम अहमद अली जी विशेष रूप से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे और अन्य श्रोताओं को भी कि हम अब समय अभाव में आपके प्रश्न को नहीं ले सकते। भाग लेने के लिए आपका धन्यवाद। आइए आपको लिए चले सर्राफा बाजार। भारतीय सर्राफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने का मूल्य 2.7% घटकर 1,47,980 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार चांदी 4% घटकर 2,23,053 रुपये प्रति किलो के स्तर पर बंद हुई। यहाँ पर हम समझना चाहेंगे आपके माध्यम से शिशिर के, सोने में और चांदी में दोनों में निवेश के लिए अभी का जो स्तर है वह कैसा दिख रहा?
0: डॉलर, देखिए डॉलर जैसे जैसे मजबूत होता जाएगा सोना कमजोर होगा, तो जो लोग निवेश करना चाहते हैं 1.80 से हम 1.47 पे आ गए हैं, तो थोड़ा सा एक मौका बनता है सोने में आप पैसा लगा।
1: यदि दीर्घावधि में देखें तो सोने के वैश्विक
0: स्तर पर डॉलर जब भी मजबूत होगा आपका सोना कमजोर होगा।
1: यह है विशेषज्ञ की सलाह कि डॉलर मजबूत यानी सोने में नरमी, सोने की चमक फीकी होगी, तो आपके निवेश के लिए अवसर बन जाएगा। और आप श्रोताओं ने जिस उत्साह के साथ भाग लिया, इसलिए आपकी ओर से हम शिशिर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
0: जी धन्यवाद, नमस्कार।
2: And before we close, look at the headlines once again. Benchmark domestic indices decline sharply. Sensex tanks over 1,100 points. Nifty settles below 22,800. India's industrial output grows by 8% in August this year. And global crude oil prices surge around 3.5%. That's all we have time for in this edition of the program. Till we meet again, namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मन मीत आपके लिए स्वागत करती हूं मैं कुसुम। पहला गीत फिल्म गंगा जमुना से लता मंगेशकर की आवाज में आपके लिए।

इस गीत के साथ ही गीत मेरे मन मीत यहीं तक। कुसुम को दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने कल मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सहअध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल संयुक्त अरब अमीरात के अबुधाबी में आयोजित 15वें संयुक्त राष्ट्र अपराध निवारण और आपराधिक न्याय सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में श्री मेघवाल ने डिजिटल न्याय की दिशा में भारत के प्रयासों, साइबर अपराध और आतंकवाद से निपटने के लिए कड़े उपायों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि और समय पर न्याय पर बल दिया। भारत ने नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति भय और इससे जुड़ी असहिष्णुता का मुकाबला करने तथा सभी के लिए समानता और सम्मान को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान डर्बन घोषणा और कार्य योजना को अपनाए जाने की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने DDPA को पूरी तरह और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ठोस, राष्ट्रीय स्तर पर संचालित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। म्यांमार की सेना ने ताकतवर विद्रोही गुट के कब्जे वाले इलाके में बाजार के पास हवाई हमला किया, जिसमें कम से कम 33 लोगों की मौत हो गई और 36 अन्य घायल हो गए। अराकान आर्मी के मुताबिक यह हमला कल क्योक्ताव टाउनशिप में हुआ, जो देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले से लगभग 340 किलोमीटर पश्चिम में है। कल दोपहर के समय एक लड़ाकू विमान ने स्थानीय बाजार के पास 2 बम गिराए, जिससे सामान बेचने वालों, खरीदारों और पैदल चलने वालों समेत 33 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। सेना ने हमले पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। जापान एशियाई खेलों में भारत ने कल भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल मिलाकर 45 पदक जीत चुका है। इनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तथा तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैकाल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 57 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर निशिगंधा, मैं हूं राखी आपके साथ। रात की नरमी में खुले हैं पुराने फिल्मी गीत, यादों की खुशबू और आपके अपनेपन का एहसास। तो आइए इस सुहानी रात को संगीत के नाम करें और सुने कुछ ऐसे सदाबहार नगमे जो वक्त गुजर जाने के बाद भी दिल में अपनी जगह बनाए रखते हैं।

प्रेम पर्वत फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। जानिसार अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया जयदेव ने। सुना है ये मॉनसून की आखिरी बारिश थी, अगले बरस इसका इंतजार तो रहेगा ही। बारिश की बूंदों से जुड़ी यादें भला इतनी आसानी से कहां जाती हैं। और देखिए, इस बार की बारिश ने मौसम की ऐसी करवट बदली कि सितंबर के आखिरी दिनों में ही दिसंबर की ठंड का एहसास होने लगा। दिल्ली में 27 सितंबर को न्यूनतम तापमान 21 डिग्री तक पहुंच गया। तो मौसम के इस बदलते मिजाज के साथ आइए आज की निशिगंधा में कुछ ऐसे गीत सुने जिनमें कभी बारिश की नमी है, कभी सर्द हवाओं की ठंडक और कभी बीती हुई शामों की मीठी याद।

ना खुदा फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ में। निदा फाजली ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। बताइए तो सही, आपकी इन पलकों में आखिर छुपा क्या है? कोई ख्वाब, कोई राज, या फिर सितारों सी चमकती हुई खूबसूरत बात? आंखों की तो यही खूबी है, बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाती हैं। और जब इन्हीं आंखों की तारीफ में कोई नगमा सजे तो रात और भी हसीन हो जाती है।

उमराव जान फिल्म से आपने ये गज़ल सुनी आशा भोसले की आवाज़ में। शहरयार ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने।

जमीन आसमान फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। अगर तुम मेरे हमराही ना होते तो शायद ये समा भी इतना खूबसूरत ना होता, ये रास्ते इतने हसीन ना लगते और कुछ भी यहाँ ना होता। किसी अपने का साथ ही तो हर मौसम में एक मिठास खोल देता है, हर सफर में एक खूबसूरत कहानी बन जाती है।

प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म का गाना आपने सुना बप्पी लाहिड़ी और आशा भोसले की आवाज में। बप्पी लाहिड़ी ने संगीत दिया और इस गीत को लिखा इंदेवर ने। मोहब्बत में शिकवे भी होते हैं, रूठना मनाना भी, कभी दिल दुखता है, कभी कोई सितम भी सहना पड़ता है, मगर इन सब के बीच दिल की एक ही ख्वाहिश रहती है, तुम चाहे जितनी शिकायतें करो, चाहे कोई सितम कर लो, बस अपना प्यार कभी कम मत करना।

तुम्हारी कसम फिल्म से आपने ये गाना सुना मुकेश और आशा भोसले की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। वक्त हुआ है 12:54 और ठीक 36 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय।

0: तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने कल मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सहअध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल संयुक्त अरब अमीरात के अबुधाबी में आयोजित 15वें संयुक्त राष्ट्र अपराध निवारण और आपराधिक न्याय सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में श्री मेघवाल ने डिजिटल न्याय की दिशा में भारत के प्रयासों, साइबर अपराध और आतंकवाद से निपटने के लिए कड़े उपायों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि और समय पर न्याय पर बल दिया। भारत ने नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति भय और इससे जुड़ी असहिष्णुता का मुकाबला करने तथा सभी के लिए समानता और सम्मान को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान डर्बन घोषणा और कार्ययोजना डीडीपीए को अपनाए जाने की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारत और इथियोपिया ने कल इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में दूसरी संयुक्त रक्षा सहयोग बैठक की। दोनों देशों ने सैन्य प्रशिक्षण और अभ्यास, चिकित्सा सहयोग, शांति स्थापना और रक्षा उद्योग सहित आपसी हित के क्षेत्रों पर चर्चा की। भारत ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के लिए कल 3 टन क्षय रोग रोधी दवाओं की खेप भेजी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत श्रीलंका की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कल लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एलएचएमसी और उससे संबद्ध अस्पतालों सुचेता कृपलानी अस्पताल और कलावती सरन बाल अस्पताल की प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचा, विशेष नैदानिक सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और रोगी देखभाल को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि एलएचएमसी और उससे संबद्ध अस्पताल में चल रही और आगामी परियोजनाओं की योजना रोगी केंद्रित और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण के साथ बनाई जानी चाहिए। भारतीय रेलवे ने उत्तर पूर्वी रेलवे के वाराणसी डिवीजन के 614 किलोमीटर से अधिक के मार्ग पर कवच 4.0 परियोजना के लिए 223 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। स्वीकृत परियोजना वाराणसी डिवीजन के चिन्हित शेष खंडों में कवच 4.0 कवरेज का विस्तार करेगी, जिससे ट्रेन संचालन के लिए उपलब्ध सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Union Home Minister Amit Shah yesterday inaugurated the conference on Prahar, National City Policy and Strategy in New Delhi. The conference deliberated upon the 7 pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating Conditions for terrorism, aligning international efforts and recovery and resilience through a whole of society approach. Speaking on the occasion, the Home Minister said the government

वक्त हुआ है 11:00, वक्त हुआ है 1:11 और ठीक 8 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर गीत सुहाने, मैं हूँ राखी आपके साथ।

आंखें फिल्म से आपने ये प्यारा सा गाना सुना शमशाद बेगम और मुकेश की आवाज में। इसे लिखा भरत व्यास ने और संगीत दिया मदन मोहन ने।

फरमाइश, कभी पाउडर की फरमाइश, कभी सर्कस की जिद है और कभी थिएटर।

0: अलबेला फिल्म का गाना आपने सुना सी रामचंद्र की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया सी रामचंद्र ने। इस गीत की इन पंक्तियों में प्यार के साथ जुड़ी शरारत भी है और एक हल्की सी चेतावनी भी। इश्क की राह पर कदम रखिए तो दिल के साथ साथ होश संभाल कर चलना भी जरूरी है। मोहब्बत अगर हद से गुजर जाए तो आशिक अपना दिल ही नहीं, कभी कभी सब कुछ दांव पर लगा बैठता है।
1: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

पतंगा फिल्म का गाना आपने सुना शमशाद बेगम और सी रामचंद्र की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया सी रामचंद्र ने। दूर देश गए पिया की याद जब दिल को सताने लगे तो दूरियां भी जैसे आवाज बनकर कानों तक पहुंचती है। एक तरफ इंतजार की बेचैनी, दूसरी तरफ टेलीफोन पर मिलने वाली पिया की आवाज, और इन दोनों के बीच तड़पता हुआ दिल, यही तो है उस दौर के गीतों की खूबसूरती।

मनमौजी फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। ऐसी श्रीमती जी चाहिए जो घर को संभाले, पति का ख्याल रखें और उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहें। अभी गुजारिश कितनी मासूम है और कितनी शरारती, इसका फैसला आप खुद कीजिए।

अल हिलाल फिल्म से आपने ये कव्वाली सुनी इस्माइल आजाद की आवाज में। इसका संगीत दिया बुल्लो सीरानी ने और इसको लिखा शिवान रिजवी ने।

वक्त हुआ है 1:35 और ठीक 50 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

उड़न खटोला फिल्म से आपने गीत सुना। लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद ने। कभी कभी कोई राहगीर सिर्फ रास्तों से नहीं गुजरता, अपने साथ किसी की याद, किसी का सलाम और मोहब्बत का एक पैगाम भी ले जाता है।

भाभी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया चित्रगुप्त ने। टाई लग गई, अंदाज बदल गया तो जनाब खुद को समझने लगे हीरो। लेकिन असली इम्तिहान तो किताबों के सामने होता है। यहाँ स्टाइल तो पूरा है मगर पढ़ाई लिखाई में नंबर जरा कम ही नजर आ रहे हैं।

वक्त फिल्म से आपने ये गीत सुना मन्ना डे की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया रवि ने। मोहब्बत की खूबसूरती शायद यही है कि वक्त गुजरता रहता है, उम्र ढलती रहती है, लेकिन किसी अपने को देखकर दिल की धड़कनों पर उम्र का कोई असर नहीं होता। वही अपनापन, वही तारीफ और वही प्यार भरा अंदाज़।

रुस्तम सोहराब फिल्म का गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे की आवाज़ में। जानिसार अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया सज्जाद ने। कभी कभी किसी की याद यूं दिल को छू जाती है कि बीते हुए लम्हे फिर से आंखों के सामने नजर आते हैं। दूरी चाहे कितनी भी हो, सच्चे रिश्तों की याद दिल में हमेशा बनी रहती है।

बहार फिल्म का गाना आपने सुना शमशाद बेगम की आवाज़ में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया एस डी बर्मन ने। वक्त हुआ है 1:57 और ठीक 55 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को

0: भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगौड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने कल मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को फिर दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना को अपनाए जाने की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर कहा कि सचिव जॉर्ज ने नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, ज़ेनोफोबिया और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने और सभी के लिए समानता तथा गरिमा को बढ़ावा देने के भारत के अटूट संकल्प को फिर दोहराया। ठोस कार्रवाई की जरूरत पर जोर देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने DDPA को पूरी तरह और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ठोस, राष्ट्रीय स्तर पर संचालित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान, स्टार्टअप और नए अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग ने एक नए चरण में प्रवेश किया है। डॉ. सिंह ने कल नई दिल्ली में फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में चल रहे परिवर्तन ने दोनों देशों के लिए सरकारी संस्थानों और स्थापित एजेंसियों से परे सहयोग का विस्तार करने की नई संभावनाएं पैदा की हैं। सरकार ने कल नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। भारत ने श्रीलंका की पब्लिक हेल्थ सिस्टम की मदद के लिए कोलंबो में लगभग 3 टन टीवी रोधी दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इन दवाओं को भेजने की जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ।

0: कसम
1: तू मोहब्बत की कसम
0: मोहब्बत की कसम
1: तू मोहब्बत की कसम।
2: दिल तेरा दीवाना फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर और

उजाला फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। झूमता मौसम मस्त महीना, और ऐसे खुशनुमा माहौल में अगर चांद सी गोरी एक हसीना नजर आ जाए तो दिल का उसके पीछे पीछे चल पड़ना कोई हैरत की बात नहीं। इस गीत में प्यार की वही पहली हलचल है, आंखों की वही शरारत है, और दिल के चुरा लिए जाने की वही मीठी शिकायत। याला याला दिल ले गई।

बहारों के सपने फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। चुनरी संभाल गोरी, उड़ी चली जाए रे, और जरा बचके क्योंकि तेरी नजर का ये तीर कहीं दिल को घायल ना कर दे। कितनी शरारत है इन पंक्तियों में, गोरी की उड़ती चुनरी, उसकी चंचल अदाएं और उस पर नजर की ऐसी कशिश जो सामने वाले को बेचैन कर दे।

दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, रात सुरमई है, हवाओं में एक ठहराव है और इस खामोशी में पुराने फिल्मी गीतों की आवाज जैसे दिल से कोई भूली बिसरी बात कह रही है।

जूल थी फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। रात की तन्हाई है, दियों की रोशनी भी अब बुझ चुकी है। ऐसे में दिल चाहता है कि कोई अपना पास आकर चुपके से दिल की बातें कह जाए। खामोशी के इस माहौल में कुछ अल्फाज कानों तक पहुंचे और रात की ये तन्हाई थोड़ी सी कम हो जाए।

0: जरा ओढ़ो, अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: तीन देवियां फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। प्यार में जब नटखटपन घुल जाए तो बातचीत भी गीत बन जाती है। कभी घूंघट की बात, कभी जवानी पर शरारती ताना, और कभी रूठने मनाने का सिलसिला। इसी प्यारी सी नोकझोंक में मोहब्बत का रंग और भी गहरा हो जाता है।

ब्रह्मचारी फिल्म का गाना आपने सुना सुमन कल्याणपुर और रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। मोहब्बत जब दिल से निकलकर आंखों और अंदाज में उतर आए तो उसे भला कितनी देर छुपाया जा सकता है। दो दिलों के बीच की ये कहानी अब सिर्फ उनकी नहीं रही बल्कि हर जुबान पर इसकी चर्चा है और हर किसी को इसकी खबर हो गई है।

गुमनाम फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

वक्त हुआ है 2:54 और ठीक 22 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही पंकज गोस्वामी के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

भूत बंगला फिल्म का गाना आपने सुना मन्ना डे की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने कल मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख

0: हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को फिर दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना को अपनाए जाने की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सचिव जॉर्ज ने नस्लवाद, ज़ेनोफोबिया और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने और सभी के लिए समानता तथा गरिमा को बढ़ावा देने के भारत के अटूट संकल्प को फिर दोहराया। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कजिंद के 9वें संस्करण में भाग लेने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों का 60 सदस्यीय दल कल कजाकिस्तान के ओस्केमेन के लिए रवाना हुआ। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के निर्देशों के अंतर्गत संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियानों को अंजाम देने के लिए दोनों बलों के बीच समन्वय को बढ़ाना और संयुक्त क्षमता को मजबूत करना है। म्यांमार की सेना ने एक ताकतवर विद्रोही गुट के कब्जे वाले इलाके में बाजार के पास हवाई हमला किया जिसमें कम से कम 33 लोगों की मौत हो गई और 36 अन्य घायल हैं। अराकान आर्मी के मुताबिक ये हमला कल क्योक्ताव टाउनशिप में हुआ जो देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले से लगभग 340 किलोमीटर पश्चिम में है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। सेना ने हमले पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार और पोलैंड की राज्य सचिव तथा उप रक्षा मंत्री मागदेलेना सोबकोवियाक जारनेका ने कल नई दिल्ली में भारत पोलैंड संयुक्त कार्य समूह की बैठक की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में संयुक्त कार्य योजना 2024 से 2028 को लागू करने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने भारत और पोलैंड के बीच संस्थागत रक्षा और रक्षा उद्योग संबंधी सहयोग को और मजबूत करने पर भी जोर दिया। भारत ने नई दिल्ली में कल हुई भारत फिजी द्विपक्षीय संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक में स्वतंत्र, खुले, समावेशी और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र के अपने दृष्टिकोण में फिजी और प्रशांत द्वीप देशों के महत्व को दोहराया है। बैठक की सह अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और फिजी के रक्षा तथा पूर्व सैनिक मामलों के स्थायी सचिव मेसन स्मिथ ने की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Union Home Minister Amit Shah yesterday inaugurated the conference on Prahar, National City Policy and Strategy in New Delhi. The conference deliberated upon 7 pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating conditions for terrorism, aligning international efforts and recovery and resilience through a whole-of-society approach. Speaking on the occasion, the Home Minister said the government has adopted a zero-tolerance policy against all forms and manifestations of terrorism. He highlighted that from 2019 to 2026, the Narendra Modi government successfully brought back 288 fugitive criminals to India from 36 countries. Mr. Shah said, as a result of better coordination among agencies, more than 40 modules of Shahzad Bhatti network involved in cross-border smuggling of weapons, explosives and narcotics were busted. More than 100 FIRs were registered and 350 individuals were arrested across 15 states. He said, at the same time, the government declared Shahzad Bhatti network a terrorist organization under Unlawful Activities Prevention Act, UAPA. India and the UAE have agreed to take steps for the timely implementation of initiatives relating to settlement of trade and local currency integration of payment and messaging systems and central bank digital currencies. The two sides reached the agreement during the 14th meeting of the India-UAE High-Level Joint Task Force on Investments in Mumbai yesterday. It was co-chaired by Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Managing Director of Abu Dhabi Investment Authority, Sheikh Hamid bin Zayed Al Nahyan. addressing media.

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल को सुन रहे हैं आप। रात के 3:10 हुए हैं और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम हमराही। मैं हूं आपके साथ पंकज। तो शुरुआत करते हैं, दो गानों के बाद मैं आपसे मिलता हूं यादों की बारात मूवी से। इस गाने की शुरुआत करते हैं और फिर मुलाकात होती है।

ये वो गाने हैं जिन्हें जितना सुनो उतना कम है। 1978 की फिल्म घर से ये गाना था, गुलजार के बोल और आरडी बर्मन का म्यूजिक। इस प्यारी सी जिंदगी की ये आधी रात के हसीन पलों को मैं और आप इन पुराने ड्यूट्स गानों के साथ जिएंगे। मैं हूं पंकज आपके साथ हमराही शो में सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। तो भुला दीजिए हर परेशानी और खो जाइए इस रात की हल्की ठंडी हवाओं में। दो गाने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ और ये सॉफ्ट गाना वन ऑफ माई फेवरेट फ्रॉम द मूवी आंगन की गली।

मौसम फिल्म का गाना भूपिंदर और लता जी की आवाज, मदन मोहन की म्यूजिक कंपोजिशन और गुलजार के बोल। इस गाने में लाइन आती है कि जाड़ों की नर्म धूप और आंगन में लेटकर, बस आज से यानी 3 दिन बाद अक्टूबर लगेगा और फिर हल्की ठंड फील होगी। हालांकि दिल्ली में अभी जो इस टाइम है हल्की ठंड फील होती है, इस टाइम तो हो ही रही है, और एक अर्ली मॉर्निंग जो होती है ठंड उस टाइम लगता है कि हाँ भाई अब सर्दियाँ आने वाली हैं। और सर्दियों में अपने पसंदीदा इंसान का अगर साथ मिल जाए तो मुझे ऐसा लगता है वो किसी वरदान से कम नहीं होता। हमराही सुन रहे हैं आप मेरे यानी पंकज के साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर, और बहुत खुश नसीबी से अपनी पसंद का हमराही मिलता है, सच मानिए उसके संग जी भर के जीना चाहिए। अगर आपको ऐसा मौका मिल रहा है तो ऐसे मोमेंट खोने नहीं चाहिए, मुझे लगता है ऐसे मौसम भी शायद स्पेशली प्यार करने वालों के लिए तो होते ही है। खैर अभी आपके लिए जवाज़ मूवी का गाना किशोर दा और सपना की आवाज़ में है।

चश्मे बदूर मूवी से ये वाला गाना आपने सुना। जब ये गाना चल रहा था तो मैं एक बात सोच रहा था कि जब सामने से कोई इंसान आपको प्रेम और रिश्ते के लिए ऑफर देना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे रिश्तों को स्वीकार करना चाहिए। आज के समय में कोई अगर आपकी तरफ हाथ बढ़ाए, ये बहुत बड़ी बात है, वरना तो लोग या तो अवॉइड कर देते हैं या फिर तो कई बार लोग सोचते हैं कि छोड़ो अब इसको क्या बोलें, या कई लोग डर जाते हैं। और आप पता है, हर दिल में ये आरजू रहती है कि कोई इन्हें टूट कर चाहे और प्यार करे, और वही जो है प्यार कभी भी किसी हाल में कम ना हो, और कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ सामने वाला ही नहीं, आप भी अपनी तरफ से प्यार का हाथ बढ़ाएं।

अपने पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत नोकझोंक होना जो है वो मज़ेदार है, लेकिन कभी कभी बताए मजाक में कुछ बातें जो हैं वो मन खराब करती हैं, और ऐसे में ये भी सोचना चाहिए कि सामने वाले ने आज दिल बेशक दुखाया हो, लेकिन इसी इंसान ने हमें प्यार भी तो किया है। छोटे मोटे समझौते करने चाहिए क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं। खैर, अब अगले घंटे सुबह 4:10 पर मैं आपसे शो में दूसरे शो में मिलूंगा जिसका नाम है अरुणिमा, लेकिन अभी हमराही शो का ये लास्ट गाना आप सुनिए, इसका मजा लीजिए, और फिर सुबह 4 बजे बारी बारी से आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। तो FM गोल्ड सुनते रहिए मेरी यानी पंकज के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने कल मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और उससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को फिर दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना को अपनाए जाने की 25वीं वर्षगांठ के

0: मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलान बटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इनमें किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। श्री गोयल अमेरिका के वाणिज्य मंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने तथा अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों पर चर्चा होगी। इस यात्रा से भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश संबंध और मजबूत होंगे तथा G20 साझेदारों के साथ भारत का जुड़ाव और प्रगाढ़ होगा। भारतीय नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के इस सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों और स्थानों के संचालक तथा क्षेत्रीय कमांडर भाग लेंगे। सम्मेलन में सैन्य रणनीतिक स्तर पर नौसेना की अभियानगत तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। जापान एशियाई खेलों में भारत ने कल भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल मिलाकर 45 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Union Home Minister Amit Shah yesterday inaugurated the conference on Prahar's National City Policy and Strategy in New Delhi. The conference deliberated upon the 7 pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating conditions for terrorism, aligning international efforts, and recovery and resilience through a whole-of-society approach. Speaking on the occasion, the Home Minister said the government has adopted a zero-tolerance policy against all forms and manifestations of terrorism. He highlighted that from 2019 to 2026, the Narendra Modi government successfully brought back 288 fugitive criminals to India from 36 countries. Mr. Shah said, as a result of better coordination among agencies, more than 40 modules of Shehzad Bhatti network, including involved in cross-border smuggling of weapons, explosives and narcotics were busted. More than 100 FIRs were registered and 350 individuals were arrested across 15 states. He said, at the same time, the government declared Shehzad Bhatti Network a terrorist organization under Unlawful Activities Prevention Act, UAPA. India and the UAE have agreed to take steps for the timely implementation of initiatives relating to settlement of trade in local currency, integration of payment and messaging systems and central bank digital currencies. The two sides reached the agreement during the 14th meeting of the India-UAE High-Level Joint Task Force on Investments in Mumbai yesterday. It was co-chaired by Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Managing Director of Abu Dhabi Investment Authority Sheikh Hamid bin Zayed Al Nahyan. Addressing media after the meeting, Mr. Goyal said, India has set a target of raising its total exports of goods and services to $1 trillion this year from $863 billion last year. He said, The two countries aim to take bilateral trade to $200 billion by 2000.

सुबह के 4:10 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, और अब आप सुनेंगे हर रोज की तरह कार्यक्रम अरुणिमा, और मैं हूं पंकज आपके साथ। तो शुरुआत करते हैं इस गाने से, और इन दो गानों के बाद आपसे मैं फिर मिलता हूं, और किशोरदा की आवाज में कटी पतंग फिल्म से इस गाने के साथ।

जिंदगी चलने का नाम है और ऐसे ही मजे से चलती रहेगी। अरुणिमा शो में मैं पंकज हूँ आपके साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। और लाइफ में पीछे मुड़कर देखो ना तो लगता है कि जो हुआ शायद अच्छे के लिए हुआ और आगे भी अच्छा ही होगा, बस हम अपने कर्म अच्छे और सुंदर बनाए रखें। दो गाने के बाद आपसे मैं फिर मिलता हूँ और इससे हल्की ठंडी 29 सितंबर की छोटी वाली सुबह की आपको गुड मॉर्निंग। और अभी किशोरदा की आवाज में दोस्त मूवी का ये गाना है, 1974 में रिलीज हुई इस मूवी का गाना, वन ऑफ माई फेवरेट गाना है ये और बहुत अच्छा गाना है। इसको आप एक्चुअली में फील करेंगे तो आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, फिल्म भी बहुत अच्छी है, मौका मिले तो जरूर देखना।

सुबह के 4:28 पर लता जी की आवाज में अगर ये वाला गाना सुनने को मिल जाए तो फिर दिन की शुरुआत अच्छी होनी ही है। लता जी की आवाज थी रजनीगंधा मूवी के नाम, सलील चौधरी का म्यूजिक। हम कई बार है ना किसी सिचुएशन में जो है बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, जबकि ये आपने भी फील किया होगा कि घबराने से जो है काम और ज्यादा बिगड़ता है। शांत रहकर परिस्थितियों पर काबू पाया जा सकता है। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मैं हूँ पंकज, आपके साथ शो का नाम है अरुणिमा। देखिए, स्थाई जो है दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो होना है ना वो निश्चित होगा और हो रहा है। हमारा किया हुआ कर्म भी तो कई बार हमें सफलता नहीं देता। अब जरूरी थोड़ी कि आप घर से बाहर निकले एक काम को पूरा करने के लिए, वो काम पूरा हो जाए, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कई चीजें अपना टाइम लेती ही हैं। बस हमें इतना करना है कि हम अपना बेस्ट दें और आगे बढ़ें, यही हमारा कर्तव्य है।

कई लोगों ने इस गाने का जो है वो रिमिक्स वर्जन निकाले, मतलब अपनी आवाज में भी गाए, और वो गाने तो अच्छे थे लेकिन जो ओरिजिनल की बात होती है वो तो होता ही ओरिजिनल है, और सच में बहुत अच्छा गाना है। मैंने तो ये मूवी देखी है, माला सिन्हा जी हैं इस मूवी में, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखना, बहुत अच्छी है। कहते हैं कि रोज प्रार्थना करनी चाहिए और न जाने कब कौन सी प्रार्थना जो है वो सुन ली जाए, लेकिन हमारी मांग और नियत वो दोनों साफ और पवित्र हों। मैं हूं पंकज आपके साथ, आप सुन रहे हैं अरुणिमा सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर, और इसलिए हम किसी का बुरा ना सोचें ना करें, क्योंकि हमारी कोशिश इतनी रहनी चाहिए कि हम सबका भला करें, हित करें और आशीर्वाद से ना अपनी झोलियां भरें, क्योंकि जिंदगी में जहां कुछ काम नहीं आता वहां दुआएं जरूर काम आती हैं। अभी के लिए आंचल फिल्म से ये गाना लता जी की मेलोडियस आवाज में। अगर आपको अभी भी ऊंघने में ऐसा लग रहा है, मतलब अभी मैं नहीं उठ रहा हूँ, तो लता जी की आवाज आप ये सुनेंगे ये वाला गाना, तो आपको सच में मन करेगा कि चलो आप उठ जाते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। सच में बहुत अच्छा गाना है ये।

कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमारा मन जो है बिल्कुल वैराग्य से भर जाता है, सब कुछ फिजूल सा लगता है, लेकिन पता है इस संसार की माया जो है इंसान को हर बार नाच नचाती है। डिटैचमेंट भी बहुत ज़रूरी है और हद से ज़्यादा मोह जो है वो बहुत नुकसानदायी होता है। और हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो इस समय किसी के प्यार में हैं या बहुत ज़्यादा उससे अटैचमेंट है, इवन हमने भी उस चीज़ को फेस किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बस ये संसार की चीज़ों का हम मज़ा लें और याद रखें कि पानी नाव के नीचे हो तो अच्छा, लेकिन पानी अगर नाव के अंदर आ जाए तो मुश्किल। खैर, अगले घंटे अगले शो भोर सुहानी शो में मैं पंकज आपसे दोबारा मिलूंगा सुबह 5:10 पर। अभी अरुणिमा में बाकी के गाने सुनिए और फिर 5 बजे से बारी बारी से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार होंगे। और अभी के लिए संबंध मूवी का मुकेश जी की आवाज में ये गाना।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सभी तरह के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में सहायता करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के इस सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों और स्थानों के संचालक तथा क्षेत्रीय कमांडर भाग लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की अभियानगत तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा, समुद्री हितों की रक्षा में नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से ये सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमरीका की यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। श्री गोयल अन्य सदस्य देशों के व्यापार और उद्योग मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। श्री गोयल अमरीका के वाणिज्य मंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने तथा अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों पर चर्चा होगी। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत जिन मतदाताओं को त्रुटियों के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। इसका उद्देश्य मतदाताओं के लिए सुनवाई प्रक्रिया को सुगम बनाना है। इस बीच SIR के अंतर्गत आज से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर बुधवार तक चलेंगे। दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से अगले वर्ष 31 जनवरी तक धूल उत्पन्न करने वाली गतिविधियों और बाहरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये फैसला केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री

उपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बीच हुई बैठक में लिया गया। कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली के 500 पेट्रोल पंपों पर पीयूसी प्रमाण पत्र नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू की जाएगी। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक, अधिक पार्किंग शुल्क, कार्यालयों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं भी लागू की जाएंगी। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलानबतोर के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलेगा। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तथा तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। सुबह के 5:10 और 11 सेकंड हुए हैं और अब शुरू होता है कार्यक्रम भोर सुहानी। मैं हूं पंकज आपके साथ। तो इस शो की शुरुआत करते हैं दो गानों के साथ और शुरुआत होती है चांदनी मूवी के इस सॉन्ग से। तो इन दो गानों के बाद मैं आपसे मिलता हूं। आप ऐसे ही गानों का मजा उठाइए। गुड मॉर्निंग।

अजब भोपाली के लिरिक्स और मैंने प्यार किया फिल्म का ये गाना था एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता जी की आवाज़ में। और मौसम जो है वो हल्की ठंड का आ रहा है और अभी भी मौसम सच में बाहर बहुत अच्छा है। मैं स्टूडियो की खिड़की से देख रहा हूँ, सच में अभी तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी तो खैर दिन ही नहीं हुआ, रात ही जैसा है, लेकिन ये रात नहीं है, सुबह के 5:23 हो चुके हैं। और मैं पंकज हूँ आपके साथ, शो का नाम है भोर सुहानी, सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। तो अभी दो गाने के बाद में आपसे